नमस्कार, एफएम एंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के जैसलमेर केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 23वीं तिथि, तदनुसार 13 जून सन 2026। इस समय दिन के 11:58 हो चुके हैं। हमारी आज की पहली प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

आकाशवाणी का ये जैसलमेर केंद्र है, FM 101.8 MHz पर दोपहर के 12 बज चुके हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के पहली प्रसारण सभा की कार्यक्रम फिल्म संगीत के साथ।

0: एक दूजे के लिए। फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों को।
1: बोल बोल के थक गया।
2: क्या हुआ?
1: नया किडबैक चाहिए।
2: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
1: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर सीएमएस पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
1: चले
2: ले आ गया नया किडबैक।
3: आरबीआई कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन।

0: अजीब है दिल के दर्द, अजीब है दिल के दर्द यारो, न हो तो मुश्किल है जीना इसका,
1: न हो तो मुश्किल है जीना इसका,
0: जो हो तो हर दर्द एक ही या, हर एक गम है लगीना इसका,
1: जो हो तो हर दर्द एक हीरा, हर एक गम है नगीना इसका।

है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है।

0: क्या है, नजर उठाते ही झुक गई है, नजर उठाते ही झुक गई है।
1: तुम्हारे पलकों से गिर के शबनम हमारी आंखों में रुक गई है,
0: तुम्हारे पलकों से गिर के शबनम हमारी आंखों में रुक गई है। सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है,
1: सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या

0: फिल्म संगीत सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के जैसलमेर केंद्र से। लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार, इससे पहले जो आपने ये सुना था गुलामी फिल्म से था, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजें थी।
1: मिट्टी

इतनी हसई मिट्टी जाने कहाँ से लाया, तारीफ उस खुदा की जिसने तुझे बनाया। इतनी हसीन मिट्टी जाने कहाँ से लाया।

जब जब तू रूठ जाए दिल मेरा टूट जाए, जब जब तू रूठ जाए।

हंस करो हंस कर मेरे उदास दिल पर जुल्फों का कर दे साया। तारीफ उस खुदा की जिसने तुझे बनाया, तारीफ उस खुदा

एक शेर याद आया सारी खुशखुदा की जिसने तुझे बनाया सारी खुशखुदा की जिसने

सोना सोना कहीं लगाया सारी खुशुदा की जिसने तुझे बनाया इतनी हसीन मिट्टी जाने कहाँ से लाया खुशबुदा की जिसने तुझे बनाया तारीफ खुदा।

अब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है कुल किले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए।

0: लता मंगेशकर, किशोर कुमार और उनके साथियों की आवाजों को अभी आप सुन रहे थे फिल्म सिलसिला से।
1: अब तो ये सिलसिले हुए दूर तक निगाहों में ये गुल खिले हुए।

आई रुक मसी तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुक मसी तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी।

प्यार की गलियां, बाहों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही है, गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुक मस्तानी कब आएगी तू, जिसकी जाए जिंदगानी।

आए और कब तक मुझे चढ़ पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुक मस्तानी कब

लिखा और किसी पे ये आ जाए, क्या है भरोसा आशिक चिल का और किसी से ये आ जाए। आ गया तो बहुत पछताएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुक मस्तानी कब आएगी तू, जीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुक मस्तानी कब आएगी तू, जीती जाए जिंदगानी कब आएगी।

मुश्किल अशकों को छुपाना लगता है, मुश्किल अशकों को छुपाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है।

कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मारे कटाना जमाना। कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मारे कटाना जमाना। तेरे होंठों पे रात ये बहाना था।

नाची नाची तू अखियां, इक ये दिन है तू जागे सारी सारी रतियां। बन गई गोरी चकोरी ओए क्या बात हो गई, बन गई गोरी चकोरी ओए क्या

फिल्म संगीत सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के जैसलमेर केंद्र से। इस गीत से पहले आपने सुना था दो रास्ते फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी, इन दो आवाजों को।

समीर के लिखे इस गीत को नदीम श्रवण के संगीत के साथ आप सुन रहे थे दिल है कि मानता नहीं, फिल्म से अनुराधा पौडवाल की आवाज को।

अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस।

के बरस तेरी प्यासों में पानी भर देंगे, अब के बरस तेरी चूनर को धानी कर देंगे, अब के बरस।

ये जिंदगानी कर देंगे अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे अब के

मिट्टी की कीमत का जग में कोई रतन नहीं है, जिल्लत के जीवन से बदतर कोई कफन नहीं है। देश का हर दीवाना अपने प्राण चीर कर बोला, बलिदानों के खून से अपना रंग लो बसंती चोला। अबके हमने जानी है, सब में मन में ठानी है।

0: ये आकाशवाणी जैसलमेर है, एफएम इंडेक्स 1.8 MHz पर दोपहर के 1 बजे हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: अजमेर का आमेर चैनल है, दिन का 1 बजने वाला है। कुछ ही पलों में हमारे केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, विनिर्माण, सेमीकंडक्टर और ड्रोन जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया के प्रमुख स्टार्टअप केंद्रों में शामिल है और इसकी सफलता में छोटे शहरों और गांवों के युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने खेलों में युवाओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन जैसी पहलों ने नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा दिया है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों से एनडीए सरकार युवा नेतृत्व वाले विकास को प्रोत्साहित कर रही है, जिससे देश के युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है और वे अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के दुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी के 215 सत्रहवें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नव नियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है। रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षित महिला कैडेट्स के पहले बैच को भी शामिल किया। समारोह में सुखोई 30, एमकेआई, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। असम में आज सुबह भारतीय वायुसेना का एक AN-32 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। यह हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद उसमें आग लग गई। फिलहाल दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद हैं और राहत बचाव कार्य जारी है। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। राजस्थान कैडर के 2 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को केंद्र सरकार में महानिदेशक यानी डीजी स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए चुना गया है। केंद्र की कैबिनेट नियुक्ति समिति ने राजस्थान के 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी एमएन दिनेश और बीजू जॉर्ज जोसेफ को केंद्र में डीजी या उसके समकक्ष पदों पर पदस्थापना के लिए सूचीबद्ध करने की मंजूरी दे दी है। इस सूची में इन दोनों अधिकारियों सहित देश भर के विभिन्न राज्यों के कुल 33 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को जगह मिली है, जिनमें 1990 से 1995 बैच तक के अधिकारी शामिल हैं। राज्य सरकार द्वारा जयपुर डेयरी के संयंत्र का आधुनिकीकरण किया गया है। इस पर 133 करोड़ रुपए की लागत आई है। डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि प्लांट के नवीनीकरण से इसकी दूध प्रसंस्करण क्षमता 20 लाख लीटर प्रतिदिन हो गई है। वहीं दूध पैकिंग की क्षमता भी 16.5 लाख प्रतिदिन पहुंच गई है। पहले इसकी दूध पैकिंग क्षमता 10 लाख लीटर थी। इस मेगा प्लांट का जल्द ही उद्घाटन किया जाएगा। इस प्लांट से जयपुर और आसपास के उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाला दूध मिलेगा। साथ ही पशुपालकों से अधिक मात्रा में दूध खरीद होने से उन्हें सीधा फायदा होगा। पाली के सोजत सिटी में मेहंदी व्यापारियों के लिए एक कार्यशाला रखी गई। डाक विभाग और मेहंदी व्यापार संघ की ओर से आयोजित इस कार्यशाला में सोजत की विश्व प्रसिद्ध मेहंदी और अन्य स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने पर चर्चा की गई। कार्यशाला में पाली के डाकघर अधीक्षक तरुण शर्मा ने बताया कि डाकघर निर्यात केंद्र छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए

0: वैश्विक बाजार से जुड़ने का एक आसान और प्रभावी माध्यम है। इस दौरान व्यापारियों को निर्यात पंजीकरण, अंतर्राष्ट्रीय पार्सल बुकिंग, कस्टम प्रक्रियाएं, जीएसटी और आयात निर्यात कोड की जानकारी दी गई। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राज्य में अधिकांश हिस्सों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। अधिक आंधी और बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के 23 जिलों में तेज हवाओं और बारिश का अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर चला। हनुमानगढ़, सीकर, श्रीगंगानगर और चूरू के कुछ इलाकों में ओले भी गिरे। प्रदेश में सबसे ज्यादा 50 मिलीमीटर बारिश सीकर के दांता रामगढ़ में दर्ज की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जैसलमेर है, FM 101.8 MHz पर। दोपहर के 1:05 हुए हैं। प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम पणिहारी।

पणिहारी कार्यक्रम सुणा नाळे सगळी सख्यानो रेडिओ सखी टीनारा घणा घणा रोम रोम। बहनो देखो हर जगह रे आपरी अलग अलग विशेषता हुई, केत पर्वत है, केत पहाड़ है, नदियों है, समुद्र है, पठार है, रेगिस्तान है, केत बहुत हरियाली हुई, केत एकदम बंजर जमीन हुई, केतरी जमीन उपजाऊ हुई। तो ये जो प्रकृति है, प्रकृति हर जगह सु अलग अलग है और वे हर जगह री आपरी अलग अलग विशेषताओं है, उतरी अलग आपरी जो है वनस्पति है। तो हर एक जगह री आपरी एक अलग विशेषता हुए, अलग स्वभाव होया करे। मोइज जो आपो मनुष्य हो, आपो मनुष्यों रो भी सब रो रूप रंग स्वभाव सब अलग अलग हुए, लेकिन कोई री चमड़ी रो रंग गोरो है या कालो, ये मत है आप कोई इंसान नो जिको है उरी जिको योग्यता है उवे ना उवे सुको ने ओक सको। ये वास्ते बहुत ही जरूरी है कि आप उरा गुणो नो उरे स्वभाव नो उरे जिको करण रो तरीको है उवे मत है उवे ना आप ओको, ना कि रंग रे उवे मत है, क्योंकि रंग रे आधार मत है। तो कोई व्यक्ति नो कम या ज्यादा समझनो ए बिल्कुल भी सही को नहीं है। तो आपो देखो है कि जो कुछ चीजें होवे जो जे थ्रू वातावरण जेड़ो हुए रंग भी उवे मत है निर्भर करिया करे। जो परी भारत भूमि मत है भी आपो देखो है कि सबरा अलग अलग रंग गुण स्वभाव होया करे। एजको अपरो आनुवंशिकता है उवे सु भी अपनो गुण धर्म स्वभाव रंग मिलिया करे। अपरे इतरी जड़ी जलवायु है उवे हिसाब सु अपरो रंग होया करे, और अगर ठंडी जलवायु होवे तो अपो देखो है कि ओथरो जिको है रंग और भी अलग होया करे। और कोई भी व्यक्ति नो उरे चरित्र उरी योग्यता और बुद्धिमत्ता सु जोचनो चाहिए, क्योंकि उरे रंग सु उरो कोई भी लेवनो देवनो होवे ही कोनी है। जिको महान चिंतक मार्टिन लूथर होया है वो भी कहे कि व्यक्ति नो उरी त्वचा रे रंग सु नहीं बल्कि उरे चरित्र रे गुणों सुज परखनो चाहिए। तो देखो अपोरी जिको त्वचा है उरे रंग जिको होवे गोरो और कालो उरे मा अगर अपो वैज्ञानिक दृष्टि सु बात करो तो मेलानिन री बहुत अहम भूमिका है, क्योंकि अपोरी जिको त्वचा रो रंग है वो मेलानिन नामक जिको पिगमेंटन है उहे मथे निर्भर करिया करे। जिको लोगो रे शरीर में ये रो जिको है उत्पादन बड़े उमरो रंग है रो हुई, और जिको रे शरीर में ये रो उत्पादन कम हुए उमरो रंग हल्को होया करे। तो ये वास्ते बहुत ही जरूरी है कि आप जिको है रंग रे आधार मत है कोई भी व्यक्ति नो कम या ज्यादा नहीं मानो। और ऐसा चीजों पर है पूर्व जो स्वावी भौगोलिक जिको परा क्षेत्र है सूर्य री परा बैंगनी किरणों है उरे प्रभाव सो भी आप देखो है कि आप त्वचा रो रंग बदलतो रहे। अगर आप ज्यादा देर तक धूप और में घूमो तो भी आप देखो है कि आप चेहरे रो हाथों रो रंग में फरक आ जाया करे, और काफी लोग हुए जिको चेहरे रो रंग और हाथों रो रंग में भी बहुत ज्यादा फरक होया करे, क्योंकि जिको जगह ढकोड़ी रहे उवे में और जिको खुली रहे प्रकाश री किरणों पड़े उवे सो भी अपरे जिको है रंग में बहुत ही बदलाव आए जाया करे। लेकिन गुण जिको होवे व्यक्ति रा वो बहुत ही अधिक मायने रखे, और गुण अगर अच्छा होवे अगर थोरो गुण स्वभाव बढ़िया है थे आपरे जीवन में कुछ भी हासिल कर सको। लेकिन रंग रे आधार मत है थोनो योग्यता भी मिले है जरूरी कोने, क्योंकि कई बार एड़ो हुए कि अगर थे काला हो तो मैं स्वरूप गुने, लेकिन तो पढ़ाई में अगर अच्छा हो तो बहुत अच्छे पद में थे जाए सको, लेकिन अगर थे गोरा हो और थे पढ़ाई को नहीं करो तो ये जरूरी को नहीं कि थे एक अच्छो मुकाम हासिल कर सको। तो ये वास्ते रंग जिको है वो के थी
कोई प्रकारी योग्यता में जिको है फिट कोने बैठे, तो ये जिको सब चीजों हैं ये सब अपन ऊंचे भी उठनो चाहिए, क्योंकि ए जिको भेदभाव है ए हमें बहुत ही पुरानी बात है। आज जिको पढ़ियो लिखियो समाज है वेरे मैं जिको है नैन नक्स अच्छा हुए तो भी व्यक्ति सुंदर लगे, वेरे मैं कालो या गोरो जिको है वो अहमियत को नहीं रखे। और ए तो अपोरी बाहे चमड़ी है, सबसे सुंदर तो मन होनो चाहिए। अगर मन थोड़ो सुंदर है निर्मल है तो थो हर एक व्यक्ति न आपकी तरफ आकर्षित कर सको और हुनर सो थे आप आगे भी बढ़ सको। तो बहनों बहुत सारी बातों करनी है सुनावनी है, पर अगर अपो बातों ही करता रहूं तो बातों करते करते भी जो मन है वो ऊब जाया करे। और अगर गीत संगीत साथ में चलते रहे, गीत संगीत रे लहरी आमती रहे, तो अपर मन जो है वो मोर की तरह नाचन लग जावे। तो बहनों ले लो गीत संगीत रे दुनिया में और कराऊं मोरू मनोरंजन ये प्यारे से लोकगीत रे साथ।

0: वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: बोल बोल के थक गया।
3: क्या हुआ?
2: नया किट बैग चाहिए।
3: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
2: करेक्ट।
3: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किट बैग।
4: RBI कहता है
5: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
6: मैं ना सुनियो प्यारो सो लोग गीत और ओरे वादा परा जरूरी संदेश। तो बहनों आप देखो है कि आप जो संस्कृति है कुए में आप जो है खानो बनाओ बहुत ही ज्यादा अहमियत रखे, क्योंकि अगर कोई ना भी खुश करनो है तो कहो जावे कि कोई ना भी अगर खुश करनो है राजी करनो है तो वेरे दिल रो रास्तो पेट सो होए के जावे। तो इरे वास्ते अच्छो खानो जो है वेरी बहुत अधिक महत्व है। पर बात यह है कि आपको खानो बनावा को कर हो कई बर्तनों में बनावा वो भी बहुत ही ज्यादा मायनो रखे। आपको देखता था कि पहले अपरे जो है कौसीरा बर्तन होता था, पंचमेल रा बर्तन होता था, मिट्टी रा बर्तन होता था, भरतिया और जिकेनो पोकेमता था सिथरी भरतीयो सगली है ने वो सब चीजों अपरे वास्ते बहुत ही बढ़िया होती थी है ने। आजकल आप देखो है कि अपरे जिको गांव गुवाड़ में भी हमें समय बदल रहे हो है तो बदलते समय रे साथ आप भी बदल रहे हो, क्योंकि परिवर्तन जीवन रो नियम है। पर हर एक चीज में परिवर्तन भी जरूरी को नहीं, क्योंकि आप देखो है कि एज को परिवर्तन है ये सो अपरे शरीर नो हानि भी होवे, पर वो जिकी टाइम जिको चीज आवे वो अपो बिना उरो परिणाम जोचे ही वे ना ले ले वे। लेकिन अपरी जिको भारतीय सभ्यता और संस्कृति है वेरी अगर अपो बात करो तो हमें देखो हर चीज जिकेरा वैज्ञानिक परिणाम जद निकले तो ऐ जावे कि आपो जिको पहले सो काम कर रहा था वो ज्यादा सही है तू वे सो अपरे शरीर नो जिको है हानि को नहीं पहुंचती थी, वो बहुत ही पौष्टिक तरीके सो भोजन बनतो थो। क्यों? क्योंकि अपरो जिको सभ्यता संस्कृति इतिहास है वह में अपरे बर्तनों रो बहुत अधिक महत्व है तो, और जब मिट्टी में खानो बने तो वेरी जिको शौंदी खुशबू आवे वो भी अच्छी रहे और अपरे शरीर नो कोई प्रकार रे आंतरिक रूप से हानि को नहीं पहचान बनावे बतावे। लेकिन हमें आप देखो है कि अपरो समाज बदल रहे हुए तो आप देखियो कि पहले धीरे धीरे अपरा जिको बर्तन हता कौसीरा उमथे कले की जाती थी, लेकिन हमें आप उरे बाद बहुत ही तेजी सो जिको है आयो स्टील और स्टील के साथ ही साथ एल्यूमिनियम। तो जिको एल्यूमिनियम है ये अपरे वास्ते बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि रोजमर्रा रे जीवन में अब देखियो कि एल्यूमिनियम रो प्रयोग बहुत अधिक बढ़ गयो, क्योंकि रा बर्तन जिको होता था वो मोटे तल रहा होता था तो जब आप खानो मोटे तल वाले बर्तन में बना जी तो काफी देर तक गर्म रहे सिजे अच्छी तरीके से है, तो ये रो जिको प्रयोग है वो बहुत ही अधिक मात्रा में बढ़ियो, क्योंकि भारी गेज रहा होता था उत्तो भार को नहीं होता तो लोहे जी तो, लेकिन ये में खानो बने अच्छे और काफी समय तक गर्म भी रहमतो तो। और एक अपो देखो कि फॉइल रो प्रयोग भी बहुत ज्यादा करें अपो कोई ना खाने पीने री चीज अगर पैक करके दे वहीं या टिफिन भी बच्चों रो पैक करें तो अपो फॉइल रो प्रयोग करें, रोटी रे डब्बे नीचे भी काफी जना माताओं बहनों है अपरी वो घर में भी जिको है रोटी रे डब्बे रे नीचे जिको अपो पहले कपड़े रो प्रयोग करता था वेरी जगह काफी लोग फॉइल रो प्रयोग करिया करें तो जो फॉइल है एल्यूमिनियम का बर्तन है और वास्ते बहुत ही खतरनाक है। तो भैया खतरनाक क्यों है? क्योंकि ए जो बर्तन है फॉइल है ए अपरो जो इन आप उपयोग करें तो एंजाने में जो अपन बहुत सारी बीमारियों भी देवे। जो देखो अल्जाइमर है मतलब अपनी याददाश्त जो है धीरे धीरे कम हो गई सो किडनी में थे लीवर में थे भी है इफेक्ट डाली और एनीमिया जड़ी बीमारियों में नो भी है जो है नेत्रो दमतो रहे। तो ऐ जो है एल्यूमिनियम ए स्वास्थ्य वास्ते जो है आवश्यक तत्व कोनी है और ये रा जो बर्तन है आप खाणो बना जे तो आप खाने रे मोय खटाई रो प्रयोग भी कर जे क्योंकि जब आप गीली सब्जी या दाल और बना जे तो आप वे में टमाटर भी डालो तो ये जितनी भी खट्टी चीजों है ये खट्टी चीजों टमाटर नींबू या वेनेगर और अगर आप वे में डालो तो खाद्य पदार्थ जो है एल्यूमिनियम सो बर्तनों में जब पकावे तो वे साथ हो अम्लीय क्रिया करे और वह पर जो भोजन है वह न भी खराब करे और वो जो धातु रे साथ मिलके अपर शरीर में रिएक्शन पैदा करे। तो ये वास्ते अपन एल्यूमिनियम रे बर्तनों रे प्रयोग से बचनो चाहिए क्योंकि ये रा जो बर्तन है वह में अपन जो खाणो जब बनन रे बाद लंबे समय तक रहे तो वो वे सो अम्लीय क्रिया करे और वह पर वास्ते बहुत ही जो है अलाभकारी होया करे। तो ये वास्ते छोटी छोटी सी बातों हैं पर छोटी छोटी बातों बहुत ही कॉम रिली होया करे। तो इरे वास्ते अपोरी जो पारंपरिक प्रणाली होती है और आजकल अपो देखो ही कि हमें एल्यूमिनियम रो प्रयोग बढ़ी हो उरे बाद अपर नॉन स्टिक काला भी बर्तन आया नॉन स्टिक रे बाद माइक्रोवेव ओवन और आया फ्राइंग पैन आया उरे साथ साथ अपो देखो ही कि एयर फ्रायर भी आयो। लेकिन ये सब चीजों रो जब अपो प्रयोग कर लियो तो मानव शरीर मथे जद उरा असर सही कोनी दिखिया तो कहो गयो कि यो प्रयोग अपन कम से कम मात्रा में करनो चाहिए और हो सके तो मत करो। लेकिन अपनी जो पारंपरिक पकावन की शैली है वो वास्तव में बहुत ही बढ़िया है क्योंकि अगर अपरो मिट्टी रे बर्तन में खाणो पके तो उवेरा जो पोषक तत्व है वो भी वे में विद्यमान रहे और साथ ही साथ वो पर शरीर रे वास्ते भी फायदेमंद होया करे। तो बहनों ए जो है उरे साथ एक छोटी सी बात और कि जब आप कोई दाल में या कोई सूखी सब्जी में खटाई रे रूप में अगर आप अमचूर या नींबू रो प्रयोग करें ज्यादातर आप सूखी सब्जियों में करिया करें कुछ लोग की है अमचूर भी कम पसंद करिया करें तो खाणो जो सब्जी बन जावे तो थोड़ो से नींबू निचोड़ दीजिए ताकि उनमें खटाई आ जावे। तो जब थे उन्होंने आप छोटे स्टील के बर्तन में निकाल दो उरे बाद ही जो डालो तो सही रहे क्योंकि बार बार जो खटाई डाल के अपन सब्जियों गर्म भी नहीं करना चाहिए उवे सुबी उवेरी जो पोषक तत्व है वो खत्म होया करे। और कम तेल मसालों रो प्रयोग करो तो अपरे स्वास्थ्य वास्ते वो बढ़िया होया करे। और बाकी तो बहनों हणो जो समय चल रो है गर्मी रो ये गर्मी रे समय में तो आप देखो कि भोजन करते जो है अपन गैस और तकलीफ हो जाया करे। तो इरे वास्ते भोजन रो अपो अगर एक रोटी खावनी है इच्छा एक रोटी है तो अपो एक रोटी सु भी कम इज रोटी खाजे थोड़ा सी दाल चावल ले लू ताकि थोनो जिको है वे सु परेशानी नहीं हुए खानो खावन रे बाद। और खानो खावन रे बाद अगर अपो छाछ पी लो तो वे सो अपरो खानो पचे भी जावे

और वो परे वास्ते ठंडी भी रहे, और ये गर्मी रहे मौत तो जितो आधे कप पानी रो प्रयोग करो उतो बढ़िया है। और पानी रहा फलों रो प्रयोग जो तरबूज है, खरबूज जो है, खीरा ककड़ी है, यह सब चीजों रो सेवन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में करो ताकि अपने शरीर में जो है पानी की कमी नहीं हो। और अगर आपको कैरी पानी पियो और शिकंजी पियो तो यह सब चीजों भी अपने वास्ते बहुत ही फायदेमंद रहे और अपने शरीर में जो है पानी की कमी को नहीं होवन दे, डिहाइड्रेशन को नहीं होवे। तो ज्यादा गर्मी में कई बार अपन लगे कि बेहोशी दाई, तो मेरे वास्ते सबसे बढ़िया है कि आप पानी में नमक शक्कर और नींबू घोल के और पी लीजिए, तो अपने वास्ते बहुत ही बढ़िया रहे। तो बहनों बातचीत खूब करनी है, खूब सारी चर्चाओं करनी है, नई नई जानकारियों भी देना है। मैं कहने जी को है वो सुझाव सौंदर्य टिप्स और सब देशों पर पहले देशों थोड़ो से विराम और सुन सो है प्यारो सो लोकगीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: मैं ना सुनियो हणो प्यारो सो लोक गीत पणिहारी ने। पानी बहुत ही जरूरी है अपने वास्ते और हणो तो अपनो बारिश रे भी बहुत जरूरत है, क्योंकि बारिश रे पानी सो ठंडक हो जावे और अपरा जको नाडा नाडिया है वो भी भरी जावे, तो अपरा जको रेगिस्तानी इलाके में पानी रो संकट है वे सुधी अपनो थोड़ी सी राहत मिलिया करे। साथ ही साथ अपने वास्ते जो है कि संदेश भी जरूरी है और हणो जको अपो संदेश सुनियो आयुष्मान भारत रे वास्ते कि कितने लोगों नो फ्री में दवाइयों मिले, इलाज फ्री में हुए और हमारा घर जमीन और बिकन सो भी रुक जावे, तो बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि हर एक जगह हर एक देश में जो इलाज है वो फ्री में को नहीं होया करे, लेकिन अपोरे भी एक भारत रे मोए आपो देखो कि इलाज फ्री में हुई। साथ ही साथ बहुत सारी एडी योजनाओं हैं जिको चलाई जावे, तो वे मोए सुई हे कपरे त्री है 5 PM मातृशक्ति योजना। हमें भैया मातृशक्ति योजना की है, तो मातृशक्ति योजना जिको है ए अपरे प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना भी एनो कयो जावे और ए महिला और बाल विकास मंत्रालय जिको है उवे रे द्वारा चलाई जावे और मातृत्व लाभ री योजना है। तो इरो जिको मुख्य काम है, मुख्य उद्देश्य है वो है कि जिको गर्भवती स्त्री है या स्तनपान करावण वाली जिको महिला है उवे नो और उवे रे शिशुओं नो पोषण संबंधी जिको है सहायता प्रदान करावणो, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि आप देखो कि आप गांव गुवाड में हर एक व्यक्ति जिको है सबल को नहीं होया करे, हर एक व्यक्ति कने उत्ता पैसा को नहीं होया करे, तो वे अभाव में हुए ना ये सब तकलीफों से नहीं जूझनो पड़े। क्योंकि अगर गर्भवस्थ आपको देखो कि जिको गांव गुवाड में परा छोटा परिवार है वह जगह पुरुष और महिला दो ही जना जिको है मजदूरी करे और आप घर रो पालन पोषण करे, तो अगर महिला गर्भवती हो से तो वे ना काम करण में दिक्कत आसे, तो काम करण में दिक्कत नहीं आवे ये रे वास्ते ज है जिको मजदूरी वेरी छूट जावे, तो वो छूटन सुवे ना नुकसान नहीं हुए वेरी भरपाई रे वास्ते माताओं और शिशुओं रे स्वास्थ्य रे सुधार वास्ते भी ये योजना नो चलायो गयो है। तो ये रे ए जिको योजना है ये रे मैं जिको माताओं हैं उमरे बैंक खाते रे मैं उमनो आर्थिक सहायता दी जावे। पहली संतान अगर पहलो जीवित बच्चों हुए तो वे ना कुल 5,000 राशि जिको है वो दी जावे, पर जिको 5,000 राशि है ए दो किस्तों में दी जावे। और अगर दूसरी संतान हुए और दूसरी संतान बेटी हुए तो दूसरी संतान रे रूप में अपनो बेटी होने में 6,000 जिको किस्त है वो एक ही बार में अपनो दी जावे, ए सहायता राशि है। तो ये जो योजना है ये मुख्य लाभ और उद्देश्य में एक तो जो मैं थोनों बतायो कि अगर महिलाओं काम को नहीं करे तो हमारी मजदूरी सो हमारे जो छूट जावे मजदूरी वैसे वो नुकसान नहीं हुए वरी भरपाई रे वास्ते हो और वो ना जिको है पैसों दी जाए। ये पारदर्शिता है कि सीधी खाते में थोड़े जिको है पैसा आ जाया करे। आप रो बैंक रो लिंक भेजो, डाकघर में खाते में भेजो, जिको चीज तो आपने खाते नो लिंक करी हुए वह में थोड़े सीधी आ जैसे। साथ ही साथ जननी सुरक्षा योजना जिको है वे रो भी आंतरिक लाभ ये में मिलिया करे, क्योंकि वे रे तहत भी जिको है आपो 6,000 तक री राशि रो लाभ वे सो भी उठाए सको। इरे वास्ते जिको पात्रता है वो आई जाए कि गर्भवती और स्तन पान करावण वाली महिला होनी चाहिए। जिको सरकारी कर्मचारी है उन्होंने ये सुविधा रो लाभ को नहीं मिला, क्योंकि वो तो पहले से भी आप जिको वेतन उठाए रहा है वो में भी वो ना मातृत्व अवकाश जिको है वो मिलिया करे। तो ये वास्ते आप हमें गाँव गुआड़ में बैठोड़ा अपन सारी जानकारी नहीं हुआ तो भी आप ये योजना रो लाभ को नहीं उठाए सको। तो ये अपन अगर अपन इमें आवेदन करना है तो आप वो कौकर कर सो। तो अपर वो जिको है आंगनवाड़ी वाली कार्यकर्ता है या सखी है वो सो आप संपर्क कर सको, फॉर्म वो सो लेके आप भर सको। ये अलावा आप जिको है ऑनलाइन भी फॉर्म भरवा सको है नी। और वे वास्ते जिको है चाहिए की चीज है वो है कि खुद रो और पति रो आधार कार्ड चाहिए, बैंक और ऑफिस री वो जिको पोस्ट ऑफिस हुई ओथरी पासबुक या वेरी फोटो कॉपी चाहिए। और अगर पहले बच्चों और है तो आप जिको बच्चे आलो अपन हॉस्पिटल सो कार्ड मिले वो कार्ड चाहिए। ए सब चीजों हुई तो अपनी पात्रता री जांच हुई और वे रे बाद ऑनलाइन या जिको आशा सहयोगिनी सखी है वो अपरे यही आंगनवाड़ी वाली जिको सखी है वो यो मिलान करे और अपन जिको है वैसो लिंक सो जोड़ देवे और जुड़ते

अपने खाते रहे मौज को है, अपोरी राशि आई जाया करे। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है और ये रो अपनो लाभ भी उठाना चाहिए, क्योंकि आजकल जिको है अपो देखो है कि जिकी टाइम अपो माँ बने वह टाइम अपने शरीर में जिको बदलाव आवे, वो बदलाव सो अपनो तकलीफ हुई। तो वे रे वास्ते ये जरूरी है कि अपो जिको है आप रो खुद रो स्वास्थ्य रो ध्यान रखो और अपने स्वास्थ्य रो अपो भली तरीके से ध्यान रख सको। ये वास्ते ज योजनाओं सरकार चलावे ताकि अपनो आर्थिक रूप से भी ज्यादा कमी नहीं आवे। तो बहनों ऐ जिको योजनाओं है अपन यो लाभ भी उठा जाए और पूरो उपयोग कर जाए, है ने। तो वे सु अपन खुद भी स्वस्थ रह सो, अपो खुद स्वस्थ रह सो तो अपो एक स्वस्थ बच्चे नो जन्म दे सो, और वे रो अगर अपो भली प्रकार सो भरण पोषण कर सो तो वे रो भी स्वास्थ्य जिको है सही रह से, सही समय में थे सब टीका लगवा जाए ताकि बच्चों भी और माता भी हष्ट पुष्ट रहे और आप रो जीवन अच्छी तरीके से बसर कर सके। तो बहनों बातचीत चर्चा तो खूब सारी है, खूब बातों भी करनी है, पर पहले सुनवा जी बहनों ने जरूरी संदेश।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

तो बहनों सुनियो, मैं प्यारो सुलोक गीत साथ ही साथ देखो। सुंदरता हर महिला रो ख्वाब होया करे, और आजकल तो महिलाओं रो ना पुरुषों रो भी ख्वाब है जी, क्योंकि सुंदर दिखनो सबनो अच्छो लगे। देखो रंग कोने हुए लेकिन त्वचा अगर चमकती दिखे तो सबनो बढ़िया लगे। तो ये वास्ते छोटो सी उपाय है कि आप बेसन जिको है वो अपरी त्वचा रे वास्ते नेचुरल क्लींजर रो काम करे। तो है मौसू जिको गंदगी है दिन भरी धूल धुएं रही वो है ना खत्म करते। तो इरे वास्ते थोड़ो सी बेसन में थोड़ो सी दही और एक चुटकी हल्दी डाल के अगर आप थोड़ी देर लगाए रखो और हल्के हाथों से मसलते हुए वे ना हटाए दो, पौड़ी सु साफ कर लो, तो आप देख सो कि अपने चेहरे री जिको टैनिंग है वो में भी अपन आराम मिल से, साथ ही साथ जिको मृत त्वचा है वो भी हट जाया करे। तो बहनों समय जिको है ए टिक टिक टिक टिक कर चलतो रह गई। तो हमें इस समय इजाजत को नहीं दें तो क्या पापरी बातचीत और चर्चा जारी रखो। तो आपसे फिर मिलन रे वादेरे साथ आपरी रेडियो सखी टीना नो दे रहा हूँ सीख, राम राम सा।

0: We end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारत ने खाड़ी क्षेत्र में तेल पोत पर अमरीकी नौसेना के हमले का कड़ा विरोध किया। हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी। वायुसेना का AN-32 विमान असम के जोरहाट स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया,
3: देयर इज अ कोर बिलीफ देयर दैट
4: वहां ये स्पष्ट सोच है कि फ्रांस जैसी महत्वपूर्ण साझेदारियां जिनके साथ भारत की एक विशेष वैश्विक रणनीतिक भागीदारी है, केवल सरकारों के स्तर पर नहीं बल्कि लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित होनी चाहिए।
2: राजदूत सिंगला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
5: ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी, जिसमें स्लोवाकिया एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान भागीदार है। स्लोवाकिया यात्रा के बाद प्रधानमंत्री फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 में भारत की मौजूदगी दुनिया में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उसके प्रति देशों के विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि यह लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पेरिस में आयोजित वाइवाटेक 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शामिल होंगे। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्लोवाकिया में भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अंतिम रूप लेने से भारत और स्लोवाकिया के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन और शोध को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेट को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण

0: कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: आईएमए स्थित ऐतिहासिक चेटवुड भवन के समक्ष आयोजित परेड ग्राउंड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। इनमें 34 कैडेट मित्र राष्ट्रों से हैं, जो प्रशिक्षण पूरा कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विंग ऑफिसर के रूप में किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा,
2: इन एन एरा ऑफ रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड कॉम्प्लेक्स ग्लोबल environments, the Indian Army must remain adaptive and future ready. I urge you to be lifelong leaders, learners, courageous decision makers and ethical leaders.
1: पासिंग आउट में प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सॉर्ड ऑफ ऑनर विशाल कुमार को प्रदान किया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट में भी ऑफिसर कैडेट विशाल कुमार प्रथम स्थान पर रहे, प्रिंस राज दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तेजस भट्ट ने तीसरा स्थान हासिल किया। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है।
3: राडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम आज के युद्ध में डिप्लॉय, जिनमें ना तो फाइटर का पता चलता है, ना उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का। तो अब तो ऐसे सिनेरियो भी सामने आ रहे हैं जहां पूरी तरह से अपने एडवर्सरी के ट्रैफिक सिस्टम और सीसीटीवी तक को कंट्रोल कर लिया जा रहा है, और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है।
0: समारोह में सुखोई 30, एमकेआई, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। रक्षा मंत्री ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। बैठक में गृह मंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा। केंद्र सरकार ने पिछले महीने अवैध प्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। एक रिपोर्ट।
4: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेट वेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे, इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। समाचार कक्ष से मेघना।
0: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि भारत के शहरों को आर्थिक रूप से मजबूत, पर्यावरण के अनुकूल, सामाजिक रूप से समावेशी, तकनीक आधारित और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान ने देश में शहरी विकास को दिशा देने और शहरों की क्षमताओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार पांचवें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि

0: शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं।
1: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो तब तक स्थायी समझौता नहीं करेगा जब तक अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाता और अरबों डॉलर की फ्रीज की गई परिसंपत्तियों के नुकसान की भरपाई नहीं करता। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चल रही गुप्त वार्ता में अमरीकी और पाकिस्तानी मध्यस्थों ने पुष्टि है कि दोनों पक्ष शांति समझौते के मसौदे पर सहमत हो गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस बीच ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तेहरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़ी बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ये स्पष्टीकरण तब आया है जब ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि ये मूल्य सीमा वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने और रूस के मुनाफे को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। नीति आयोग और जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में भारत जर्मनी विकास सहयोग को मजबूत करने के लिए एक बैठक हुई। बैठक में स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ विकास, कृषि सुधार, जल प्रबंधन और हरित अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम उद्यमों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं। ये उपलब्धि उनकी कंपनी स्पेस एक्स के शेयर बाजार में शानदार शुरुआत के बाद हासिल हुई है। स्पेस एक्स के शेयरों का मूल्यांकन बढ़कर लगभग 2,10,000 करोड़ डॉलर हो गया है। कारोबार के पहले दिन स्पेस एक्स के शेयरों में 19% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलियाई बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सिडनी में जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को पराजित किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत का सफर समाप्त हो गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आज रात गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे। स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये जैसलमेर केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप जुड़े रहेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों के साथ। प्रसारण आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से होगा।

ओ जी तेरी गली में लगा दी मैंने छोटी मोटी सी दुकान। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मुझे जबा। प्यार तुझे देगा वो मालिक वो प्यारे जबा, मैं तेरी मीठी करूँ यहाँ। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान।

प्यारे, दूर से क्यों है टुक टुक तकना प्यारे, पैसे पे ना ही ले जा प्यारे, आना दो आना नहीं है तो दस कैसे मेरी जान, जिंदगी है क्या सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल मुझे जबान, प्यार तुझे देगा वो मालिक वो प्यारे, जब मैं तेरी मीठी

माल खजाना यहीं सब रह जाएगा, यहाँ से कोई कहो क्या ले जाएगा। माल खजाना यहीं सब रह जाएगा, यहाँ से कोई कहो क्या ले जाएगा। माया है माया ये।

0: दिल मीठी जबान प्यार तुझे देगा वो मालिक वो प्यारे दबा मैं तेरी मीठी करवा जिंदगी है क्या सुन मेरी जान प्यार भरा दिल मीठी जबान जिंदगी है क्या सुन मेरी जान प्यार भरा दिल मीठी जबान।
1: मजू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत फिल्म माया से था। सली चौधरी की तर्ज मोहम्मद रफी की आवाज थी।

अब हो ना कभी सवेरा, रात ये तेरी है, रात ये तेरी है, तारों की टोली नीले गगन से यही पुकारे रे।

चांद को देखो जी, चांद को देखो जी, मस्ती लुटाए जादू जगाए दिल में हमारे।

मुझे तुमसे अपनी खबर मिल रही है, पुकारो मुझे नाम लेकर पुकारो, मुझे तुमसे अपनी

अब तो हंस के अपनी भी किस्मत को चमका दे। कानों में कुछ कह दे जो इस

विविध भारती से आप सुन रही हैं सदाबहार रंग में। मुकेशी आवाज में आपने सुना फिल्म आशिक का गाना और अब आरजू फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज।

0: मैडम विश्व की आवाज में आरजू फिल्म का गीत आपने सुना। हंसल चपुरी के बोल थे, संगीत शंकर जयकिशन का था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी

पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: आइए सुनिए मन चाहेगी मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी
2: मन चाहेगी।
0: मन चाहेगी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के दूसरे व्यक्तियों के अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपनी हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं केवल पोस्टकार्ड भेजें।
0: और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है? कार्यक्रम मन चाहेगी
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: बहुत बहुत स्वागत मन चाहेगी कार्यक्रम में। आज का पहला गाना आप सभी की फरमाइश पर है। ये हमारे श्रोता हैं राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद, अखिला और सुनील प्रसाद, इसके अलावा टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह, इंद्रजीत और स्वीटी छाबड़ा की चिट्ठी हमें प्राप्त हुई है, पोस्ट कार्ड है। शुगर फैक्ट्री गेवराई से दिनकर सालवे, गंगा सालवे और श्रेया सालवे की फरमाइश है। और इसके अलावा ये जो गाना है ये हम सुनवा रहे हैं छत्तीसगढ़ से पोषण बंदोर, चंद्र किरण प्रीति और छाया बंदोर की फरमाइश पर, और गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले की फरमाइश है। आप सभी की फरमाइश पर मैं चाहिए गीत का ये पहला गाना। सुलक्षणा पंडित और भूपेंद्र की आवाजें, गुलजार की बोल, खनी रॉय का संगीत, फिल्म का नाम है गृह प्रवेश।

0: हाँ क्यों, क्या किया है मैंने?
1: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से।
0: अच्छा बाबा, लो पास से शुरू करती हूँ।

और अब मनचाहे गीत कार्यक्रम में हम सुनवा रहे हैं कोटवा नारायणपुर से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय की फरमाइश। इसी गाने के लिए ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गुंडाने, अर्चना गुंडाने, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा ताई गुंडाने की फरमाइश है। खांजी पीर उदयपुर से जब्बार मोहम्मद, अशरफ नजीब, गोपाल और रमेश नाचानी, रुद्री जिला धमतरी से चंद्रकांत सीमा साहू, सूर्यकांत राकेश साहू और शुभम सावित्री साहू और दत्रेंगी भाटापारा से इसकी फरमाइश की है हीरामणि वर्मा ने। दूर हस्ते फिल्म का गाना

अजल लगाया दिन रात हो गई, मिल गए नैना से नैना, क्या बात हो गई।

कल नहीं आना मुझे न बुलाना कि मार कटाना जमाना। कल नहीं आना मुझे न बुलाना कि मार कटाना जमाना। तेरे होठों पे रात ये बहाना था।

जागे सारी सारी रतिया बन गई गोरी चकोरी क्या बात हो गई बन गई गोरी चकोरी।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए
3: हैं। मंजा गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और अगले गाने की फरमाइश की है बीड़ शहर से प्रकाश पगारिया ने। इसके अलावा गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतेग विरक और मीका विरक, बेरडी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक प्राची और तनु करमरकर। इसी गाने की फरमाइश की है रेडियो कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और पूरे डागला परिवार ने। और इसके अलावा उन पाठिया सूरत से नसीम बानो और मोहम्मद आसिफ और शाहीन बानो ने। सुनिए कभी कभी फिल्म का ये गाना, साहिर लुधियानवी खयाम।

मंच गीत कार्यक्रम का अगला गाना गोविंदगढ़ मांझी वाला करणपुर राजस्थान से राजू टुटेजा, खुश दिल उर्मिला टुटेजा, गुड्डू जीनू मम्मू स्माइल टुटेजा और शिव सेठी की फरमाइश पर है। इसी गाने को सुनना चाहते हैं खंडवा से दीपक कुमार, अनीता, समर्थ शाह, श्वेता शाह, रीति शाह और अर्पित शाह। इसके अलावा फरमाइश करने वाले श्रोता हैं रामेश्वर बाबूजी और राम

मेड़ता राजस्थान के ये श्रोता हैं, रामेला समेलाल घीवर, युवांश कुणाल, गोविंद ममता और मुन्नी धमनी किरवाई के श्रोता, और ये फरमाइश है बड़वाह मध्य प्रदेश से प्रवीण और मीना की। आप सभी की फरमाइश पर ये गाना, फिल्म का नाम है भाभी, राजेंद्र कृष्ण की बोल, चित्रगुप्त की तर्ज।

कार्यक्रम का अगला गाना आप सभी की फरमाइश पर है। इंदौर से सृष्टि उपाध्याय, कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, कर्ण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता, राजाजीपुरम लखनऊ से मोहम्मद दानिश, एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लामुल निसा, शकील अहमद और शहनाज, खुरई मध्य प्रदेश से राम सखी, परमानंद सौरभ, गौरव, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरण रोहित, छोटू डूमनु और इनका पूरा परिवार, और इसके अलावा भोपाल से रविकांत गुप्ता, किरण गुप्ता, आशीष और सुप्रिया। आप सभी की फरमाइश पर खुशबू फिल्म का ये गाना।

दिन काफी गीत ब्रह्मचारी तन से है रविकांत गुप्ता, किरण गुप्ता, आशीष और सुप्रिया की फरमाइश। कुछ और फरमाइशें गाना सुनने के बाद।

इस गाने की फरमाइश सिमरा से रमेश यादव, माया यादव, रिंकू सनी और कोमल की है, और छतरपुर से रामेश्वर रैकवार, दीपक अहिरवार, मुकेश राकेश और सुनील रैकवार।

0: कल तेरे जलवे पर आए भी होंगे, लेकिन झलक मेरे ख्वाबों में होगी। फूलों की डोली में होगी तू रुक सक, लेकिन महक मेरे सांसों में होगी। कल तेरे जलवे पर आए भी होंगे, लेकिन झलक मेरे ख्वाबों में होगी। फूलों की डोली में होगी तू रुक सक, लेकिन महक मेरे सांसों में होगी। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर।
1: ये था आज का मनचाही गीत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया।
2: मन चाहेगी
3: मन चाहेगी
1: मन चाहेगी
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
5: नाट्य तरंग। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर शंकर शेष के लिखे नाटक अभिशप्त गांधार का पहला भाग। इसका निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। तो आइए सुनते हैं नाटक अभिशप्त गांधार पहला भाग।

0: दासी।
1: हाँ राजकुमारी।
0: गांधार की सीमा कहाँ समाप्त होगी? आप इतनी अधीर क्यों हैं?
1: लगातार इतने दिनों की यात्रा, कितनी नदियाँ, कितने पर्वत, मेरी शिविका की डोलती हुई तालबद्ध गति, इसके बाद भी
0: क्या राजकुमारी?
1: ये सब कुछ जो मेरा है, इसके स्थायी रूप से छू जाने का भय, उसकी कसम।
0: आप तो व्यर्थ ही भावुक हो रही हैं राजकुमारी गांधारी।
1: किंतु एक बात बता, क्या मेरी तरह किसी वधु की यात्रा हुई है अब तक? विवाह तो पिता के घर होता है, उसके बाद वधु अपने पति के रथ पर आरूढ़ होती है, उसके बिल्कुल निकट।
0: राजकुमारी।
1: हाँ, मैं पिछले कुछ वर्षों से एक स्वप्न देखा करती थी, एक दिन वो आएगा, मेरे स्वप्नों का राजकुमार। सुनहरा रथ होगा उसका, और उसमें जुते होंगे हंसों की तरह उज्जवल, विद्युत की भांति गतिमान धवल अश्व। यदि रथ पर वो होता तो मेरी ये यात्रा क्या इतनी निर्जीव होती? न जाने क्यों कभी कभी मेरे मन में भय की आंधी उठती है, कहीं ये यात्रा मेरे स्वप्नों की शव यात्रा ना।
0: राजकुमारी, आपके मुंह से ऐसी अशुभ बात।
2: सुनो, हम गांधार राज्य की सीमा पर पहुंच गए हैं। हमारा दल आज रात्रि यही विश्राम करेगा। कल सूर्योदय से पूर्व ही हमारी हस्तिनापुर की यात्रा प्रारंभ होगी। राजपुत्र सपनी की आज्ञा का पालन हो।

0: राजकुमारी, आप अभी तक सोई नहीं?
1: प्रयत्न करने के बाद भी नींद नहीं आ रही।
2: आप अकारण ही बहुत सोचती हैं।
0: आपकी शंकाएं निर्मूल हैं, आपका भय अकारण है।
1: तो मेरे लिए स्वयंवर का आयोजन तो नहीं हुआ? मुझे अपने अधिकार से वंचित क्यों रखा गया?
0: स्वयंवर होता भी तो क्या आप दूसरा निर्णय ले सकती थी? हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र को छोड़कर क्या आपकी जयमाला दूसरे के गले में पड़ सकती थी? इसे अपना सौभाग्य समझिए कि स्वयं महाराज भीष्म आपके लिए प्रस्ताव लेकर आए।
1: भीष्म भीष्म भीष्म, ये नाम बार बार सुनकर मुझे क्रोध आने लगा है। हर बात में भीष्म, जैसे वो विधाता हो, नियामक हो।
0: पूरा जीवन जिसने त्याग किया हो, अपने सुख का सर्वस्व देकर जिसने हस्तिनापुर की शक्ति को अनुप्राणित किया हो, उस भीष्म का नाम तो आएगा ही।
1: मेरा मन तो दूसरी ही बात सोचता है।
0: अब सोचना बंद करें राजकुमारी, अपनी मनस्थिति को भावी जीवन के लिए ढालने का प्रयत्न करें।
1: लाख प्रयत्न करती हूँ किंतु उस विचार से छुटकारा नहीं मिलता। मुझे लगता है मेरे पिता ने मुझे बेच दिया।
2: राजकुमार,
1: भीष्म की शक्ति के सामने अपना शीश झुका दिया है।
2: फिर वही
1: अपनी राजनीतिक सुरक्षा के लिए मुझे बलि बनाया जा रहा है। ये कार्य व्यापार ऊपर से जितना सीधा सरल दिखाई देता है उतना है नहीं।
0: जब आपने पहले से ही धारणाएं बना ली हैं, तो मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन राजकुमारी, जब आप हस्तिनापुर पहुंचेंगी तो आपका भव्य स्वागत होगा, और जब आप वहां का वैभव देखेंगी तब गांधार को सदैव के लिए भूल जाएंगी, और तो और मुझे भी भूल जाएंगी।
1: ईश्वर करे तेरी ही वाणी सच निकले।

0: कहती थी ना, देखिए पूरा हस्तिनापुर उमड़ा रहा है। मार्ग के दोनों ओर सहस्त्रों व्यक्ति आपके स्वागत में खड़े हैं। आपके आगमन से हस्तिनापुर में कितना उत्साह है। तो देखिए आपके मार्ग पर फूल बिखरे हुए हैं।
1: हस्तिनापुर अद्भुत नगर है। इतने ऊंचे ऊंचे भवन, इतने सुंदर उद्यान, इतना धन जितना सुना था उससे कहीं अधिक। वो देखो वो कौन भव्य राजपुरुष खड़ा है।
0: वो ही तो है भीष्म पितामह, कुरुवंश की सत्ता की केंद्र बिंदु, सत्य जिनका व्यक्तित्व है, त्याग जिनका श्वास है, तपस्या जिनकी देह है, ब्रह्मचर्य का तेज जिनकी आत्मा है। वो भीष्म स्वयं आपके स्वागत के लिए खड़े हैं। हस्तिनापुर का प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्ति आपकी अगवानी करने खड़ा है। राजकुमारी,
1: क्या राजकुमार धृतराष्ट्र भी?
0: वो अभी कैसे आएंगे, उनसे तो विवाह मंडप में ही भेंट होगी। इतनी भी अधीरता अच्छी नहीं है राजकुमारी। देखिए महाराज भीष्म रथ की ओर बढ़ रहे हैं, उन्हें आगे बढ़कर प्रणाम कीजिए।
1: कुरुवंश के महापराक्रमी तपस्वी महापुरुष को ये गांधार कन्या प्रणाम करती है।
2: आयुष्मती भव, कहो पुत्री, यात्रा कैसी रही? कोई कष्ट तो नहीं हुआ?
1: कुलदेव का की कृपा और आपके आशीर्वाद से यात्रा निर्विघ्न संपन्न हुई महाराज।
2: पुत्री गांधारी, आज तुम्हारे आगमन के साथ ही मैं एक बहुत बड़े उत्तरदायित्व से मुक्त हुआ। मुझे पूरा विश्वास है राजकुमार धृतराष्ट्र के व्यक्तित्व के अधूरेपन को तुम भर दोगी। तुम्हारे आगमन के साथ ही हस्तिनापुर के जीवन में सुख के नए अध्याय का प्रारंभ होगा।
1: मैं आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप उतरने का पूरा प्रयत्न करूंगी महाराज।
2: साधु, मैंने तुम्हारी और राजकुमार शकुनी के ठहरने की व्यवस्था एक विशेष भवन में कराई है। चलकर विश्राम करो।
1: जो आज्ञा।

0: कुछ बोलती क्यों नहीं? शकुनी कब गांधा लौट रहा है? तू बोलती क्यों नहीं?
1: राजकुमारी, अब राजकुमार शकुनी गांधार नहीं लौटेंगे।
0: क्यों?
1: वे अब स्थायी रूप से यही रहेंगे। भीष्म पितामह ने उनके लिए अलग भवन की व्यवस्था कर दी है।
0: लेकिन शकुनी यहाँ क्यों रहना चाहता है? अपनी बहन के ससुराल में आश्रय लेना क्या उसके लिए सम्मानजनक होगा? क्या यहाँ के वैभव ने उसे भी मोल ले लिया? तू चुप क्यों है? बोलते क्यों नहीं?
1: राजकुमार शकुनी आपके हित में यहाँ रहना चाहते हैं।
0: मेरे हित में? क्या मैं अपंग हूँ? क्या मुझ में विचार शक्ति नहीं है?
1: अब मुझसे ना पूछे तो अच्छा है। सत्य को कह पाने का साहस मुझ में नहीं है। संभवतः सत्य को देख पाने का साहस आप भी ना बटोर सके।
0: ऐसा क्या हो गया? मैं नहीं चाहती कि शकुनी यहाँ रहे। यहाँ कितना भी वैभव क्यों ना हो किंतु उसका यहाँ रहना बहुत अपमानजनक है। मैं चलकर उसे समझाती हूँ।
1: अब बहुत देर हो गई है राजकुमारी। राजकुमार शकुनी का यहाँ रहना सचमुच आपके हित में है। मैं सोच भी नहीं सकती थी इतना बड़ा षड्यंत्र आपके विरुद्ध रचा जाएगा। उस षड्यंत्र में भीष्म पितामह जैसे तपस्वी व्यक्ति और आपके पिता जैसे तेजस्वी व्यक्ति सम्मिलित होंगे।
0: कैसा षड्यंत्र?
1: प्रवंचना हुई है राजकुमारी। जिसे हम स्वर्ग समझ रहे थे और कुछ नहीं, एक चिरंतन अंधकारमय पथ की अनंत यात्रा है। ये वैभव, ये सम्मान, पद, सत्ता, सब रेत की नींव पर खड़ा ऐंद्रजालिक भवन है राजकुमारी। अब ईश्वर ही आपकी रक्षा कर सकता है। हाँ राजकुमारी, सत्य के कुरूप चुगुप समय स्वरूप का साक्षात्कार कीजिए। अपने हाथों अपने सभी स्वप्नों का अग्नि संस्कार कीजिए। यदि साहस है तो सुनिए,

0: draști, pretraști, ce o tinine! Sărman! Sureche prăcașchea se făcau nepotnei! O trestine! Trestine!
1: पुत्री गांधारी, तुमने नेत्रों पर पट्टी क्यों बांधी? खोल दो इसे।
0: नहीं आर्य श्रेष्ठ, ये संभव नहीं। ये मेरी प्रतिज्ञा है।
1: प्रतिज्ञा? कैसी प्रतिज्ञा?
0: महाराज, मेरे पति दृष्टिहीन है। उन्होंने संसार का दृश्य सुख एक क्षण के लिए भी नहीं भोगा है। उनके भाग्य में अनंत अंधकार है। उनके दुख के साथ समरस होने के लिए क्या ये आवश्यक नहीं कि मैं भी अंधत्व को अंगीकार कर लूं?
1: किंतु तुमने धृतराष्ट्र को देखा कहां? कल विवाह के समय उसे एक बार देख तो लो।
0: क्या लाभ? क्या वे मुझे देख पाएंगे? जब वे मुझे बिना देखे स्वीकार कर सकते हैं, तो क्या मैं उन्हें बिना देखे स्वीकार नहीं कर सकती? उन्हें देखकर संभव है मेरे मन में मोह जाग जाए, संभव है मेरी प्रतिज्ञा डगमगाने लगे।
1: तुम अपनी प्रतिज्ञा का अर्थ समझती भी हो?
0: दृष्टता के लिए क्षमा करें देव, किंतु आपसे एक प्रश्न पूछूं?
1: पूछो।
0: आपने कभी अपनी प्रतिज्ञा का अर्थ समझा
1: गांधारी,
0: या आपने अर्थ समझकर ही प्रतिज्ञा की थी? हाँ आर्य श्रेष्ठ, पूरा जीवन एकाकी बिताने की भयावह प्रतिज्ञा क्यों की आपने? केवल पिता की इच्छा पूरी करने के लिए ही ना, केवल एक आदर्श स्थापित करने के लिए। फिर मुझे क्यों रोकते हैं?
1: विवाह के पश्चात तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व ही सापेक्ष हो जाएगा। तुम्हारे निर्णयों के सुख दुख धृतराष्ट्र को भी भोगने पड़ेंगे। मैं फिर कहता हूं, मेरी और तुम्हारी प्रतिज्ञा के आधार ही अलग है। हट, छोड़ दो।
0: अब संभव नहीं है आर्य श्रेष्ठ, राजपुत्र के दृष्टिहीन होने की जानकारी यदि मुझे गांधार में ही मिल गई होती तो मैं वहीं से आंखों पर पट्टी बांधकर चलती, किंतु मेरे साथ प्रवंचना की गई है।
1: प्रवंचना का विचार मेरे मन में कभी नहीं था गांधारी, किंतु जो कुछ हुआ उसके लिए मैं लज्जित हूं।
0: कुरुवंश में ये पहली घटना नहीं है आर्य श्रेष्ठ, आप इसी प्रकार अंबा, अंबिका और अंबालिका को भी उठा लाए थे। उन भोली कन्याओं से आपने ही स्वयंवर का अधिकार छीना था। अंबा का सारा जीवन इसी दुख की आग में चलता रहा।
1: उस घटना का स्मरण न दिलाओ
0: पुत्र। क्यों ना दिलाऊं? आज जन्म ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा करने के बाद भी आप ऐसे राजपुत्रों के विवाह में रुचि लेते रहे जो स्वयंवर में वरमाला के अधिकारी नहीं हो सकते।
1: तुम नहीं जानती गांधारी, मैंने विवाह नहीं किया, किंतु अपने पिता का वंश दीप प्रज्वलित रखने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ।
0: और आपकी वचनबद्धता की वेदी पर मेरी बलि दी जा रही है। आर्य श्रेष्ठ, मैं अंबा नहीं बन सकती, किंतु गांधारी तो बनी रह सकती हूँ। मेरी आंखों पर बंधी यह पट्टी राजनीति शक्ति और सत्ता द्वारा स्त्री की स्वाधीनता पर किए गए आक्रमण का एक ऐतिहासिक स्मृति चिन्ह बनकर रहेगी।
1: गांधारी, अपने निःस्वार्थ के लिए मैंने कभी कुछ नहीं किया, फिर भी यदि तुम्हारे प्रति मुझसे अपराध हुआ है तो मुझे क्षमा करो।
0: मैं क्षमा करने वाली कौन होती हूँ? और अपराध करने के बाद क्षमा मांगने के शिष्टाचार में मेरा विश्वास भी नहीं है। इस प्रवंचना ने संसार के प्रति मेरा विश्वास ही छीन लिया है। अब इस संसार को खुली आंखों से देखने की न इच्छा है न साहस। आर्य श्रेष्ठ, विवाह की तैयारी कीजिए।

0: me.
1: Pritrasht.
0: Oh, aap. विवाह के बाद हमारी पहली रात्रि है. आइए आइए ना.
1: मुझे तनिक सहारा दो गंधारी. न जाने क्यों इन लोगों ने मेरा कक्ष बदल दिया. जानते तो है स्थान बदल जाने से मुझे कितनी कठिनाई होती है. अपना हाथ मुझे दो गंधारी.
0: किंतु महाराज मेरे लिए भी तो.
1: क्या?
0: अच्छा आप वहीं रुकिए, मैं आ रही हूँ.
2: क्या हुआ? गिर पड़ी?
0: लगता है किसी पात्र से टकरा गई. फिर प्रयत्न करती हूँ.
1: प्रयत्न? तुम्हें भी प्रयत्न करना पड़ता है?
0: मेरे लिए ये बहुत नया नया है महाराज, किंतु कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा.
1: तो क्या तुम भी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. पिताक्रज भीष्म ऐसा नहीं कर सकते. माता सत्यवती झूठ तो नहीं कह सकती. उन्होंने तुम्हारी आंखों की उपमा कमल हरिण थमर न जाने किस किस से दी थी.
0: महाराज
1: गांधारी, मैंने न हरण देखा है न कमल, परंतु सोचता हूं लोग जिसे सुंदर कहते हैं वैसी तो आंखें अवश्य होंगी तुम्हारी, किंतु तुम भी.
0: क्या माता सत्यवती और भीष्म पितामह ने आपको कुछ नहीं बताया?
1: क्या?
0: महाराज मुझे क्षमा करें, मुझे स्वयं सहारे की आवश्यकता है.
1: क्या तुम भी ज्योतिहीन हो?
0: नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है महाराज. मैंने स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है.
1: क्या?
0: मेरा पातिव्रत यही मांग करता है. यदि आप संसार को नहीं देख सकते तो मुझे भी कोई अधिकार नहीं है. मैंने अंधत्व स्वयं धारण किया है.
1: और तुम इसे पातिव्रत कहती हो? ये तुमने क्या किया गंधारी? ये किसने कह दिया तुमसे कि इससे मैं प्रसन्नता का अनुभव करूंगा?
0: क्या आप इस प्रतिज्ञा से प्रसन्न नहीं हो?
1: मैं अंधत्व का दुख जानता हूं गांधारी. मैं तो सोचता था तुम्हारी आंखों से संसार को देखूंगा. तुम मेरा अधूरापन किसी सीमा तक पूरा कर दोगी. और तुमने स्वयं अंधत्व स्वीकार कर लिया. यानी अब हमारी गृहस्थी में केवल अपूर्णता, केवल दृष्टिहीनता.
0: महाराज मैं सोचती थी कि
1: अब भी समय है गांधारी, तोड़ दो अपनी प्रतिज्ञा. देखो मैं तुम्हारी दृष्टि का सहारा लेकर जीना चाहता हूं.
0: किंतु मैं तो प्रतिज्ञा कर चुकी.
1: गांधारी देख लेना, तुम्हारी ये प्रतिज्ञा न तुम्हें सुखी बना पाएगी, न मुझे और न कुरुवंश को. ये अंधत्व हमें बहुत महंगा पड़ेगा. ये सत्य सहनी है, असहनी है ये सत्य. असहनी है ये सत्य.

0: महारानी की जय हो। देवी, एक समाचार है।
1: क्या?
0: महारानी कुंती को पुत्र लाभ हुआ है।
1: पुत्र लाभ?
0: हाँ महारानी,
1: बहुत शुभ समाचार है। कुरुवंश की नई पीढ़ी का पहला प्रतिनिधि जन्मा है। महाराज ने महोत्सव के आयोजन की घोषणा कर दी ना?
0: आश्चर्य है महारानी।
1: क्यों, इसमें आश्चर्य की क्या बात? क्या ये स्वाभाविक नहीं?
0: आप नहीं समझेंगे महारानी, कभी नहीं।
1: क्या,
0: महारानी कुंती का पुत्र ही अब हस्तिनापुर का?
1: पगली कहेंगी। क्या तो जानती नहीं कि महाराज धृतराष्ट्र ज्येष्ठ है? वस्तुतः वे ही महाराज हैं, इसलिए ये निर्विवाद है कि नियमानुसार उनका ही पुत्र राज्य का अधिकारी होगा। महाराज पांडु तो शासन संचालन में महाराज के मात्र सहायक हैं। तेरा भ्रम निरर्थक है।
2: कंसारी,
1: महाराज आ रहे हैं, तू जा।
0: जो आज्ञा महारानी।
2: सुना तुमने कंसारी, महर्षि व्यास का मन

0: सिद्ध हो गया। कुंती ने पुत्र को जन्म दिया।
1: हाँ महाराज, सुना, जान का सुख भी मिला। महाराज पांडु की स्वीकृति लेकर महारानी कुंती ने धर्मराज का जो आवाहन किया था वो फलीभूत।
0: हाँ गांधारी, मैंने समस्त हस्तिनापुरी को सुसज्जित करने का आदेश दे दिया है। निरंतर 3 दिन तक भव्य आयोजन होगा। क्यों, उचित है ना?
1: सर्वथा उचित है महाराज। वर्ष वृद्धि का समाचार भला किसे सुखदायक नहीं लगता। किंतु क्या कुंती पुत्र ही अब राज्य का उत्तराधिकारी भी होगा?
0: उत्तराधिकारी? इस विषय पर तो हमने सोचा नहीं थे गांधारी।
1: महाराज, ज्येष्ठ तो आप हैं, राजा तो आपका ही पुत्र होना चाहिए।
0: होना चाहिए गांधारी, ये ठीक है, परंतु मेरी असमर्थता के कारण राज्य का सारा कार्य संचालन तो पांडु ने ही किया है। क्या उसके पुत्र का कोई अधिकार नहीं होगा?
1: महाराज, कहीं आपके हृदय की उदारता आपके पुत्र के जीवन के लिए अभिशाप न बन जाए?
0: मैं दृष्टिहीन हूँ देवी। यदि पिताग्रज भीष्म चाहते और पांडु हट करते तो क्या मुझे शासनाधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता था? परंतु उन दोनों ने ऐसा नहीं किया। मैं इतना कृतज्ञ तो नहीं कि उनके उपकार भूलकर उनकी संतान को उसके अधिकार से वंचित कर दूं?
1: अर्थात हस्तनापुर का भविष्य?
0: नहीं जानता देवी, अन्य विवादों की भांति इसका निर्णय भी महाराज भीष्म करेंगे।
1: किंतु महाराज, ये तो अनर्थ होगा।
0: धैर्य रखो देवी गांधारी, कौन जानता है हमारे वंशजों के लिए नियति के गर्भ में क्या छिपा है। सुनो, गर्भधारण तो महारानी कुंती और तुमने साथ ही किया था। नियति तुम्हारे पक्ष में भी हो सकती थी, तुम्हारी कोख से भी हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी जन्म सकता था, किंतु ऐसा नहीं हुआ।
1: महाराज,
2: महाराज धृतराष्ट्र की जय हो।
0: कौसु,
2: महाराज भीष्म विशेष मंत्रणा के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
0: अब हमें अनुमति दो देवी गांधारी, ईश्वर कल्याण करे।
1: मेरी कोख से भी तो हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी जन्म सकता था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ ऐसा? क्यों नहीं, क्यों नहीं? प्रबल ऐसी कोख का क्या लाभ? ऐसे संतान से क्या मैं पास ही नहीं रह सकती थी? इतना अपमान, इतना अपमान, इतना अपमान।

0: महारानी एक बार, केवल एक बार। नहीं, देखिए तो कितना तेजस्वी है, कितना चौड़ा माथा, देह की स्वर्ण कांति, सुनहरे केश, आंखें कैसी हैं, बहुत मोहक। काश मैं देख सकती हूँ। किस पर क्या है? किस पर? दोनों पर। आप दोनों की आकृतियों में जो सुंदरतन है वो ही इसने पाया है। महारानी, महारानी क्या आप इसे देखेंगी नहीं? एक बार तो देख लीजिए।
1: नहीं, मैं इसे नहीं देख पाऊंगी।
0: एक क्षण के लिए देख लीजिए, विश्वास रखिए मैं किसी से नहीं कहूंगी।
1: नहीं, एक बार देख लेने के बाद मेरा मोह पड़ जाएगा, इसके बाद आंखों पर पट्टी बांधने की इच्छा ही नहीं होगी। रहने दे।
0: कैसा भाग्य लेकर जन्मा है ये बालक। मां देखना नहीं चाहती, पिता देख नहीं सकता, न जाने संसार को ये किस दृष्टि से देखेगा।

0: महाराज द्रुपद के यहाँ से अभी तक कोई समाचार नहीं आया।
1: क्या आपको विश्वास है कि द्रौपदी दुर्योधन का वरण करेगी?
0: क्यों नहीं, दुर्योधन से कौन स्पर्धा कर सकता है।
1: हाँ, कुंती के पुत्र अब कहाँ है, उन्हें तो वर्णावत का लाक्षाग्रह खा गया।
0: बहुत दुखद प्रसंग है ये गांधारी, कई बार हृदय में आशंका उठती है कहीं इसमें दुर्योधन का कोई षड्यंत्र तो नहीं।
1: इस आशंका का कारण?
0: कोई विशेष कारण नहीं, दुर्योधन पांडवों के प्रति सदैव ईर्ष्यालु रहा है, फिर शकुनी की मंत्रणा और साहचर्य सुखद तो हो नहीं सकते।
1: महाराज, पांडवों के प्रति आपका अतिरिक्त मोह ही दुर्योधन की ईर्ष्या का कारण रहा है।
0: ये क्या कह रही हो गांधा?
1: हाँ महाराज, बाल्यकाल से ही भीम और अर्जुन मेरे पुत्रों को सताते रहे हैं, पर आपने कभी उन्हें प्रताड़ित नहीं किया। यदि दुर्योधन भीम पर अंकुश न रखता, समय समय पर उसे पराजित न करता, तो आज मेरे पुत्रों में से अधिकांश तो जीवित ही न रहते।
0: जानता हूँ गांधारी, सोचता था पांडु नहीं रहे तो पांडवों की चिंता का भार भी मुझ पर ही आ पड़ा है। सचेष्ट था कि अनजाने में भी कहीं पांडवों के प्रति मुझसे अन्याय न हो जाए, इसीलिए जब तक पांडव रहे उनके प्रति सहृदय रहा। संभव है इसी भावना ने मुझे अपने पुत्रों के प्रति किंचित निर्मम बना दिया। तुम समझते हो मैं अपने पुत्रों से प्रेम नहीं करता?
1: नहीं महाराज, मेरा ये आशय कदापि न था।
2: महाराज।
0: कौन? विदुर, आओ आओ।
2: बहुत शुभ समाचार है महाराज।
0: अच्छा,
2: द्रुपद नरेश के यहाँ से अभी अभी दूत आया है।
0: स्वयंवर का क्या हुआ?
2: हमारा कुल शक्ति संपन्न हो गया है महाराज। द्रौपदी अब पुत्र वधु के रूप में हस्तिनापुर आ रही है।
1: मुझे विश्वास था कि दुर्योधन अवश्य जीतेगा।
2: क्षमा करें देव, द्रौपदी का वरण दुर्योधन ने नहीं अर्जुन ने किया है।
1: अर्जुन नहीं?
0: अर्जुन जीवित है?
2: हाँ महाराज, भाग्यशाली पांडव जीवित है।
0: कैसे?
2: लाक्षाग्रह का निर्माण किसी का षड्यंत्र था महाराज। पांडवों को उसका आभास हो गया था, वे वहां से वेश बदल कर बच निकले। स्वयंवर की शर्त पूरी होने पर ही पांडवों ने अपना वास्तविक परिचय दिया।
0: विदुर, तुम्हारी शुभ सूचना से मुझे असीम आनंद हो रहा है। मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। समस्त हस्तिनापुरी को सज्जित किया जाए, मंगलोत्सव का आयोजन हो, पांचाल राज की पुत्री का भव्य स्वागत किया जाए।
1: दुर्योधन असफल हुआ, पांडव जीवित है।

0: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शंकर शेष के लिखे नाटक अभिशप्त गांधार का पहला भाग। निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति आपने सुनी। और आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे इसी नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।
1: Comments, light, sound, camera, action!
2: बॉम्बे टॉकीज में आइए आज सुनते हैं कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत।

0: साल के थे तभी लहू उनके मुंह लग गया। जी हाँ, और डांस उनकी नस नस में लहू के साथ दौड़ने लगा।
1: वो यार था नस नस में, अब ये जग गया, लहू मुंह लग गया।
0: डांस के स्टेज ने टेरेंस के अंदर वो ऊर्जा भर दी जो आज भी उन्हें हर वक्त म्यूजिक की बीट्स पर दौड़ाती रहती है।

0: मेरे डैडी तो मजदूर है, वो पढ़े लिखे भी नहीं। तो पिताजी ने हम सभी भाई बहन को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गैराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके। मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे वो सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया। 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन दे रहा था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था। हमारे परिवार में डांस एक लग्जरी है, ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते इसमें।
1: इतनी कठिनाइयों के बावजूद जिंदगी के साथ लड़ाई में आप आगे बढ़ते गए, जीतते गए।
0: मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा।
1: आप जब कभी हारते थे तो जिंदगी से शिकायत नहीं होती थी, तो फिर क्या किया आपने?
2: मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। हर फिक्र को धुए में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुए में उड़ा।
1: जिंदगी ने टेरेंस को गले लगाया, टेरेंस ने जिंदगी का साथ खूब निभाया। बहुत सी बातें, बहुत से गाने, बहुत सी यादों के साथ आज टेरेंस हैं हमारे बीच।

0: बहुत शुक्रिया अमरकांत जी, आपने बहुत प्यार और बहुत सहज रूप में बहुत कुछ कह दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: आप कोरियोग्राफी करते थे?
0: हाँ, लेकिन
1: स्कूल में और कॉलेजेस में, लेकिन फिल्मी कोरियोग्राफी अलग होती है, उसके नुएंसेस अलग होते हैं,
0: एकदम अलग सर,
1: उसकी ट्रिक्स अलग होते हैं।
0: एब्सोल्युटली,
1: वो तो आप जानते नहीं थे।
0: एब्सोल्युटली,
1: फिर आपने इसमें कैसे अपने आप को मैनेज किया?
0: फिल्मी जो मुझे मिली, पहली फिल्म जो थी, छोटा सा यू नो कोरियोग्राफी का सेक्शन था, लगान में वॉल्स का सेक्शन था, और मैं बहुत नर्वस था क्योंकि पहली बार मैं
1: तो, और बड़ी बड़ी बड़ी फिल्म थी।
0: हाँ,
1: बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म थी आमिर की और आशुतोष की भी, और फिर हिस्ट्री भी बनी।
0: तब हमें नहीं पता था कि ये हिस्ट्री बनने वाली है, तब हमें लगा कि अच्छा नॉर्मल फिल्म, फिल्म बन रही है।
1: लेकिन उसके बाद जब वो फिल्म रिलीज हुई होगी और जब उससे टेरेंस का नाम जोड़ा, तो एक खुशी जो आपको मिलनी चाहिए, वो तो खैर जाहिर सी बात है, उसका तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन कमर्शियली आपको फिर उससे कोई फायदे हुए होंगे?
0: एक्चुअली मैं कहूंगा कि यू नो मेरा बहुत, मैंने कुछ उस फिल्म में बहुत छोटा काम किया सर, लेकिन बहुत इज्जत मिली, तो ये भी ऊपर वाले की मेहरबानी है कि लोग मेरा नाम जोड़ने लगे बड़े बड़े हस्तियों से, जैसे सरोज खान जी ने कोरियोग्राफ किया था, राजू खान ने कोरियोग्राफ किया था, वैभवी मोचन ने, उनका बहुत ज्यादा काम था सर, मेरा बहुत छोटा, लेकिन कोरियोग्राफर के नाम में मेरा भी नाम जोड़ा गया था।
1: जाहिर सी बात है ना,
0: लेकिन एक्चुअली बोलूं वो बहुत दिग्गज कोरियोग्राफर्स है, मेरी कोई औकात नहीं है उनके सामने, मैं तो अभी अभी पैदा भी नहीं हुआ वैसा वाला कोरियोग्राफर, लेकिन शायद कोरियोग्राफर्स के नाम साथ में जुड़ गए थे, तो वो लोगों के नजर में, अरे हाँ ये बड़े लोगों के साथ में जुड़ गया है, ये मेरी खुशनसीबी थी, लेकिन ये सत्य नहीं है, और ये मैं इसका खुलासा करना चाहता हूँ कि ये मेरा सत्य है कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया लगान में, कोई बड़ा गाना नहीं किया, छोटा सा एक पोर्शन था वही किया, लोगों को लगा कि मैंने बड़े नाम

0: बड़े फिल्म के साथ जुड़ गया हूं, तो अगर आशुतोष जी ने विश्वास किया है तो इस बच्चे में कुछ ना कुछ होगा। तो मुझे सेकंड फिल्म मिल गई जो झंकार बीट्स थी, वो भी फिट हो गई।
1: झंकार बीट अपने आप में एक अलग फिल्म थी,
0: करेक्ट,
1: जिसमें खास तौर से राहुल देव बर्मन का जिक्र था।
0: करेक्ट,
1: आरडी बर्मन साहब का।
0: हाँ।
1: और अगर आप देखें तो राहुल देव बर्मन के हर एक गाने में आज भी वही कशिश है,
0: करेक्ट,
1: वही ताजगी है, जबकि वो उनकी साज से निकले होंगे।
0: करेक्ट।
1: तो उन गानों पर, उस संगीत पर कुछ, उसमें कुछ नयापन लाना,
0: हाँ,
1: और फिर उस पे डांस, वो एक अलग चैलेंज नहीं था आपके लिए?
0: एब्सोल्युटली, क्योंकि धुन जो थी, जो विशाल शेखर पहली फिल्म थी उनकी और सुजॉय घोष की भी पहली फिल्म थी, वो जो तो धुन बना रहे थे, इट वाज मतलब यू नो एक वेरिएशन था ऑफ आरडी बर्मन को लेकर और उसके संगीत को समझकर वो आज की तारीख में वैसा वाला संगीत बना रहे थे और बहुत ही अच्छे अच्छे गाने बने उसी टेम्पलेट में, लेकिन एक नया ट्विस्ट देना था, एक नया अंदाज देना था आज की पीढ़ी जिसके साथ जो कनेक्ट कर पाए। तो वो इंस्ट्रक्शन भी सुजॉय ने दिया था कि मुझे थोड़ा पुराना वाला फ्लेवर चाहिए और थोड़ा आज का।
1: उसमें डांस में फिर क्या किया, मैं वही जानना चाहता हूँ।
0: हाँ, तो डांस में इट वॉज नॉट सच अ डांस ओरिएंटेड सॉन्ग, इट वॉज मोर अबाउट, इट वॉज अ रॉक बैंड, तो वो बैंड है, फिल्म में भी वो लोग सब संगीतकार हैं, म्यूजिशियंस हैं, तो उनको नाचना नहीं था, लेकिन जिस तरीके से उनको फिल्माया गया था, एक रॉक स्टार वाली फील आनी थी। एक रॉक बैंड कैसे आते हैं, उनके बीच में कैसा छोटी छोटी अनबन होती है, और कैसे वो अलग अलग काम कर रहे हैं लेकिन रात को वो आके गाते हैं और साथ में मिलते हैं, तो वो वाली कहानी थी। तो उस किरदार के हिसाब से मैं बन गया था। आई डिडंट हैव मच ऑफ डांसिंग टू डू, बट पिक्चराइजेशन हैड टू बी डन वेल। एज अ कोरियोग्राफर समटाइम्स हर गाना आपको आर्टिस्ट को नचवाना नहीं पड़ता, सिचुएशन के हिसाब से आपको वो दर्शाया जाना चाहिए ताकि वो अच्छा लगे देखने में, फील करे और वो कैरेक्टर से बाहर ना निकले। ओनली ड्रीम सीक्वेंस जब रिया सेन और शायन मुंशी, वो एक्टर भी थे, उनका एक गाना था जो शान ने गाया था, दिल ने तुमको चुन लिया है, तुम भी मुझको चुनो ना, चुनो ना, ला ला ला ला ला ला ला ला, बहुत अच्छा प्यारा गाना था। वो गाने में ड्रीम सीक्वेंस में थोड़ा डांसिंग दिखाया गया था, बट मोस्टली इट वाज मोर ऑफ अ फील का गाना था।

जो एक्चुअल फिल्म में डांस एकदम कहर वाला डांस जो किया वो तीसरी फिल्म में आया नाच, जो अभिषेक बच्चन और अंधरा माली के साथ था और जो इसके डायरेक्टर साथ थे राम गोपाल वर्मा। वो फिल्म हाथ ऐसे आई कि अंतरा माली मेरे शोज देखती थी स्टेज पे। मुझे तब भी, मैं फिल्मों में काम करता था लेकिन मुझे स्टेज का बहुत बड़ा लगाव था और मुझे स्टेज पर परफॉर्म करना ज्यादा पसंद था, तो मैं अतरंगी चीजें स्टेज पर ट्राई करता था, एकदम अतरंगी, जो मतलब एकदम लोग बोलते थे क्या कर रहा है तू स्टेज पे बट कुछ भी जो भी दिमाग में आया करता था, लेकिन उसका कुछ यू नो सर या पैर नहीं था, बट एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट, और मैं वो स्टेज पे दिखाता था। तो उसको वो स्टाइल बहुत पसंद आया अंतर मालिक को, और उन्हें बोला कि मुझे आपका ये स्टाइल बहुत पसंद है और मैं ये सीखना चाहती हूँ और मैं इसको अपने फिल्म में लेके आना चाहती हूँ। और एक फिल्म लिखी है जो मैंने लिखी है और राम गोपाल वर्मा ने लिखी है, उसका फिल्म का नाम है नाचा पे कोरियोग्राफी की लाइफ पर ये फिल्म है। और फिर मैंने धीरे धीरे समझा कि ये फिल्म तो मेरे ऑलमोस्ट मेरे से मिलती जुलती है, बिकॉज इट वॉज अ कोरियोग्राफर हु वॉज नॉट अ वेरी ट्रेडिशनल कोरियोग्राफर, जो हटके है, जो हटके सोचता है। तो उसने वो जो मेरा जो चाल चलन है, जिस तरीके से मैं बैठता था, वो मुझे नोटिस करने लगी अंतरा माली जी, और वो हर एक चीज समझने लगी कि मैं कैसे सोच रहा हूँ, कैसे बात कर रहा हूँ, कैसे डांस करता हूँ, कैसे समझाता हूँ। तो वो सब चीजें उसने मुझे स्टडी कर दिया और वही चीज वो अपने फिल्म में नाच में करवाना चाहते थे। तो जो कंटेम्प्रेरी डांस का जो मैंने तड़का दिया उस गाने में, तो क्रिटिकली मुझे बहुत सारा लोगों ने फोन किया कि ये फिल्म बहुत हटके है, तुमने कुछ और ही कर दिया, कुछ अलग ही दिख रहा है, डांस नहीं पता नहीं क्या, कुछ एक अलग नजारा दिख रहा है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्रिएटिवली मैंने कुछ अलग सोचा। मैंने बोला कि जो लोग करते वो नहीं करूंगा मैं, कुछ अलग अलग अलग। तो उसके पीछे मैंने क्रिएटिवली कुछ अलग ही डांस करवाया और वो बहुत दिख कर आया और लोगों को पसंद आया। सो इन माई क्रिएटिव जर्नी आई हैव डन ओनली 10 फिल्म्स, नॉट मच, बट दिस इज वन ऑफ देम दैट काइंड ऑफ यू नो एक अलग एक पहचान मुझे इस फिल्म से।

0: 那样一定好想到你，把他的那些我全拿你，那样一定好想到你。
1: अच्छा, अभी आपने इसके पहले ये बात कही कि अंतरा माली ने आपको एक स्टेज शो में देखा और फिर और आपने ये बताया कि स्टेज शो में बड़े अतरंगी से डांस आप करते थे, तो गाने भी अतरंगी चुनते होंगे?
2: बहुत ही,
1: इस तरह के क्या? क्योंकि अतरंगी गानों के लिए कुछ खास नाम भी हैं हमारे, जैसे किशोर कुमार साहब हैं, अमित कुमार जी के भी गाने रहे हैं, तो आपके अतरंगी गाने किस तरह के होते थे?
2: वेल, अगर हिंदी गाने तो यूज नहीं करते थे, बिकॉज वी यूज टू यूज यू नो नॉन कॉपीराइटेड म्यूजिक, क्योंकि हमारे पास लाइसेंस नहीं था, तो हम लोग म्यूजिक क्रिएट करते थे, लेकिन इन्फ्लुएंसेस बहुत सारे थे जो मतलब यू नो देसी फिल्मों से थे। कुछ गाने बहुत ही यू नो दिल को करीब छूने वाले, जो एकदम सोलफुल थे, जैसे ए जिंदगी गले लगा ले, और मुझे गजल्स बहुत पसंद हुआ करते थे, गजल्स जैसे कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, क्योंकि मैं स्टेज पे ना मूड लेके चलता था।
1: अच्छा अच्छा,
2: तो मेरी कहानियां होती थी, तो मुझे ऐसे वाले मूड वाले गाने बहुत पसंद हुआ करते थे, जहां पे एक मूड फील हो जाता है, जो बहुत ही संजीदा, जो बहुत ही जिसमें लिखावट में एक फीलिंग होती है। तो मुझे अर्थ के गाने, सदमा के गाने या मासूम के गाने या ऐसे फिल्मों के गाने बहुत ही मतलब बहुत खूबसूरती से लिखे हुए, जो बहुत ही यू नो सोचकर, या साहिर लुधियान के गाने सभी मुझे पसंद थे। एक गाना था जो मैं जूझ जाता लाइफ में, संसार से भागे फिरते हो,
1: चित्रलेखा,
2: चित्रलेखा करेक्ट सर, मीना कुमारी। तो वो गाना मेरे लिए वॉज अ पिविटल मोमेंट, जब मैंने वो गाना सुना और जो जो उसका अर्थ था, क्योंकि मैं उसी मैं भी लाइफ में जूझ रहा था कि यू नो मटीरियलिज्म इज राइट ओके और इज इट कि सब कुछ त्याग देना, भोग में है या त्याग में है, तो क्या है? सो आई थिंक ऐसे गाने जो मैंने सुना करता था, मेरे माइंड की क्या सोच है, और उसको फिल्मों में दिखाया गया था। सो आई थिंक आई वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाई ऑल ऑफ दीज ग्रेट आर्टिस्ट एंड ग्रेट सॉन्ग्स एंड ग्रेट लिरिसिस्ट, क्योंकि जो म्यूजिक एक तरफ, लेकिन जो अच्छा लिखते हैं उस पर भी अमल करना बहुत इंपॉर्टेंट।

0: अभी आपने जो ये बातें की, गजल की बात की, लिरिक्स की बात की, आपने बात की कि कहीं कोरियोग्राफर्स उससे बनते हैं, ये एक सवाल मेरे मन में उठ रहा था कि आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली?
1: नहीं ली।
0: आपने कोरियोग्राफी की अगर बात की जाए तो फिल्मों में ऐसे कोई बहुत
1: असिस्ट
0: फिल्में भी नहीं की या किसी को असिस्ट भी नहीं किया?
1: yeah.
0: बावजूद इसके आप वो जो कोरियोग्राफी के लिए जो एक खास चीज होती है जिसको क्रिएटिविटी कहते हैं, देखिए ऐसा एक डांस देख के डांस कर लेना एक अलग चीज है, लेकिन एक डांस को खुद क्रिएट करना, एक लिरिक्स को डांस में कन्वर्ट करना, वो एक अलग चीज है जो कहीं ना कहीं गॉड गिफ्ट कह सकते हैं इसको।
1: अंदर से आता है।
0: इसको आपने महसूस कैसे किया? आपने इसको कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर होता है, देखिए गॉड गिफ्ट है, लेकिन वो गिफ्ट आप बाहर कैसे निकाल कर, आपने की जो प्रोसीजर है वो कैसे सीखी, उसको कैसे समझा आपने?
1: सो कोरियोग्राफी ना दो तरीके से होती है। आप गाने को सुनते हो और गाना आप पर हावी हो जाता है और आपका शरीर उस गाने को सुनकर, उसके कानों के ध्वनि को सुनकर आपका अंग विनोद डांस करने लगता है, वो एक तरीका है। लेकिन मैं दूसरा तरीका अप्लाई करता हूँ। मैं म्यूजिक लगाता ही नहीं हूँ, मैं जो थॉट है, जो सोच है, उसको लेके चलता हूँ और मेरे असिस्टेंट को बोलता हूँ कि मुझे पता नहीं कि मैं क्या करने वाला हूँ, लेकिन मुझे गौर से देखना और याद रखना और मुझे कॉपी करते रहना, क्योंकि मुझे आपको अगर बोलोगे कि अभी वही चीज वापस करो तो मुझे याद नहीं रहेगा, लेकिन जो भी निकल रहा है मेरे अंदर से उस पर थोड़ा आप ध्यान देना, क्योंकि कुछ चीजें अच्छी होंगी कुछ चीजें नहीं। तब उतना ध्यान नहीं था कि कैमरा भी लगा सकते हो और आप रिकॉर्ड कर सकते हो। उस जमाने में मैं अपने असिस्टेंट पर ज्यादा निर्भर करता था, तो मैं स्टूडियो में जाता था और मेरे अंदर से जो भी निकल रहा है वो मैं डांस करता था विदाउट म्यूजिक। और फिर मैं सोचता था कि ये जो मैं कर रहा हूं ये कौन से म्यूजिक पे अच्छा लगेगा। फिर मैं म्यूजिक को सुनता था, मतलब कि ये म्यूजिक मुझे इंस्पिरेशन दे रहा है। तो इट वॉज ऑलवेज हाफ हाफ। पहले मैं आगे बढ़ता था, अपना कुछ करता था ताकि वो हावी ना हो जाए मुझ पर, और फिर मैं म्यूजिक को सुनता था और फिर उसको कंबाइन करता था। फिर लव्स कभी कभी जो अल्फाज जो है अगर वो अच्छे हैं तो वो कभी कभी यू नो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी कोरियोग्राफी में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली क्रिएटिव लोगों में, कि आप एक ही म्यूजिक को सुन के 10 चीजें कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा। इसके लिए आपको एक इंटेलिजेंस चाहिए, उसके लिए आपको एक समझ चाहिए। वो समझ होता है, इट्स कॉल्ड एन आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस, क्योंकि आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप बहुत सारे रूप में इसको दिखा सकते हो, लेकिन कौन सा एकदम सही होगा, एकदम स्पष्ट होगा, एकदम सक्षम होगा और सूक्ष्म भी होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत चीजें आप कर सकते हैं, बहुत लिटरल भी कर सकते हो, मतलब जो आप लव्स बोला है वही को आप दिखा रहे हो, तो फिर वो ना जैसे आप डेफ एंड डम वाला डांस हो गया, फिर वो वाला नहीं होना चाहिए कि एकदम लिटरल आप को ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है। लेकिन क्या आप उसको एक मेटाफोरिक एक मेटाफोरिक रूप में अगर दे सकते हैं तो देन इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो यू हैव टू यूज योर आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज टू अंडरस्टैंड कि कैसे आप उसी एक म्यूजिक या गाने या शब्द को सही चीजों को जोड़कर उसको बहुत ब्यूटिफुली कन्वे कर सकते हो, और उसके लिए चाहिए आपको कॉम्पोजिशन टेक्निक। और कोरियोग्राफी कॉम्पोजिशन इज एन आर्ट, मतलब जो गाना जो आप डांस कर रहे हैं उसके उतार चढ़ाव क्या है। अगर आपकी बॉडी झट से एक स्ट्रांग मूवमेंट दे रही है, उसके बाद आप फिर से स्ट्रांग मूवमेंट मत कीजिए, एक थोड़ा सॉफ्ट मूवमेंट कीजिए ताकि वो एक लहर की तरह ऊपर नीचे चढ़े। अगर आप एक बहुत बड़ा वाला मूवमेंट कर रहे हैं उसके बाद एक छोटा वाला मूवमेंट कीजिए। अगर आप बहुत ही मतलब अगर आप एक बार मतलब 8 काउंट के लिए सामने होके कैमरा के सामने करें तो कई बार थोड़ा मुड़ के आप थोड़ा डांस की ताकि वो विजुअल थोड़ा बदले। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ विजुअल एंड हाउ यू यूजिंग स्पेस। जो स्पेस है आप किस तरीके से यूज करते हैं और आपका अंग किस डायरेक्शन में जा रहा है और वो क्या जो आप कर रहे हो वो मैच कर रहा है म्यूजिक और शब्दों के साथ, ये एक अलग साइंस है, ये एक अलग विधि है जानना कि कैसे करते हैं, और इट्स कॉल्ड द आर्ट ऑफ कॉम्पोजिशन। ये झट से नहीं आता, यू हैव टू वर्क ऑन इट, और फिर जाके आप बहुत ही जब प्रैक्टिस करते हो और बहुत दिमाग लगाते हैं, कई बार अंदर से आ जाता है और एक सेकंड में वो सही आ जाता है। कभी कभी आपको बहुत कुछ करना पड़ता है और फिर उसको फनल करना पड़ता है, इसको एक एसेंस में मतलब इसको एक रिड्यूस करना पड़ता है,
0: छानना पड़ता है
1: That's the word I was searching for. तो उसको छानना पड़ता है ताकि वो सही मात्रा में ज्यादा ना हो ना कम हो। इसकी जो समझ है ये बहुत फाइन इंटेलिजेंस है।

0: फुटे हैं मस्ती के वाटरफॉल। आज न पूछो हाल मेरा बस देखो मेरी ताल। हाँ दिल में मेरे फुटे हैं मस्ती के वाटरफॉल। आज न पूछो हाल मेरा बस देखो मेरी ताल।
1: आज मिस्को बनाए जिसको महफिल में तूफान मचेगा।
0: मैं दम तुझ में है दम तो आजा मेरी जान नचेगा।

0: ऐसी जो नजरें मिलती हैं सांसें खोती हैं, ऐसी छुप छुप के आंखों में वो बातें होती हैं।
1: ओ मेरी नैना नैना मिला ले, बातें बातों में बढ़ा दे, कुछ करते करते कर जाए कुछ ज्यादा आसरा, नाचो ना मुना बिना दिल से दिल को मिला और कदम तो हिला, मानो ना मुना बिना समझो बात जरा
2: Yeah, you're not your boy. Not your mama,
3: not me. Oh, the boys came from far in a motor car, but he gives me fella. Oh, boy, don't you see the light? I'm losing the heart to the man I tell her.
0: तुम जैसे हमरे तो मिलते हैं गलियों गलियों में, ये ना सोचो कुछ मिल जाएगा तुमको गलियों में।
1: ये भवरे की शुरुआत बागीचे जैसी रात, न जाने कैसे कैसे गुल खिले जिनको क्या पता।

0: यही मैं चाहता था कि हमारे जो श्रोता है वो इस बात को समझे कि एक कोरियोग्राफी होती क्या है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, आपकी फिर अगली फिल्म कौन सी रही? जैसे कि आपने बताया 10 फिल्में रही।
1: हाँ, बहुत सारी दूसरी छोटी छोटी फिल्में आई। मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मुझे 2009 में ही टीवी से इनविटेशन आया था कि मैं कोरियोग्राफर और जज बनूं, और मुझे ये जो इनविटेशन आया बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ जज नहीं करने वाला था लेकिन मैं कोरियोग्राफी करने वाला था, और मुझे मौका चाहिए था कि मैं ऐसे ऐसे डांसर्स के साथ काम करूं जो आप जीजा मेहनत करें और मुझसे कोई सवाल ना करे, और जो मैं क्रिएटिवली दिखाना चाहता हूं वो मौका मिले। क्योंकि जब फिल्मों में जब आप काम करते हो तो
0: लिमिटेशन
1: होती है, आर्टिस्ट कितना कर सकता है, एक दो कट कट कट करके शूट करना पड़ता है। तीसरी बात ये होती है कि गाना का अगर वो किरदार ऐसा है कि वो ज्यादा नहीं नाचता तो तुम जबरदस्ती को नहीं नचवा सकते, और या सिचुएशन में आप यही कर सकते हो तो आप बहुत सारी चीजों से बंध जाते हो। टेलीविजन शो में आपको आप डांस दिखाना है, सिर्फ डांस, लेकिन कहानियां भी दिखानी है क्योंकि कहानियों के माध्यम से अगर सिर्फ डांस हो तो मजा नहीं आएगा, लेकिन अगर उसमें एक नैरेटिव हो, इसमें एक कहानी हो, इसमें एक इमोशन छुपा हो तो वो बहुत लोगों को पसंद आने लगता है। तो जब मुझे ये मौका मिला मैं बहुत खुश हो गया। बहुत कोरियोग्राफर्स ने डांस इंडिया डांस को रिजेक्ट किया था, इनफैक्ट हम पहले चॉइस नहीं थे फॉर एज कोरियोग्राफर्स, बड़े बड़े लोगों को लिया गया था पहले, नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन हमसे बहुत सीनियर जो लोग थे उनको अप्रोच किया था लेकिन उन्होंने ना कर दिया क्योंकि उनको कोरियोग्राफ करना नहीं था, क्योंकि वो फिल्मों में कोरियोग्राफ अच्छा करते हैं लेकिन स्टेज को कोरियोग्राफ करना मतलब स्टूडेंट्स को एक झटके में विदाउट कट्स, वो एक अलग ही विधि है।
0: पेरेंट्स, मैं उस पूरी जो टीवी की दुनिया है उसमें हम जाएंगे
1: जरूर,
0: लेकिन उससे पहले कुछ गाने भी हम सुनते चलेंगे।
1: बाहों में चले आ।

0: यहाँ एक बहुत ही अहम सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ।
1: आपने बातचीत के दौरान कहा कि फिल्मों में जो कोरियोग्राफी होती है, जो डांस होता है, वो कट कट करके होता है।
2: करेक्ट।
1: मान लीजिए कि हम एक एक्टर को जानते हैं कि भाई इसको डांस आता नहीं, लेकिन वो बराबर 7 मिनट तक या 6 मिनट तक पर्दे पर डांस करता हुआ नजर आता है। आप थोड़ा सा समझाएंगे कि एक्चुअली जो फिल्मी कोरियोग्राफी होती है, फिल्मी डांस जब शूट होता है, तो उसका जो प्रोसीजर होता है, उसकी जो टेक्निक होती है, वो किस तरह से कट कट करके जाती है।
2: तो देख लीजिए, समझ लीजिए, आपने एक गाना सुन रहे हैं, गाने में बीट्स होती है, ओके, एक ताल होता है, 1 2 3 4, ओके, 1 2 3 4, वो बीट होता है, रिदम होता है, ताल होता है। जब हम लोग सेट करते हैं तो हम हर बीट को कोरियोग्राफ करना पड़ता है, चाहे वो एकदम शुरू में अगर सिर्फ फ्लूट बज रहा है तो वो भी हमारे लिए कोरियोग्राफी होनी चाहिए, क्या हो रहा है उस पर वो भी सेट करना पड़ता है। तो जब हम शूट करते हैं तो हम पिक्चराइज करते हैं कि ये 4 बीट पे हम ये वाला स्टेप करेंगे। अब ये है कि चाहे आर्टिस्ट अच्छा डांस करे या ना करे, लेकिन जो फिल्म का जो माध्यम है उसमें हम बहुत ग्लैमराइज करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि एक एंगल से 4 काउंट लिया, दूसरे एंगल से क्लोजअप मारा वही चीज, फिर तीसरे एंगल से मूविंग ट्रॉली शॉट लगा दिया। तो जनरली क्या होता है, आर्टिस्ट को सहूलियत मिल जाती है या कन्वीनियंस हो जाता है कि वो सिर्फ 4 स्टेप करें या 8 स्टेप करें और फिर उसके बाद वो रुक जाते हैं, क्योंकि उनको पता है उसके बाद कट लगने वाला है, क्योंकि एक दूसरा कट आएगा। मान लो कि आपने 16 काउंट का भी कोरियोग्राफी रख दिया, अनफॉर्चुनेटली मैं कहना चाहूंगा हमारे अभी जो प्रथा चली आ रही है 20 साल से कि हम बहुत ही हमारे पास ठहराव नहीं है, हमको सब कुछ ना, अच्छा 2 काउंट ऐसा आ गया, आर्टिस्ट ने पूरा शॉट दिया है डांस का, लेकिन नहीं नहीं ये नहीं जम रहा है, अभी थोड़ा कट करके ये लगाएंगे, अब कट करके वो एंगल लगाएंगे। लेकिन एक आर्टिस्ट अगर अच्छा आर्टिस्ट हो, जैसे माधुरी जी हो या ऋतिक हो या गोविंदा जी हो, उनको आपको कट करने की जरूरत नहीं है, वो इतना अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं कि वो एक एंगल से भी बनता है वो शॉट, जरूरी नहीं। लेकिन नहीं, आज की पीढ़ी में सब फट फट फट फट फट, तो एडिटर ज्यादा नाचता है, क्योंकि जबरदस्ती के फट फट कट, और फिर वो झामे जो आते हैं, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, लेकिन वो ना वो एकदम जूम इन करके झामे सक सक, फिर वो ब्लो ड्रायर, अननेसेसरी ब्लो ड्रायर, हर गाना सेम टू सेम लगने लगता है। अच्छा काम भी हो रहा है इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि एक मोनोटोनस चीजें होने लगती है। अगर वो एक चीज अच्छी भी है तो वही चीज को, अच्छी चीज को 30 गाने में आप देख सकते हैं कि वो सेम टू सेम वही फॉर्मेट वही चीज दिख रही है, इनोवेशन नहीं होता। अगर एक चीज सक्सेस हो जाती है हमारी इंडस्ट्री में तो फिर सभी लोग बोलते हैं अच्छा वैसा ही गाना करो और इसको भी डुप्लीकेट बनाओ, सिर्फ गाने के लव्स और आर्टिस्ट बदल रहे हैं लेकिन ट्रीटमेंट वही का वही है। सो वही ट्रीटमेंट है कि गाने को फट फट काटो, फिर यहाँ झामे करो, फिर क्लोजअप लो, फिर स्टेडी कैम लगाओ। लाइक आई फील मास्टर जी जैसे

0: मास्टर जी, और दूसरे हैं मास्टर जी जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, सरोज जी। उनका जो स्टाइल ऑफ ट्रीटमेंट था, लंबे लंबे कट्स, आई थिंक दैट वो सिनेमा वापस आना चाहिए। एंड कुछ कोरियोग्राफर्स कर रहे हैं कुछ हद तक, और आर्टिस्ट को भी पता चल गया है कि नाउ वी शुड ऑल्सो नॉट कीप सच शॉर्टकट्स। तो फिल्म की बात करें तो बहुत लोग जो अच्छे डांसर नहीं है उनको भी हम अच्छा दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज गलत है तो मैं सिर्फ आपका क्लोजअप ले लूंगा। मैं आपको बोलूंगा कि आप आंखों से खेल लीजिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज एकदम सही नहीं है, आप बहुत ही ऑड लग रही हैं। कुछ कुछ हैं एक्ट्रेस जिनको डांस नहीं आता और वो मॉडल्स हैं, लंबी हैं, उन्होंने कभी सीखा नहीं है लेकिन अभी इनको करना पड़ रहा है, तो वो जबरदस्ती करते हैं, वो सीख लेते हैं, लगता है वो बहुत स्ट्रेस में डांस कर रहे हैं, वो मजे नहीं ले रहे हैं। कुछ कुछ हैं, ज्यादा नहीं है। आजकल के सभी जो पीढ़ी के जो आर्टिस्ट हैं वो सब ना सीख के आते हैं, बट कुछ दो तीन ऐसे रहे हैं मेरे लाइफ में भी कि मुझे लगा कि उनका फुल बॉडी शॉट नहीं लूंगा, और अगर लूंगा तो वाइड लूंगा, भर भर के डांसर, ताकि वो जो गलतियां हैं छिप जाएं और उनको सिर्फ चार या पांच या आठ काउंट का डांस सिखा के बंद करा दूंगा, क्योंकि उनकी एनर्जी कम होने लगती है या वो याद करने लगता है कि नेक्स्ट क्या है और वो चेहरे पे दिखने लगता है। तो इसलिए हम लोग कट कट करके लेते हैं, लेकिन ऑडियंस को पता नहीं चलता कि ये कटा हुआ है, उनको लगता है कि ये लगातार निरंतर रूप से चला आ रहा है।
1: तो दोस्तों आप समझ गए ये जो कट कट की दुनिया है किस तरह से आपके सामने बट बट के आती है। बहरहाल ये एक चीज बहुत टेक्निकल थी। ध्यान से जो श्रोता इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे, जाहिर सी बात है जिनका डांस से बहुत लगाव होगा उन्होंने बड़े ध्यान से इसे सुना होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आपकी उस दुनिया में आते हैं जो आजकल आपको घेरे हुए, या ये कह लें कि जिस दुनिया में आजकल आप मदमस्त हैं अपने नशे में, टीवी की दुनिया। तो ये टीवी की दुनिया में अब जहां तक मुझे ध्यान आता है कि मैं भी काफी समय से देख रहा हूं, मुझे लगता है जब से शुरू हुई है ये दुनिया, रियलिटी शोज का जमाना जब से शुरू हुआ है, चाहे वो डांसिंग शोज हो या सिंगिंग शोज हो, गाने तो विविध भारती के ही बजते हैं।
0: करेक्ट, बहुत सारे गाने, एक जो अभी जिसके एटलीस्ट 10 मिलियन 20 मिलियन व्यूज हो चुके हैं वो गाना भी पुराना गाना है। जो मैंने नौरा के साथ किया वो ज्यादा हिट हुआ है। बहरहाल मतलब अभी जो हम बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट 20 मिलियन व्यूज हो चुके हैं।
1: कौन सा?
0: भीगी भीगी रातों में ऐसी बरसातों में कैसा लगता है, वाला गाना
1: अजनबी।
0: हाँ अजनबी, वही गाना लेकिन मॉडर्न स्टाइल में। आज की तारीख में डांस बहुत आगे बढ़ चुका है, तो लोगों को ये मजा आता है कि एक पुराना गाना और फिर मॉडर्न कोरियोग्राफी, उसका एक अलग ही मजा आता है।
2: भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में, ऐसी बरसातों में कैसा लगता है,
3: कैसा लगता है तुम्हें

0: आप बात कर रहे थे कुछ ऐसे डांसर्स की कि जिनकी बॉडी लैंग्वेज में डांस नहीं होता,
1: करेक्ट,
0: लेकिन फेस पे आंखों से खेल जाते हैं, कि आपकी नजर में कौन सी हीरोइन बहुत अच्छी डांसर
1: है? आज के जमाने में जो बहुत अच्छे हैं, मैं जरूर कहूंगा कि माधुरी जी बहुत अच्छा करती है। आजकल के तारीख में आज की जो नई पीढ़ी है सभी अच्छा डांस करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत मेहनत करते हैं, वो इंजॉय नहीं करते हैं। अगर आप देखेंगे माधुरी और गोविंदा जी ना, जब वो कोरियोग्राफी सीखते भी है ना, तो वो अपना एक एलिमेंट लेके आते हैं, उनको खुद को इतनी खुशी महसूस हो रही है और वो खुशी दिखती है। दूसरे लोगों में लगता है कि नहीं, हमें उसको एक परफेक्ट बनाना है, तो वो परफेक्शन के चक्कर में वो भूल जाते हैं कि उनको एंजॉय भी करना है।
0: परफेक्शन के चक्कर में वो रोबोट हो जाता है।
1: हाँ, तो मेरे बाल ऐसे हैं, अच्छा मेरी बॉडी लैंग्वेज ठीक है, अच्छा ये पोस्चर सही है, हाँ क्या मैं सुंदर लग रही हूँ, या मैं सुंदर लग रहा हूँ, या मेरा एटीट्यूड सही है, कि मेरे कपड़े अच्छे लग रहे हैं। ऑल्सो देर टू ट्रैप्ड इन दैट यू नो की परफेक्शन, तो कहीं ना कहीं दे डोंट रियलाइज की एक मेटाफिजिकल चीज होती है एनर्जी एंड वाइब। आकार ओके इज अ फिक्स्ड रूप, फिजिकल रूप है, लेकिन एक चीज है एनर्जी और वाइब, वो फिजिकल नहीं होती, वो मेटाफिजिकल होती है, वो लोग भाप लेते हैं। तो लोग जो आप देखते हैं, हाँ रूप तो देख लेते हैं, लेकिन इसकी जो वाइब है ना वो नहीं आ रही,
0: आत्मा नहीं पकड़।
1: सुंदर है लेकिन आत्मा नहीं, मतलब सब ठीक है, सब अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी वो वाइब नहीं आ रही, क्योंकि वो इंसान ने उसको अपना नहीं बनाया। एंड दैट इज वन थिंग दैट माधुरी जी एंड इवन गोविंदा जी, एंड दैट्स द वन थिंग दैट आई रियली एडमायर अबाउट देम।

0: मेरे प्यार कर तुदर चखना ओए मखना ऐ देत तुरा अब रखना ओए मखना
1: मेरे प्यार कर तुदर चखना ओए मखना ऐ देत तुरा अब रखना ओए मखना
0: हम तो दे दे घायल हैं तेरी चाहत में घायल हैं ऐसे हमको छोड़ के जा
2: तेरी

0: जवानी
1: ए नखरे ना कर दीवानी लिख मेरी प्रेम कहानी
0: तुम लो मेरे पास तो
2: तेरे प्यार का रस नहीं चखना ओए मकड़ा ओए मकड़ा
0: ए बचुरा अब पकड़ा ओए मकड़ा ओए मकड़ा।
3: मुझे ऋतिक शाहिद all very good, very good dancers. Ranveer also is very good dancer. और बहुत मेहनत भी करते हैं. तो it's nice to see the young dancers. It's just that 19-20 का फर्क है, लेकिन वो बहुत बड़ा फर्क हो जाता है.
4: सही कह रहे हैं.
3: हाँ. दूसरे एक ज़माने में कहते, अगर आप पूछना चाहते हैं कि कौन अच्छे डांसर नहीं हुआ करते थे, कैसे कोरियोग्राफर्स छुपाते थे, the biggest example of not being a good dancer is मीना कुमारी जी. She was not a great dancer. लेकिन उनकी फिल्मों में पाकिजा में उनको नाचना है, तो कई गानों में ना उनकी एक डबल हुआ करती थी. कल्पना अय्यर जी ने बहुत सारे टाइम उनका डबल यू नो डबल के रूप में घूंघट में अगर वो गाना देखा है वो कल्पना अय्यर जी ने किया है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. दैट इज वन. मीना कुमार जी का एक खास बात थी कि जो ये शरीर नहीं कर पाता था
4: फेस करता
3: ये कर पाता था. तो अगर आप शॉर्ट्स देखेंगे ना तो वो सिर्फ आंखों से खेल रही है और वो आंखों से बहुत कुछ कह जाती है. उनको उसकी सिर्फ एक इतने शोल्डर से और ये आंखों को देखने में और वो फीलिंग के साथ जो वो कर रही है ना उसी में पैसा है. उसको ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है. तो उन्होंने समझ लिया कि ये मेरी शॉर्ट कमिंग से. इवन विथ रेखा शी यूज़ टू वर्क वेरी हार्ड. रेखा इज़ नॉट अ ब्रिलियंट डांसर. उमा राव ने बहुत नचवाया है लेकिन इफ यू सी इन कंपैरिजन वैजयंती माला इज नेक्स्ट लेवल. हेमा मालिनी जी इज नेक्स्ट लेवल. ये साउथ की एक्ट्रेसेस है ना उनकी संस्कृति में ये है कि पहले डांस सीखो और पेरेंट्स जबरदस्ती लड़कियों को और लड़कियों को सिखाते थे. कमल हसन भी जी सबसे बढ़िया डांसर थे, उन्होंने भी भरतनाट्यम सीखा था. तो जो साउथ के जो हीरोज या हीरोइंस थे उनको ऑलरेडी वो सीख कर आया करते थे तो उनको समझ थी. सो द बेस्ट एग्जाम्पल इज आई वुड से इज वैजयंती माला जी, श्रीदेवी जी, हेमा मालिनी जी. वहीदा मेहमान इज नॉट फ्रॉम द साउथ बट शी वाज आई वुड से ये चार ऐसे कलाकार थे.
4: एक और नाम है पद्मिनी.
3: पद्मिनी वो उसकी बहन थी ना. वैजयंती माला की बहन थी ना वो पद्मिनी. सो दे वर बोथ क्लासिकली ट्रेन. साउथ की थी वो. सो दे वर वेरी क्लासिकली ट्रेन. और वो क्या करते थे ना सर, ये अभी शायद लोगों को पता नहीं लेकिन वो जब साउथ से आई थी वैजयंती माला, वो अपने कोरियोग्राफर को लेकर आई थी कि अगर मैं डांस करूंगी तो इनके साथ करूंगी. तो इट वॉज वेरी क्लियर कि मैं, मेरी पहचान डांस है तो मैं अपनी टीम को ही लेकर आऊंगी. Whereas others didn't know how to dance.
5: होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई

तो धड़कती है सारी अंगनाई, होंठों में हाय, होंठों में ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए वो ही बात तो

Caiu.

0: वही बात तो दुहाई है दुहाई। दोस्तों आज के बॉम्बे टॉकीज में आप सुन रहे थे जाने माने कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप। ये था इस फिल्मी गपशप का दूसरा भाग। तकनीकी सहयोग HR पाटले, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी।
1: डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, आनंद चरखी कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज, टॉकिंग है रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज, डुपर है अपना।

FM बैंड 101.8 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल। इस समय शाम के 5 बजे हैं। आइए सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी।

युवा साथी सुन रहे हैं युवाणी। मैं अर्चना आप ही के पसंदीदा कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे कुछ खास विषयों को लेकर। आज हम चर्चा करेंगे संबंधों का आधार है विश्वास, पीएम सौभाग्य योजना, स्वाध्याय से मिलती है सफलता और खेल कूद को बनाए दिनचर्या का हिस्सा। जी हाँ दोस्तों, हम अपनी चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं।

विश्वास होने पर व्यक्ति बिना किसी डर के अपनी कमियों को, भावनाओं को सामने वाले के साथ साझा कर पाता है। बिना विश्वास के यह संभव नहीं है। और मजबूत विश्वास होने पर जो बाहरी बातें या छोटी मोटी गलत फहमियां हैं वो रिश्ते को तोड़ नहीं पाती हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे की नीयत को जानते हैं कि ये सामने वाला इंसान मेरा बुरा नहीं सोचता है। तो ये जो छोटी छोटी बातें होती है वो गलत फहमियां नहीं बनती है। और अक्सर हम देखते हैं कि जो रिश्ते होते हैं उनके जो टूटने का जो कारण होता है वो अक्सर गलत फहमियां ही होती है, क्योंकि ये गलत फहमियां हैं वो क्यों है वो पैदा होती, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो विश्वास नाम की जो चीज है वो जब नहीं होती है तभी गलत फहमियां होती है। तो गलत फहमियां कहाँ नहीं होती है, जहां रिश्तों में है वो विश्वास होता है। और दोस्तों, प्रेम और आकर्षण जो समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन जो आपसी भरोसा होता है वो रिश्ते को उम्र भर के लिए बांधे रहता है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जो स्थायित्व है वो रिश्तों में खत्म होता जा रहा है। आजकल हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं कि अक्सर जो कई ऐसी शादियां हैं जो एक साल भी नहीं चल रही है, भाई बहन है उनमें प्यार नहीं है, या आजकल हम देखते हैं बच्चे हैं वो माता पिता के प्रति है वो अपना प्रेम नहीं रख पा रहे हैं। और आजकल हम इतना तक देखते हैं कि जो माता पिता है वो भी अपने बच्चों को, अब वो वाले माता पिता है वो कहीं कहीं हमें देखने को मिलते हैं कि वो माता पिता नहीं है जो बच्चों के लिए है वो अपना निस्वार्थ है वो प्रेम रखते हैं। तो ये जो समय आ गया है, हम किसी को दोष नहीं दे सकते हैं कि हम माता पिता को दोष दे रहे हैं या भाई बहन या जो पति पत्नी है जिनके बीच में जो प्रेम नहीं है, रिश्ते टूटने की कगार पर है, हम उनको दोष नहीं दे सकते। दोष दे सकते हैं तो इस समय को, और उसके साथ साथ जो इस समय में जो विश्वास नाम की जो एक हम एक कह सकते हैं कि एक धारणा है या विश्वास नाम की जो चीज़ है वो अब लोगों में नहीं रही है। इसी कारण जो ये सारे जो रिश्ते हैं, जिन रिश्तों की कभी है वो मिसाल दी जाती है थी, वो अब रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं विश्वास ना होने के कारण है वो टूटने की कगार पर है। तो दोस्तों, जो ये विश्वास है वो हम कैसे मजबूत कर सकते हैं रिश्तों में, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, तो हमें तो हमेशा सच है वो बोलना चाहिए। यानी कि अपना कोई भी रिश्ता हो, चाहे हम भाई बहन का रिश्ता हो, पति पत्नी का हो या माता पिता है, तो हमें जो सच बोलने की जो आदत है वो हमारे होनी बहुत जरूरी है। और अपनी बात को जब हम साफ तरीके से सामने वाले के सामने रखते हैं तो गलत फहमियां हैं वो नहीं होती है। कि अगर मुझे जो कहना है वो मैंने साफ और सीधे शब्दों में जब मैंने कह दिया तो जो गलत फहमी नाम की चीज है वो कहीं ना कहीं है वो खत्म हो जाती है। और जो प्रतिबद्धता, यानी कि जो वादा करे उसे निभाए, आपका व्यवहार भरोसेमंद होना चाहिए, चाहे वो आप किसी के भी साथ व्यवहार कर रहे हो। जब आप भरोसेमंद इंसान हो, जो आप अपनी बातों पर प्रतिबद्ध हो, तो आपके जो रिश्ते हैं, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, वो रिश्ता आपका टूटेगा नहीं। और सहानुभूति होना वो भी जरूरी है, क्योंकि सामने वाले के नजरिए को समझे, उसकी भावनाओं का सम्मान करिए। जब हमारे अंदर ये चीज आ जाएगी कि जरूरी नहीं है कि हर जो सामने वाले व्यक्ति का नजरिया खराब हो या वो अपनी उसकी भावनाओं में कुछ ऐसी चीजों, क्योंकि हम किसी की भावनाओं को जब हम ऐसी आदत लाएंगे पढ़ने की कि जो उसका सम्मान करेंगे, उसकी बात का सम्मान करेंगे, तो कहीं ना कहीं है वो एक आपसी समझ है वो हमारे अंदर आएगी। और वही आपसी समझ है वो हमारे जो संबंध है उनमें विश्वास और मधुरता ला सकती है। और यदि कभी ऐसी कोई गलती हो गई है तो उसे छिपाने की बजाय अपनी भूल को स्वीकार करके हमें है उनके साथ शेयर करना चाहिए, चाहे हमारा कोई भी रिश्ता हो, कि मेरे से ये भूल हो गई है, किस कारण हो गई है, या गलती से हो गई है, या आगे भविष्य में हम नहीं दोहराएंगे। तो ऐसे जो शब्द है वो भी शब्द कहीं ना कहीं है वो हमारे रिश्ते को बचाए रखते हैं। तो जैसे कि एक इमारत बिना मजबूत नींव के ढह जाती है, वैसे ही बिना विश्वास के रिश्ते में केवल संदेह और दूरी ही रह जाती है। इसलिए इसे बनाने में समय और प्रयास दोनों की आवश्यकता होती है। और समय जो कि बहुत ही है वो जरूरी है, क्योंकि जब हम किसी रिश्ते को समय नहीं देंगे तो वो रिश्ता, चाहे हमारे प्रयास है, वो प्रयास भी असफल हो सकते हैं। तो विश्वास को किसी भी रिश्ते की आत्मा कहा जाता है। इसे और गहराई से समझने के लिए हम इसके जो जो विभिन्न कारण है कि विश्वास क्यों है वो
टूट

होता है और हम उसको कैसे पुनः है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो विश्वास है उसके कुछ पिल्लर्स है, यानी कि कुछ स्तंभ है जिसमें हमने बात की थी, ईमानदारी, निरंतरता, सक्षमता और परोपकारिता। मतलब यह जो शब्द है, मैंने आपके साथ चार शब्द है वो शेयर की है, ईमानदारी, निरंतरता, सक्षमता और परोपकारिता। तो ईमानदारी अगर हम बात करते हैं तो विश्वास की पहली सीढ़ी होती है। बातों को ना छिपाना और सच को सहजता से स्वीकार करना बहुत ही जरूरी है। और आपके शब्दों और आपके कार्यों में समानता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप बार बार अपने वादे पूरे करते हैं तो भरोसा आपका गहरा होता जाता है और वही एक कह सकते हैं कि एक विश्वास की नींव हो जाती है। और सामने वाले को यह विश्वास होना कि आप संकट के समय जिम्मेदारी संभालने के योग्य हैं। मतलब जब सामने वाले के साथ कुछ ऐसी घटना हो रही है या उसके साथ कुछ ऐसा जो उसने कभी एक्सेप्ट नहीं किया हो, ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसको विश्वास होना चाहिए कि नहीं, ये सामने वाला व्यक्ति है, वो मेरा ये सब संभाल लेगा। तो ये जो विश्वास है, ये विश्वास हासिल करना बहुत ही बड़ी बात है। इसको हासिल करने के लिए अभी हमने बात की, समय और प्रयास दोनों ही बहुत जरूरी है। और यह निश्चित होना कि सामने वाला व्यक्ति कभी जानबूझकर आपका बुरा नहीं चाहेगा या आपका फायदा नहीं उठाएगा। हो सकता है कि कभी कोई ऐसी परिस्थिति हो गई हो जो उसे ऐसा करना पड़ रहा है। तो जब आप ये चीजें समझने लग जाएंगे तो आप उस व्यक्ति को समझने लग जाएंगे। और जब आपने उस सामने वाले व्यक्ति को समझना इस प्रकार से शुरू किया तो वो है वो आपसे कभी भी दूर नहीं जाएगा, यानी कि आपका विश्वास बना रहेगा। और जब दो लोगों के बीच गहरा विश्वास होता है तो रिश्ता एक सुरक्षित जो क्षेत्र है वो बन जाता है, यानी कि एक सेफ जोन जो हर किसी को है वो लाइफ में चाहिए होता है कि मेरा सेफ जोन है या आपका सेफ जोन है। तो जब आपका या मेरा सेफ जोन जब बन जाता है तो उस सेफ जोन में हमारी जो लाइफ है वो एक अच्छी तरीके से है वो व्यतीत होती है। और उस सेफ जोन में हम खुद है वो सेफ महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं अपने जीवन में। तो अपने जीवन में सुरक्षित महसूस करने के लिए हमें कुछ उस सुरक्षा कवच को बनाए रखने के लिए कुछ ऐसे प्रयास है वो भी करने होते हैं। जैसे निर्णय का कभी डर नहीं होना चाहिए, यानी कि आप बिना इस डर के अपनी कमजोरियां साझा कर सकते हैं कि भविष्य में उनका इस्तेमाल आपके खिलाफ किया जाएगा, माफ कीजिएगा, किया जाएगा। तो ऐसे जो कई बार ऐसी होती है कि हर व्यक्ति को कमजोरी होती है, कोई गलती होती है, तो उसको हमें साझा करना बहुत जरूरी है। नहीं तो वो जो एक डर रहता है वो डर कहीं ना कहीं रिश्तों में एक गैप बनकर रहता है, चाहे वो छोटा सा ही बने लेकिन बना रहता है। इसलिए खुलकर अपनी बात कह दे, फिर उसका जो परिणाम है वो जो होगा वो देखा जाएगा। तो जो डर है वो आपका खत्म होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जो आजकल हो रहा है कम्युनिकेशन गैप, जो रिश्तों के टूटने की जो एक कारण है उसमें हम मुख्य जो कारण है ये भी देख सकते हैं कि लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ रहा है। तो विश्वास होने पर लोग खुलकर बात करते हैं जिससे कि मन में कोई कड़वाहट या गांठ नहीं हो। यानी कि जब हम बात करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। मतलब हम ये धारणा नहीं बना सकते कि ये व्यक्ति सही नहीं है या इस व्यक्ति ने ये गलती की है या इसका स्वभाव ऐसा होगा। ये जो बातें होती है ये जो हमारे रिश्तों में है वो हमें आगे बढ़ने नहीं देती है। तो आगे बढ़ने के लिए हमें कम्युनिकेशन गैप है वो खत्म करना बहुत जरूरी है। कई बार हमें लगता है कि आदमी बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन जब हम उससे बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, जैसा मैंने सोचा था वैसा ये इंसान नहीं है। तो ये हमें कब पता चला? जब हमने उससे कम्युनिकेशन किया, हमने उससे बात की। इसलिए धारणाओं पे ना जाके हमें अपने जो प्रैक्टिकल जो कम्युनिकेशन है, अपनी बातचीत के आधार पर, अपने व्यवहार के आधार पर है वो व्यक्ति को पहचानना चाहिए। और भरोसेमंद जो रिश्ते होते हैं उसमें स्पेस है वो मिलता है, यानी कि चाहे आपका पार्टनर हो चाहे आपका मित्र हो, एक दूसरे पर अगर हम नजर रखते हैं, जासूसी करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक कह सकते हैं कि जो रिश्तों में जो आजादी होती है वो आजादी जब नहीं मिलती है तभी है वो जो रिश्ते हैं वो टूटते हैं। तो ये सब कब आते हैं? जब हम अपनी रिश्तों में विश्वास रखते हैं।
तो विश्वास टूटने के भी कई कारण हैं, जैसे झूठ बोलना, छोटी छोटी बातें हैं उनको गोपनीय रखना, और कहीं ना कहीं है वो धोखा खड़ी करना, यानी कि विश्वास भावनाओं के साथ।

विश्वासघात करना, पीठ पीछे बुराई करना, ऐसी जो छोटी छोटी बातें हैं, ये है छोटी लेकिन कहीं ना कहीं रिश्तों में है वो एक खटास सी आ जाती है। तो ऐसी जो झूठ बोलना, गोपनीयता रखना, धोखा देना या पीठ पीछे बुराई करना, ऐसी जब हम व्यवहार नहीं करते हैं तो हमारे रिश्ते हैं वो लंबे समय तक बने रहते हैं। तो और भी ऐसे जरूरी नहीं है कि जब हमारा रिश्ता एक बार है वो खटास पड़ गई है तो सही नहीं हो सकती, वो भी सही हो सकता है। मतलब विश्वास को पुनः भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन बार बार विश्वासघात से हम विश्वास को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर किसी हमारे रिश्तेदार है या किसी अपने से एक बार गलती हो गई तो हम उसे माफ कर कर अपना सकते हैं, और उसको अपनाना भी चाहिए। क्योंकि जब हम किसी के करीब है, चाहे वो हमारा भाई हो, बहन हो, माता पिता हो या कोई भी मित्र हो, उनको हम जब माफ नहीं करेंगे तो हमारा जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं, जो कहते हैं ना कि जो समय दिया है हमने, अभी हमने बात की समय है या प्रयास है, वो समय और प्रयास है वो भी व्यर्थ चले जाएंगे। इसलिए एक मौका है वो हमें देना चाहिए। तो टूटा हुआ विश्वास है वो वापस कैसे जगाए, जरूरी नहीं कि सामने वाले से गलती, कभी हमसे भी गलती हो गई होगी, तो उस गलती को हम कैसे है वो उस गलती की छाप को मिटा सकते हैं। तो यदि किसी भी कारण से विश्वास टूट गया है तो उसे सुधारना कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। कठिन तो है ही, क्योंकि ये एक ऐसी लंबी प्रक्रिया है जिससे हमें गुजरना पड़ता ही है, क्योंकि हमने विश्वास को तोड़ा है। तो गलती करने वालों को बिना किसी बहानेबाजी से अपनी भूल को स्वीकार करना चाहिए, चाहे मुझसे गलती हुई है, आपसे हुई है। तो हमें अपनी गलती को स्वीकारना, जब हमने इसको स्वीकार लिया तो आधी जो कहते हैं ना कि बात वही हो गई। दूसरा, आपको सामने वाले को चोट से उबरने और दोबारा भरोसा करने में समय लगेगा, इसलिए कभी भी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि विश्वास तो बनने में बहुत समय लगता है और टूटने में 1 मिनट लगता है। इसलिए जब आपने इतना समय लगाया बनने में, तो अब वो वापस है वो समय लेगा सामने वाला व्यक्ति विश्वास को बनाने में। इसलिए सामने वाले को उस चोट से उबरने के लिए दोबारा भरोसा करने में उसको समय दे, और इस समय के दौरान आपको धैर्य रखना बहुत जरूरी है, और कुछ समय के लिए आपको पूरी तरह से पारदर्शी होना पड़ेगा। जैसे अपनी लोकेशन हो, फोन हो, आपके फैसले हो, सब है वो आपको खोया हुआ भरोसा है वो वापस ला सकता है। क्योंकि जब आप पूरी पारदर्शिता के साथ, यानी कि एक ट्रांसपेरेंसी के साथ रहेंगे सामने वाले व्यक्ति के साथ, तभी वो पुनः हिम्मत करेगा कि वो आप पर विश्वास करे। तो श्रोताओं, अगर हम विस्तार से इतनी बात की संक्षेप में कहें तो विश्वास एक कांच के बर्तन की तरह, यदि इसमें दरार आ जाए तो जोड़ तो सकते हैं लेकिन निशान तो है वो रह जाते हैं। इसलिए रिश्तों में इस अमूल्य धरोहर को हमेशा संभाल के रखें, और अपने रिश्तों को समय दें, और निरंतर प्रयास करें कि आपका विश्वास बना रहे। और विश्वास बना रहेगा तो हम सबके, चाहे कोई भी रिश्ते हो, वो मधुर बने रहेंगे।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म बधाई हो बधाई से अलका याग्निक और शान की आवाज में ये प्यारा सा गीत। अब हम चर्चा करेंगे पीएम सौभाग्य योजना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसे सौभाग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है, ये भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों और शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन प्रदान करके पूर्ण घरेलू विद्युतीकरण सुनिश्चित करना है। और इस महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 25 सितंबर 2017 को की गई थी और यह योजना विद्युत मंत्रालय के तहत संचालित की जाती है। और इस योजना के तहत सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के आंकड़ों के आधार पर पहचान किए गरीब परिवारों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन दिया जाता है। जो परिवार मुफ्त बिजली कनेक्शन के पात्र नहीं है, उन्हें 500 का शुल्क देना होता है, जिसे बिजली बिल के साथ 10 आसान मासिक किस्तों में वसूला जाता है। जिन दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में ग्रिड पावर पहुंचना संभव नहीं है, वहां घरों के लिए 5 LED लाइट, 1 DC पंखा और 1 DC पावर प्लग के साथ सोलर पावर पैक 200 से 300 WP प्रदान किया जाता है। और योजना के तहत आवेदनों के त्वरित निष्पादन के लिए एक मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल का उपयोग करके गांवों में शिविर लगाकर मौके पर पंजीकरण भी किया जाता है, ताकि हर जो गरीब परिवार है उसको इस योजना का लाभ मिल सके। और देश के अंतिम छोर तक बिना बिजली वाले हर घर को रोशन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और बिजली आने से ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की शिक्षा, उनकी स्वास्थ्य सेवाओं और सुरक्षा में सुधार करना भी इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। छोटे व्यवसायों, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देकर रोजगार के लिए नए अवसर पैदा करना, यानी कि आर्थिक विकास भी इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और साथ ही साथ सबसे बड़ा जो आजकल का जो मुद्दा है, जो इसे वैश्विक मुद्दा भी कह सकते हैं, पर्यावरण संरक्षण का, तो केरोसिन यानी मिट्टी के तेल पर निर्भरता कम करके इंडोर वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। तो योजना की प्रगति और अपने क्षेत्र में बिजली कनेक्शन की स्थिति जांचने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट है उस पर भी जा सकते हैं। और आपको अगर आवेदन प्रक्रिया करनी है तो आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की है वो आप जानकारी लेकर आप पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है उसके जो आधिकारिक जो कह सकते हैं पोर्टल है या वेबसाइट है उस पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है।

0: और हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म अनवर से शिल्पा राव और क्षितिज तरे की आवाज में ये प्यारा सा गीत। अब हम चर्चा करेंगे स्वाध्याय से मिलती है सफलता। जी हाँ दोस्तों, स्वाध्याय यानी कि स्वयं का अध्ययन, जो कि सफलता की असली कुंजी होती है। इसका अर्थ है केवल अच्छी किताबें पढ़ना ही नहीं, बल्कि अपने विचारों और अपनी कमियों को गहराई से समझना भी है। यह हमें जीवन में सही दिशा और आत्मविश्वास देता है। जी हाँ दोस्तों, खुद को पहचानना, आप जान पाते हैं कि आप किस काम में अच्छे हैं, कहाँ आपको सुधार की जरूरत है, ये आपको स्वाध्याय से ही जानकारी मिलती है। साथ साथ नई बातें ज्ञान सीखने से आप अपनी मुश्किलों को आसानी से हल कर लेते हैं, और जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं या मुश्किलों का जो हल है वो आसानी से स्वयं करते हैं, तो आपका डर कम हो जाता है और आपका भरोसा है उसका लेवल बढ़ जाता है। और यह एक सच्चे दोस्त की तरह होता है जो

हमेशा आपका साथ देता है और आपको सही राह दिखाता है कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो श्रोताओं, स्वाध्याय करने का जो सही तरीका है वो क्या होता है? तो निमित्तता, ईमानदारी और सकारात्मक सोच, ये तीनों जो बातें हैं वो आपके साथ हमेशा होनी चाहिए। यानी कि हर दिन पढ़ने या सीखने के लिए थोड़ा सा समय जरूर निकालें, चाहे आप 10 मिनट कोई भी किताब पढ़ रहे हो। पढ़ना बहुत जरूरी है और अपने अंदर की कमियों को बिना डर से स्वीकार करें, यानी कि ईमानदारी रखें खुद के प्रति। जब आप खुद के प्रति ईमानदारी रखेंगे तो आपका जो कह सकते हैं कि जो व्यक्तित्व है वो निखर कर सामने आएगा। और अच्छी किताबें और विचार पढ़कर अपने दिमाग को मजबूत बनाएं। अपने दिमाग को मजबूत बनाने का अर्थ है कि सकारात्मक सोच जब आपके अंदर आ जाएगी तो आप चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो नकारात्मक सोच रहा है या उसका रवैया नकारात्मक है या आपके आसपास नकारात्मकता हो, लेकिन आपके अंदर जो सकारात्मक सोच का जो साथ है वो आप हमेशा बनाए रखिए, तो आप है वो हमेशा आगे बढ़ेंगे। और आप पढ़ाई और निजी जीवन दोनों को हमें है वो आज के समय में बेहतर बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से ही हमारा जीवन अच्छा हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। और सिर्फ आप अपना व्यक्तित्व ही निखार रहे हो उससे आपका जीवन अच्छा हो ये भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आज के समय में पढ़ाई और आपका व्यक्तित्व दोनों ही है वो एक साथ जब निखरते हैं तभी आगे जाके आपको सफलता मिलती है। और आज के समय में ये जो व्यक्तित्व निखार का है वो भी एक टास्क है, और आपका जो कह सकते हैं कि आपका भविष्य उज्ज्वल करना, यानी कि जो भी आपने लक्ष्य साधा है, सब में कॉम्पिटिशन का समय, तो इसीलिए आपको दोनों को साथ में लेकर एक तालमेल बनाकर है वो आगे बढ़ना होगा। और स्वाध्याय एक ऐसा तरीका है जिससे आप, अगर आप अपने कह सकते हैं कि स्कूली जो जीवन होता है उसमें ही, जो विद्यालय जीवन में आपको जब ये दोनों तालमेल बनाना वो समझ में आ जाता है, तो धीरे धीरे जब आप इन दोनों को साथ में लेकर आगे बढ़ते हैं तो आप एक सही एज में सफल हो जाते हैं। तो सही एज में भी सफल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप एक संघर्ष के जीवन में है वो चले जाते हैं तो आपका जो एक समय होता है, एक कह सकते हैं कि जीवन का क्वालिटी टाइम होता है, वो निकल जाता है। उसके बाद जो आपको सफलता मिलती है उसका भी फिर इतना वो वैल्यू नहीं रहती है। इसलिए अपने जीवन में जब सही समय पर हम हर जो फैसले लेते हैं, सही तरीके से बढ़ते हैं, और विशेषकर जो हमारी बाल्यावस्था होती है, स्कूली जो जीवन होता है, वहीं से जब हमारा एक तालमेल लेकर हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। तो स्वाध्याय एक ऐसा तरीका है जिससे आप है अपना व्यक्तित्व है उसको निखार सकते हैं, अपने आपको अपनी अच्छाइयां पता चलती है, आप में क्या कमी है वो आपको पता चलती है, और इस तरीके से आप धीरे धीरे खुद को इस तरीके से निखार लेते हैं कि आप हर जगह है वो सबको प्रिय लगने जाते हैं, चाहे आप अपने आसपास हो या आप कह सकते हो कि अपने कार्यस्थल पर हो, कहीं पर भी हो, वो आप एक सही मार्गदर्शन के साथ है वो आपका जो सच्चा साथी बनकर रहता है वो होता है स्वाध्याय।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म बॉर्डर से सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में ये प्यारा संगीत। अब हम चर्चा करेंगे खेल कूद को बनाए दिनचर्या का हिस्सा। जी हाँ दोस्तों, खेल कूद है वो जब आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा तो आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है वो बेहतर हो सकता है, क्योंकि इससे आपका वजन नियंत्रित रहता है और हृदय है वो भी स्वस्थ बना रहता है। खेल आपको तनाव से दूर रखते हैं और आपको ऊर्जावान बनाए रखते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसे अपनी आदत कैसे बनाएं। तो श्रोताओं, खेलकूद को दिनचर्या में शामिल करने के लिए एक दिन में है वो छोटा लक्ष्य बनाएं, यानी कि दिन में केवल 30 मिनट खेलने से शुरुआत करें। आप धीरे धीरे समय बढ़ा सकते हैं और अपनी रुचि के अनुसार खेले। ऐसा नहीं कि आप कोई भी खेल है वो जबरदस्ती खेल रहे हैं। जब आप अपनी पसंद का खेल चुनेंगे, जैसे बैडमिंटन, फुटबॉल, साइकिलिंग, जो भी आपको पसंद है वो जब आप करेंगे तो इससे आप बोर नहीं होंगे और आप और बेहतर तरीके से खेल पाएंगे। क्योंकि जब कोई चीज थोपी जाती है और कोई चीज आप पसंद की करते हो तो उसमें ज्यादा फर्क रहता है। तो खेल के लिए एक निश्चित समय तय करें, जैसे सुबह टहलना, शाम को पार्क में खेलना। तो आप कोई भी समय एक फिक्स कर सकते हैं कि इस समय ये मेरे खेलने का समय है। जब आप ऐसा फिक्स करेंगे तो वो धीरे धीरे वो आपके दिन में आ जाएगा। और इसके जो फायदे हैं वो हम सभी को पता है कि खेल कूद के क्या क्या फायदे होते हैं। तो खेलने से आपकी मजबूत है वो मांसपेशियां हो जाती है, यानी कि खेल कूद से शरीर की जो हड्डियां हैं और मांसपेशियां हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। और जब बच्चा जो बाल्यावस्था से धीरे धीरे खेल में जाता है या धीरे धीरे जब वो खेल खेलने लगता है तो इस आदत से उसका जो शरीर है वो मजबूत हो जाता है और मांसपेशियां हैं वो भी मजबूत हो जाती है। और खेलने से याददाश्त है वो भी बढ़ती है, ध्यान केंद्रित होता है और एक कह सकते हैं कि अभी हमने बात की कॉन्सेंट्रेशन की, वो बहुत ज्यादा है वो आ जाता है और इससे आपका दिमाग है वो तेज हो जाता है। और साथ ही साथ यह एक बेहतरीन प्राकृतिक दवा है जो आपको मानसिक शांति देती है और खुश महसूस कराती है। यानी कि खेल सिर्फ हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि हमारे जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको भी बेहतर बनाते हैं। तो अपनी जो स्वस्थ जीवन शैली को हम अपनाकर अपने मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को ठीक कर सकते हैं। तो खेलों का जो महत्व है वो हम सभी को पता है। तो हम खुद भी, यानी कि खेल की भी कोई उम्र नहीं होती है कि कोई बच्चे हैं सिर्फ वही खेल सकते हैं। हम भी अपने है वो दिन में कोई आधा घंटा है वो निकाल कर कोई भी बैडमिंटन है या ऐसा जो हमसे हो रहा है एज के अकॉर्डिंग वो गेम खेल सकते हैं। इससे धीरे धीरे है वो हमारी क्षमताएं बढ़ेगी, हम बैडमिंटन से आकर कोई और खेल फुटबॉल है वो भी खेल सकते हैं। तो खेलने की भी कोई उम्र नहीं होती है क्योंकि खेल हम सभी खेल सकते हैं, चाहे वो युवा हो, बाल्यावस्था में हो या प्रौढ़ावस्था के लोग हैं, उनको तो खेलना भी चाहिए। क्योंकि उस एज में आकर अगर हमें अपने जो शरीर में ऊर्जा बनाए रखनी है या हमें एक सकारात्मक तरीके से जीना है तो हमें अपने जीवन में खेल को अपनाना बहुत ही जरूरी है। तो खेल एक ऐसा तरीका है जो कि हमें है वो एक बेहतरीन स्वास्थ्य, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य की बात करूं या शारीरिक स्वास्थ्य की बात करूं, दोनों ही हमें प्रदान करता है। और जो हमारे शारीरिक क्षमता है और सहन शक्ति यानी कि स्टैमिना को जो बढ़ाता है वो होते हैं खेल। क्योंकि जब हम खेलते हैं तो हमारे पूरे शरीर में है वो कह सकते हैं कि कसरत सी होती है, तो फेफड़ों को मजबूती मिलती है, इम्यूनिटी बूस्ट है वो भी खेल की तरह ही है और बेहतर नींद है वो भी हमें आती है। क्योंकि लगातार खेलने से शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती है, आप कम बीमार पड़ते हैं और शारीरिक मेहनत के कारण रात को गहरी और अच्छी नींद भी आती है। क्योंकि जब आप खेलते हैं तो आपका शरीर थकता है और थकने से आपको एक गहरी जो डीप स्लीप जो हम जिसे कहते हैं वो आती है। और डीप स्लीप जब आती है तो आपका जो शरीर, आपका जो कह सकते हैं मस्तिष्क है वो दोनों ही है वो रिलैक्स हो जाता है, यानी कि उसको जो आराम वास्तव में मिलना चाहिए वो मिल जाता है। तो श्रोताओं, जो खेल है वो खेल के अनगिनत फायदे हैं। तो इन अनगिनत फायदों को प्राप्त करने के लिए हमें खेल कूद को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना बहुत ही जरूरी है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म धड़कन से अलका याग्निक, उदित नारायण और कुमार सानू की आवाज में ये प्यारा सा गीत। तो श्रोताओं, आज हमने चर्चा की संबंधों का आधार विश्वास, पीएम सौभाग्य योजना और स्वाध्याय से मिलती है सफलता, और साथ ही साथ खेल कूद को बनाए अपनी दिनचर्या का हिस्सा। तो आज हम इन जो विषय में बात की है उससे सीख लेकर हम अपने जीवन में है वो खेल कूद है उसको अपना सकते हैं और अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। तो श्रोताओं, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का, तो अपनी दोस्त अर्चना को दीजिए इजाजत।

अभी श्रोता सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। इस समय शाम के 6 बजे हैं। आइए सुनते हैं इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

सकते हैं शाम 7 बजे। सात बजकर 30 मिनट का समय रहेगा राजस्थानी में लोक संगीत का।

रात्रि 8 बजे श्रोता सुन सकते हैं पद्मश्री से सम्मानित पुरातत्व वेत्ता डॉक्टर नारायण व्यास से फोन आउट बातचीत। भेंट वार्ता है नेहा व्यास।

रात्रि 8:20 से 8:30 पर तक आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत, और फिल्म संगीत कार्यक्रम का एक बार फिर से लुत्फ उठा सकते हैं रात्रि 9:15 पर। सुगम संगीत का समय रहेगा रात्रि 8:30। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुन सकते हैं 8:45 पर समाचार संध्या। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे न्यूज एट 9 रात्रि 9:00। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संस्कृति भारती, और दिल्ली केंद्र से ही एक बार आप सुन सकते हैं संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, समय रहेगा रात्रि 10:00। रात्रि 11:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: श्रोताओं, ये थी हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। फिलहाल वक्त हो चला है हमारे दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस गान का, तो आइए सुनते हैं आकाशवाणी के गोल्डन सिटी चैनल से रामचरित मानस गान।
1: नाइन जीरो

राजा जनक के धनुष यज्ञ में श्री राम के हाथों शिवजी का कठोर धनुष भंग हो चुका है। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि गूंज रही है। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग श्री राम की कीर्ति का गान कर रहे हैं। झांझ, मृदंग, शंख, शहनाई आदि

0: मंगलवादियों का संगीत ढोल और नगाड़ों की ताल पर चारों ओर व्याप्त है। राजा जनक की चिंता दूर हो चुकी है। सखियों समेत रानी अत्यंत हर्षित हैं। दृश्य कुछ ऐसा मानो सूखते धान के खेत को पानी मिल गया है, किंतु धनुष टूट जाने के फलस्वरूप प्रतिस्पर्धा में भाग लेने आए राजे महाराजे इस प्रकार श्रीहीन हो गए हैं जैसे सूर्य के उदय होते ही दीपक की शोभा समाप्त हो जाती है। उधर जनक नंदिनी सीता रूपी चातकी को मानो स्वाति नक्षत्र का वर्षा जल मिल गया है। कुल पुरोहित शतानंद जी की आज्ञा पाकर हाथों में जयमाल लिए सखियों के मंगलाचार गायन के साथ सीता बाल हंसनी की चाल से श्री राम का वरण करने चली। तन में संकोच है किंतु मन में है परम उत्साह। उन्होंने दोनों हाथों से जयमाल उठाई किंतु प्रेम विवश होने से वो पहनाई नहीं जाती। हाथों की शोभा ऐसी मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को संकोच रूपी भय के साथ जयमाल पहनाने को उत्सुक हूं।
1: बंदी मागध सूत गण विरुद्ध बदहि मति वीर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस गान। आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम, भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

अभी श्रोता सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी जैसलमेर के गोल्डन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। हमारे प्रसारण FM बैंड 101.8 MHz पर उपलब्ध हैं। इस समय शाम के 6:30 हुए हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे पहले हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद जिले की चिट्ठी और फिर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिसका प्रसारण आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में पहली बार 9 महिला कैडेट शामिल। महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ अगले आर्मी चीफ नियुक्त। 30 जून को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे। भजन लाल शर्मा ने कहा, केंद्र की एनडीए सरकार की नियमों में पारदर्शिता और नीतियों में दूरदर्शिता से देश प्रगति के पथ पर अग्रसर। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और प्री मानसून गतिविधियों के कारण कई स्थानों पर आंधी बारिश का सिलसिला। तापमान में 8 डिग्री तक की गिरावट। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेटों को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इसमें महिला कैडेटों ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड का निरीक्षण किया। भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को नया आर्मी चीफ नियुक्त किया गया है। वे 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ वर्तमान में 49वें उप सेना प्रमुख के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे खड़कवासला नेशनल डिफेंस अकादमी के पूर्व छात्र हैं। दिसंबर 1986 में आर्म्ड कॉर्प्स में कमीशन हुए धीरज सेठ को भारतीय सेना में करीब 4 दशकों का अनुभव है। इस दौरान उन्होंने कई कमान संभाली और कई महत्वपूर्ण ऑपरेशंस का हिस्सा रहे। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ यूनाइटेड नेशंस के साथ भी काम कर चुके हैं। असम के जोरहाट में आज सुबह भारतीय वायुसेना का एक विमान AN-32 दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। वायुसेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हादसे में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर खेमा राम कुमावत और अग्निवीर दानिश आलम का निधन हो गया। वायुसेना ने बताया कि दुर्घटनास्थल पर आवश्यक कार्रवाई और प्रारंभिक जाँच जारी है। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में

0: में कई महत्वपूर्ण पहलों पर सहमति बनी है। भारत की अध्यक्षता में हुए इस सम्मेलन में बीजों की प्रणालियों को लेकर ग्लोबल फोरम और फार्मर्स साइड्स इन सीड सिस्टम बनाने पर मोहर लगी है। साथ ही ब्रिक्स सदस्यों ने सतत कृषि नेटवर्क और कृषि पारिस्थितिकी के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनाने का भी निर्णय लिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश के 87% किसान छोटे और सीमांत हैं, इन्हें मजबूत करके ही खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।
1: भारत खाद्य सुरक्षा, कृषि व्यापार, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल कृषि समाधानों तथा कृषि क्षेत्र को अधिक सुदृढ़, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार बनाने से जुड़े विषयों पर सहयोग को और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को केंद्र में रखकर खाद्य सुरक्षा, पोषण, आजीविका, कृषि व्यापार, नवाचार, निवेश तथा जलवायु सहिष्णु एवं सतत कृषि विकास को आगे बढ़ाने की हमारी साझा प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय परिवर्तन को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने इस संबंध में गठित आयोग को सीमावर्ती जिलों में आबादी में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। गृह मंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा। केंद्र सरकार ने पिछले महीने घुसपैठ और दूसरे कारणों से हो रहे आबादी बदलावों से निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना देश भर में बालिका सशक्तिकरण का बड़ा अभियान बनी है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार पिछले 10 वर्षों में जन्म के साथ लिंगानुपात 918 से बढ़कर 929 हो गया है। वहीं स्कूलों में माध्यमिक स्तर पर छात्राओं का नामांकन भी लगभग 75% से बढ़कर 80% के करीब हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में आयोजित मीडिया संवाद में केंद्र की एनडीए सरकार की 12 साल की उपलब्धियां गिनाई। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश में हर क्षेत्र में तरक्की हुई है। श्री मोदी ने राष्ट्र प्रथम की सोच के साथ, नियमों में पारदर्शिता और नीतियों में दूरदर्शिता के साथ देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया है।
2: आत्मनिर्भर के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। इसी प्रेरणा से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति प्रदान की गई। आज भारत रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, फार्मा जैसे अनेक क्षेत्रों में विनिर्माण और निर्यात के नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है। पिछले 12 वर्षों में जितनी तेजी से भारत का बुनियादी ढांचा सुदृढ़ हुआ है, वो आप अपने आप में एक मिसाल है।
0: श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान में भी प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। पहले यहाँ प्रति व्यक्ति आय 69,000 रुपए सालाना थी, आज बढ़कर 2,00,000 रुपए से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार राजस्थान के विकास में हर संभव सहयोग दे रही है। पिछले 2.5 वर्षों में 12,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा चुका है। वहीं 26 जिलों में किसानों को दिन में बिजली दी जा रही है। जिला प्रभारी मंत्रियों ने भी प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। साथ ही प्रदर्शनियों के माध्यम से भी केंद्र और राज्य सरकार की जनहित योजनाओं को बताया जा रहा है। प्रदेश में कल से शुरू हुए ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों के जरिए लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। इसके तहत लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निपटारा कर उन्हें विभिन्न जनहित योजनाओं से भी जोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में जैसलमेर के पशुपालक गणपत कुमार ने बताया कि उन्हें ग्रामीण सेवा शिविर में मंगला पशु बीमा योजना का फायदा मिला है।
3: मैंने मंगला पशु बीमा योजना के तहत 2 गायों का बीमा करवाया था, जिसमें एक गाय की डेथ होने के बाद 18,000 रूपए क्लेम मंगला पशु बीमा योजना के तहत मिल चुका है। और ग्रामीण सेवा क्षेत्र जैसे अमर सागर से हूँ मैं, और मैं अभी नरेंद्र मोदी जी और सीएम भजनलाल जी का तहे दिल से स्वागत, धन्यवाद।
0: पाली के गुणा एंदुला ग्रामीण सेवा शिविर में टीबी मरीजों को निक्षय पोषण किट वितरित किए गए। राजस्थान लोक सेवा आयोग के भर्ती पोर्टल में सेंधमारी के प्रयास का मामला सामने आया है। सहायक खनिज अभियंता भर्ती 2024 के तहत 3 अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदनों को विड्रॉ करने का मामला संज्ञान में आते ही आयोग ने त्वरित कार्यवाही करते हुए अजमेर में FIR दर्ज करवाई है। आयोग के सचिव ने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने सोची समझी साजिश के तहत इस पोर्टल को अवैध रूप से एक्सेस कर 3 अभ्यर्थियों के आवेदनों को समाप्त किया था, जिससे अन्य अभ्यर्थियों को उसका फायदा मिल सके। उन्होंने कहा कि आयोग युवाओं के भविष्य और परीक्षा प्रणाली की शुचिता को लेकर अत्यंत संवेदनशील है। पोर्टल से छेड़छाड़ कर परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और अब मौसम। प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और प्री मानसून की गतिविधियों के कारण आज 5 संभागों में अंधड़ और गरज के साथ बरसात का अलर्ट है। इस दौरान कहीं कहीं 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से हवाओं से नमी की आपूर्ति हो रही है, इससे कई जगह पानी बरसने के आसार हैं। वहीं बीते 24 घंटों में अनेक स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश हुई। सबसे ज्यादा 5 सेंटीमीटर पानी दातारामगढ़ में बरसा। श्रीगंगानगर, चूरू और सीकर में ओले भी गिरे। इससे तापमान में 8 डिग्री तक की गिरावट आई है। राजधानी जयपुर में भी देर रात शुरू हुआ बारिश का दौर रुक रुक कर आज सुबह भी जारी रहा। भीलवाड़ा में भी आज सुबह हल्की बरसात हुई, इससे गर्मी और उमस में कमी आई है। राज्य में अंधड़ और बरसात का सिलसिला अगले 3-4 दिन तक बना रह सकता है। उधर जैसलमेर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप है। दिन का पारा 44 डिग्री के पार दर्ज हुआ। यहां धूल भरी आंधी चलने का अंदेशा भी जताया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को गरज चमक और तेज हवाओं के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। वहीं किसानों को फसलों की कटाई और भंडारण का काम सावधानी से करने को कहा गया है। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए दुनिया भर में बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। लगभग 190 देशों में इसका आयोजन होगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग रखी गई है। इसका उद्देश्य बढ़ती उम्र में लोगों को स्वस्थ और सक्रिय जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है। योग दिवस काउंटडाउन के तहत प्रदेश में भी अनेक स्थानों पर योग शिविर लगाए जा रहे हैं, जिनमें सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया जा रहा है। उधर अहमदाबाद में हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पाली के अर्जुन परमार ने लोगों से योग से जुड़ने की अपील की है।
4: भारत में हुई विश्व स्तरीय योगासन प्रतियोगिता में मैंने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 स्वर्ण पदक प्राप्त किए, एक आर्टिस्टिक सिंगल और एक आर्टिस्टिक ग्रुप में प्राप्त किया। आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये कहना चाहता हूँ कि योग केवल एक शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी सभी लोगों के लिए कार्य करता है। मैं विशेष रूप से युवाओं का आग्रह करना चाहूंगा कि योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें।
0: जयपुर सैन्य स्टेशन में शिक्षा और समाज कल्याण से जुड़ी पहलों को आगे बढ़ाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम रखा गया। इसमें सेना और सिविल सोसाइटी के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन ने बताया कि इस दौरान वीर नारियों का सम्मान और सशस्त्र बलों के सैनिकों के मेधावी बच्चों को टैबलेट वितरित किए गए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में पहली बार 9 महिला कैडेट शामिल। महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ अगले आर्मी चीफ नियुक्त 30 जून को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे। भजन लाल शर्मा ने कहा, केंद्र की NDA सरकार की नियमों में पारदर्शिता और नीतियों में दूरदर्शिता से देश प्रगति के पथ पर अग्रसर। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और प्री मानसून गतिविधियों के कारण कई स्थानों पर आंधी बारिश का सिलसिला, तापमान में 8 डिग्री तक गिरावट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से सिरोही जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख साकेत गोयल ने तैयार किया है। सिरोही जिले में इन दिनों मॉनसून पूर्व तैयारियों के साथ साथ विभिन्न जन कल्याणकारी और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर विकास कार्यों की समीक्षा का दौर जारी है, तो वहीं जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। आज की जिले की चिट्ठी में बात करेंगे ऐसी ही कुछ प्रमुख गतिविधियों की। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा बाल श्रम मुक्त सिरोही अभियान चलाया गया। जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर के निर्देशन में आबू पर्वत और सिरोही क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। होटल, रेस्टोरेंट और दुकानों पर निरीक्षण कर बाल श्रमिकों के चिन्हीकरण की कार्रवाई की गई। साथ ही आशा सहयोगिनियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और ग्रामीण महिलाओं को बाल श्रम उन्मूलन तथा बच्चों के अधिकारों के संबंध में जानकारी दी गई। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी इस अभियान में भाग लिया। आमजन को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा शहरी सेवा शिविर अभियान शुरू किया गया है। अभियान के तहत 15 जुलाई तक विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों के माध्यम से भूमि नियमन, पट्टा वितरण, कच्ची बस्ती नियमन तथा अन्य लंबित मामलों का समाधान किया जाएगा। विभिन्न श्रेणियों में दी गई छूट का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए नगर परिषद द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा के लिए जिले के प्रभारी मंत्री के विश्नोई ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने ट्रॉमा सेंटर, ओपीडी, दवा वितरण केंद्र तथा अन्य विभागों का अवलोकन कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान सड़क सुरक्षा में घायल मरीजों से मुलाकात कर उनकी उन्होंने कुशल क्षेम पूछी, चिकित्सकों को आवश्यक निर्देश दिए, अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों की समस्याओं पर चर्चा भी की। जिला प्रशासन द्वारा आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पंचायत समिति आबू रोड में आयोजित उपखंड स्तरीय जनसुनवाई में जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने ग्रामीणों और नागरिकों की समस्याएं सुनी। जलापूर्ति, खाद्य सुरक्षा, विद्युत लाइन, प्रधानमंत्री आवास योजना, पार्क विस्तार तथा अन्य सुविधाओं से जुड़े मसलों पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। साथ ही पात्र व्यक्तियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया गया। प्रदेश में अच्छी वर्षा और खुशहाली की कामना को लेकर जिले के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना के कार्यक्रम आयोजित किए गए। सिरोही के सारणेश्वर महादेव मंदिर तथा पिंडवाड़ा क्षेत्र के गोपेश्वर महादेव मंदिर में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और श्रद्धालुओं ने भाग लिया। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में पिछले दिनों बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और राहत तथा बचाव व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। मॉनसून को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। संभावित बाढ़, अतिवृष्टि तथा अन्य प्राकृतिक परिस्थितियों से निपटने के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन और वन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में लवकुश वाटिका में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का समापन हुआ, साथ ही हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में जल संरक्षण, पौधरोपण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संदेश दिया गया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत बत्तीसा बांध पर भी कार्यक्रम रखा गया। प्रभारी मंत्री के विश्नोई ने जल संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। जिले भर में आयोजित विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जल बचाने और वर्षा जल संचयन के प्रति जागरूक किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में जिले में विभिन्न गतिविधियां की जा रही हैं। माधव विश्वविद्यालय की ओर से योग महोत्सव 2026 के 100 दिवसीय काउंटडाउन कार्यक्रम चल रहे हैं। कार्यक्रमों का उद्देश्य युवाओं को योग, स्वास्थ्य और संतुलित जीवन शैली के प्रति जागरूक करना है। सिरोही जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। इंडियन मिलिट्री एकेडमी री पासिंग आउट परेड में पहली दफा 9 महिला कैडेट शामिल। महिलाओं की अगुवाई में विकास री दिशा में खास कदम। उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ अगला सेना प्रमुख फैला। 30 जून ने जनरल उपेंद्र द्विवेदी रिठौड़ लेवेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो, केंद्र री एनडीए सरकार री नियमा माय साफ कोई और नीतियां माय आगे री सोचो देश बरकतरा गेला माथे चाल रियो है। और प्रदेश माय कई ठोणा आंधी बारिश रो सिलसिलो। पारा माय 8 डिग्री सेल्सियस ताई री गिरावट। समाचार।

0: बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। इसी प्रेरणा से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति प्रदान की गई। आज भारत रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, फार्मा जैसे अनेक क्षेत्रों में विनिर्माण और निर्यात के नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है। पिछले 12 वर्षों में जितनी तेजी से भारत का बुनियादी ढांचा सुदृढ़ हुआ है, वो आप अपने आप में एक मिसाल है।
1: श्री शर्मा कहो कि प्रदेश में आई प्रति व्यक्ति आमदनी बची है। पहली अच्छे प्रति व्यक्ति आय 69,000 रुपया सालाना ही, जो अब बेहतर 2,00,000 रुपये बत्ती वे की है। मुख्यमंत्री कहो कि राज्य 26 जिला माए किसाना ने दिन माई बिजली दी जा रही है। जिलाना प्रभारी मंत्री प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार री उपलब्धियां री जानकारी दीनी। इस आ गई प्रदर्शनियां रे जरिए केंद्र और राज्य सरकार का नियम चलाई जा रही जनता रा भलारी योजनावां री जानकारी लोगां ने दी जा रही है। प्रदेश में चल रहा ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर के जरिए जनता की समस्याओं मौके निपटार और सरकार का नियम चलाई जा रही जनता रा भलारी योजनाओं जोड़ी जा रही है। जैसलमेर रा पशुपालक गणपत कुमार बतायो कि वहां ग्रामीण सेवा शिविर में मंगला पशु बीमा योजना रो फायदो मिलियो।
2: मैंने मंगला पशु बीमा योजना के तहत दो गायों का बीमा करवाया था, जिसमें गाय की डेथ होने के बाद 18,000 रुपए क्लेम मंगला पशु बीमा योजना के तहत मिल चुका है। और ग्रामीण सेवा क्षेत्र जैसे जैसे अमर सागर से हूँ मैं, और मैं अभी नरेंद्र मोदी जी और सीएम भजनलाल जी का तहे दिल से स्वागत, धन्यवाद।
1: पालीरा गुढ़ा एंदला में लगाई गया ग्रामीण सेवा शिविर में टीबी की बीमारी रा मरीजा ने निक्षय पोषण किट दिया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग सहायक खनिज अभियंता भर्ती 2024 रा 3 उम्मीदवार का ने ऑनलाइन तरीका दाखिल करी जी अर्जियां भर्ती पोर्टल माए सेंध मारी रे जरिए पाछी ले लेवन रा मामला माए अजमेर पुलिस माए FIR दर्ज कराई है। आयोग रा सचिव बतायो कि कोई अनजान मिनक दूजा उम्मीदवार न फायदो देरावन रा मकसद सोची समझी साजिश रा तहत ई पोर्टल माए गैर कानूनी तौर सेंध लगार 3 उम्मीदवार री अर्जियां हटा देनी ही। अरब मौसम, प्रदेश रा 5 संभागा माए आज अंधड़ और गरज सागे बरसात सारू चेताई चियो है। इस दौरान कठे कठे 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा री रफ्तार उम्बाई रोबा जनरी शंका है। इन विचे लाडला 24 घंटा माए कई ठोड़ा बिरखा भी सबू बत्तो 5 सेंटीमीटर पानी सीकर जिला रा दांता रामगढ़ माए बरसियो। श्रीगंगानगर चूरू और सीकर माए उड़ा पड़िया, जिनु तापमान माए 8 डिग्री सेल्सियस ताई री कमी आई। राजधानी जयपुर में आई मोड़ी रात सरूफियो बारिश रो दौर रुक रुक कर आज समारे ताई चालतो रहो। भीलवाड़ा में आई आज सुबह हल्की बरसात थी। राज्य में अंधड़ और बरसात रो सिलसिलो आवता 3-4 दिन ताई चालतो रहन री संभावना है। तुजिकानी जैसलमेर माए जोरदार गर्मी और लू बीच पारो 44 डिग्री सेल्सियस न पार कक्यो, वठे आंधी चालन री संभावना है। मौसम विभाग किसाना ने शाखा री कटाई एवं भीलीकरण का काम माए सावचेती राखन सारू कहो है। 21 जून ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनावन सारू आखी दुनिया माए तैयारियां चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रे मौके करीब 190 देशा माए भांत भांत रा कार्यक्रम रख्या जावेला। इस साल योग दिवस रो मुद्दो योग फॉर हेल्दी एजिंग राखी चियो है। इनरो मकसद बढ़ती उम्र माए लोगा ने स्वस्थ और सक्रिय जिंदगी जीवन री सीख देवनो है। इस सिलसिला माए प्रदेश माए कई ठोणा योग शिविर लगाया जा रहा है। इन विचे अहमदाबाद में भी पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में सोनारा 2 तमगा जीतने वाला पाली जिला रा अर्जुन परमार जनताओं योग जुड़वारी अरज कीनी है।
3: भारत में हुई विश्व स्तरीय योगासन प्रतियोगिता में मैंने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 स्वर्ण पदक प्राप्त किए, एक आर्टिस्टिक सिंगल और एक आर्टिस्टिक ग्रुप में प्राप्त किया। आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कहना चाहता हूँ कि योग केवल एक शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी सभी लोगों के लिए कार्य करता है। मैं विशेष रूप से युवाओं का आग्रह करना चाहूंगा कि योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें।
1: जयपुर फौजी स्टेशन में शिक्षा और समाज कल्याण एवं जुड़िया काम आगे बढ़ावन सारू एक खास कार्यक्रम रखी चियो। इनमाए फौज और सिविल सोसाइटी बीचे मदद बढ़ावन माथे जोर दियो चियो। फौज रा जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन बतायो कि इन दौरान वीर नारियां रोमान करीजियो फौजियां रा बच्चा ने टैबलेट दिया चिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करिया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 28 जून ने विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 153वीं कड़ी फैला। इसारू आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 माथे 26 जून ताई राय दे सको हो। नंबर ओजू सुन ले राव सा 1800117800। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम रे जरिए ये विचार भेजा जा सके है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया रा 6 दिन रा सरकारी दौरा सारू रवाना भिया। रणनीतिक माली और सांस्कृतिक निजरों और दौरों खास मान्यो चाहियो है। इरा पहला दौर माय काल श्री मोदी फ्रांस रा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सागे भारत इनोवेट सम्मेलन रो उद्घाटन करेला। दूजा दौर माय वे काल स्लोवाकिया सारू रवाना भेजा वेला। स्लोवाकिया रा दौरा पाछे वे फ्रांस रा एवियन माय 16-17 जून ने भेवन वाला G7 शिखर सम्मेलन माय शामिल भेला। श्री मोदी 18 जून ने फ्रांस माय विवाटेक सम्मेलन माय शिरकत करेला। आखिर माय खास समाचार एक फिर सुन ली रहो। इंडियन मिलिट्री एकेडमी री पासिंग आउट परेड माय पहली दफा 9 महिला कैडेट शामिल। महिलावारी अगुवाई माय विकास री दिशा माय खास कदम। उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ अगला सेना प्रमुख वेला। 30 जून ने जनरल उपेंद्र द्विवेदी रिठौड़ लेवेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो केंद्र री NDA सरकार री नियमा माय साफ कोई और नीतियां माय आगे री सोच उन देश बरकत रा गेला माथा चाल रियो है। हर प्रदेश माय कई थोड़ा आंधी बारिश रो सिलसिलो। ऐसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो। नमस्कार।
4: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल। इस समय शाम के 7 बजे हैं। आइए सुनते हैं किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी।
5: प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय भारत सरकार।

0: समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: किसान हमारे सुनने सगला किसान भाई ना पूजा बेंद्रा घना घना राम राम। इस किसान भाई की आप हमेशा कार्यक्रम के माध्यम से बात करते हैं कि भाई मौसम कैडो है और उस अनुसार आपको ना पड़ी शरीर को ध्यान रखना चाहिए। तो गर्मी ज्यादा पड़ रही है, सब में ध्यान है और गर्मी है बचाव वास्ते आपको सब लोग सजग जाना चाहिए। किसान भाई है चाहे जो भी कार्यक्रम सुन वाला सारे जो नागरिक है उन सबों कहना है कि गर्मी से राहत रहा अपना बचाव बनाए रखे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और जितना हो सके गर्मी में बाहर कम निकले। बाकी सब लोग समझदार है

अभियान रवाएं, कृषि वैज्ञानिक, केंद्र और राज्य सरकारों का अधिकारी, जन प्रतिनिधि और जो प्रगतिशील किसान है वो सब गांव गांव में जाते और किसानों ने संतुलित खाद का उपयोग करना, नकली पेस्टिसाइड की पहचान करनी और वैज्ञानिक खेती से कौकर जुड़ना है, ये भी पूरी अच्छे से विस्तृत जानकारी देते। तो सबको एक आग्रह है कि ये अभियान से जुड़े, वैज्ञानिक सलाह लेवे और उरे अनुसार खाद का उपयोग करे और प्राकृतिक खेती भी और अपना कदम बढ़ावे, क्योंकि आज वो युग वैज्ञानिक युग है। आप और किसान भाइयों ने ऐसे कहना है कि वो ये क्षेत्र में आगे बढ़े। हाँ दोस्तों, मैं जो आप और किसान भाइयों वास्ते है क्षेत्र में विशेष रूप से कोई भी काम को नहीं है, लेकिन जो समय है तो ये टाइम को उपयोग करते हुए किसान भाई आपके क्षेत्र की मिट्टी की और पौनी की जाँच जरूर करवा लें, ताकि आगामी फसल वास्ते वो तैयार रहे कि आप और क्षेत्र में कई फसल उगावनी है, कैसे आपको ना बढ़िया मुनाफा हो सके। मुनाफे की बात कर जाए तो आप जो क्षेत्र है यानी कि राजस्थान और विशेष करके जैसलमेर, देखो आप एक ये क्षेत्र में बैठा हूँ गर्म इलाके में, ये वास्ते अगर बागवानी की बात कर जाए तो आप और किसान पहले वास्ते खजूर की जो खेती है वो बहुत ही लाभदायक है और एक बहुत ही सफल और उत्तम व्यवसाय है। क्यों है? क्योंकि जैसलमेर तो जो तापमान है, जो इसकी जलवायु है, वो खजूर वास्ते बहुत ही उपयुक्त है। 45% डिग्री से लेकर के 50 डिग्री तक जो तापमान है वो खजूर पेड़ों चाहिए और जड़ों ने पौधे वास्ते जगह और पर्याप्त नमी जो कि उपलब्ध है। और जब एक बार आप फसल लगाए दिया तो उबेरे बाद में फसल तो अपना मुनाफे मुनाफा है। पहला 3-4 साल आपने उरी बढ़िया चाकरी करनी पड़ते, लेकिन उरे बाद कई सालों तक और कई ज्यादा गुना आपने मुनाफा भी मिलते। दूसरो, चाहे रेतीली मिट्टी होवे, हल्की दोमट मिट्टी होवे और चाहे पौनी खारो होवे, लवणी होवे, खारो होवे, सबरे वास्ते खजूरी फसल उपयुक्त है। मतलब हर परिस्थिति वास्ते खजूरी फसल अनुकूल है। तो आप कृषि वैज्ञानिकों की सलाह सु अगर सही फसल रो किस्म रो चयन करके और उन्हें उगा दे तो आप किसान भाई निश्चित रूप से अच्छी फसल ले सके। जब एक पेड़ अच्छी तरीके से लग जावे, विकसित हो जावे, तो वह सो आप उन्हें लगभग 80 लेकर के 150 किलो तक फल प्राप्त होया करें और बाजार में तो यदि अच्छी मांग सही तो खेती न बढ़ाने वास्ते आप राज्य सरकार की है जो किसानों ने बहुत अच्छी सब्सिडी दे रही है, लगभग 50% और उससे ज़्यादा भी। तो पैसे तो किसान भाई वास्ते कहने की है तो सरकारी सहायता प्राप्त करके वो आप ये क्षेत्र में खजूर क्षेत्र में आगे बढ़ सके। सबसे बड़ी बात खजूर है वो तो खुद तो बिकेज है क्योंकि तो उरी बाजार में मांग है, लेकिन इसके अलावा भी कि खजूर का और भी कई उत्पाद बढ़िया करें जो कि जैम है, पेस्ट है, सिरप है, अचार है और भी कई प्रकार की वस्तुएं बने, तो उम्र वास्ते भी जब यह उत्पाद को बनते हैं तो ये उत्पाद से भी किसान भाइयों को अतिरिक्त लाभ मिल सके। और निश्चित है कि ऐसा उत्पाद बढ़ाने वास्ते किसान भाई अकेले को नहीं कर सके, उन्हें नर शक्ति की आवश्यकता पड़ते है। तो ये सो रोजगार का अवसर भी खुल से, तो एक तरीके से यह मुनाफे ही मुनाफे की बात है। रोजगार का अवसर बढ़ रहा है, लोगों के वास्ते एक अच्छो क्षेत्र है। हर कौम के वास्ते आप थोड़ा बहुत ध्यान तो रखना ही पड़ेगी। तो खजूरी खेती है तो इस वास्ते भी आप और किसान भाई थोड़ा सा, जो पहले बात कही थी कि वैज्ञानिक युग है तो थोड़ा बहुत नवाचार करके, पुरानी बातों को अनुभव लेकर के और नई बातों को अपनाए करके अगर आप खेती कर जाए तो निश्चित रूप से फायदा हो जाए। सबसे पहली बात तो कि जब बरसात का मौसम हो से तो उस टाइम आप और फसल न बीजन से बचाने से कि वो खराब नहीं हुए तो पॉलीथीन से ढक देवे ताकि आप और फसल खराब नहीं हुए। दूसरो, आज तक कृत्रिम परागण की बात चलिया करे, हर पौधे में नर और मादा की व्यवस्था हुई, खजूर में भी है, तो खजूर में भी नर और मादा पौधा अलग अलग होया करे। अच्छे उत्पादन रे वास्ते नर पौधों के परागणों से मादा फूलों रो कृत्रिम परागण कराए करके और अच्छी और बढ़िया फसल उत्पादन ले सकते। तो थोड़ा बहुत अपनों जागरूक भी होना पड़ता है किसान भाइयों ने, सरकार भी सहायता कर रही है, अदो आप रो अदो सरकार रो, ये प्रकार से आप किसान भाई ये क्षेत्र में आगे बढ़ करके और बढ़िया कमाई कर सके, अच्छो कम लागत में अधिक उत्पादन ले सके। हमें बात करते हैं किसान भाइयों की, आपको समय समय मत आप और किसान भाइयों वास्ते जानकारी कार्यक्रम के माध्यम से ले आ जाए। आज भी आप कार्यक्रम के माध्यम से बैठ वार्ता सुनाई जाए, क्योंकि मैं सुगम सिंह की

0: राठौड़ सहायक निदेशक है और उससे बातचीत कर रहा है सुरेश कुमार जी हर्ष। तो पहले सुन जी आपको है भेंट वार्ता।
1: तो बैठो देखो आज आप आड़ा हूँ कृषि विभाग और आप बातचीत कर सावधान की विभाग रे शुभ सिंह जी राठौड़ साहब सु आप सहायक निदेशक उद्यान की में ठेबरा जी। और देखो के आप जो कोई क्षेत्र है कृषि रे मई कई विषय है और वे मिनो आज को किसान और वास्ते उद्यान की है एक स्वर्णिम अवसर है। तो डॉक्टर साहब आप बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद सुरेश जी।
1: डॉक्टर साहब मनो ये बात बताओ कि कई समय में ना तो अपने तो बारानी खेती होती थी फिर बाद में नहर आए कि ट्यूबवेल हो क्या और सरकारी आप विभाग के माध्यम से पौंड निर्माण जीरे कई योजना हो गए हमें लोग उद्यान की माथे भी काफ़ी लोग रुचि अपना रहे हैं। तो ये उद्यान की जो है येरा आने वाली टाइम रे महीनों या जो भी ये महीना पहल कर दी है वो कितो लाभदायी है किसानों की आर्थिक स्थिति कौकर मजबूत हो सके और कौकर आप जो धरातल है बिना मन नहीं।
2: बागवानी में देखो बहुत बढ़िया संभावनाएं जिले में हैं क्योंकि अपने यहाँ पे ज़मीन की कमी नहीं है। किसानों के पास खूब सारी ज़मीन है और अभी आप मानो तो नहर आने से नए ट्यूबवेल होने से लोगों के यहाँ वाटर कंजर्वेशन के स्ट्रक्चर बढ़ने से पानी का भी संरक्षण लोग कर रहे हैं। तो पारंपरिक खेती के साथ साथ यदि अपन बागवानी की ओर बढ़ते हैं तो ये एक लंबे समय तक इनकम देने का अपना सोर्स बनता है। जैसे अपन बात करें खरीफ फसलों की तो ये दो महीने की फसल होती है काट लेते हैं और बेच लेते हैं, लेकिन बागवानी यदि अपन करते हैं तो ये कम से कम अपने को 20-30 साल तक इनकम देती है और एक अच्छा इनकम का परमानेंट सोर्स बन सकता है। इसलिए सब किसानों से ये आग्रह है कि अपनी परंपरागत खेती के साथ साथ बहुत ज़्यादा स्केल पे अपन नहीं कर सकते हैं तो भी थोड़े से एरिए में बागवानी फसलों की ओर जरूर अपने को बढ़ना चाहिए।
1: बिल्कुल देखो डॉक्टर साहब के अपन जो को एक क्षेत्र है ये में काफ़ी लोग बाग ये क्षेत्र में उतर भी रहा है और अपन प्रधानमंत्री जी भी ये कह रहा है कि किसान री आय जो है वो दुगुनी होनी चाहिए। तो दुगुनी वास्ते तो किसान आप खेती के साथ साथ में जो आप बताए उद्यान की रमीनों भी सफल प्रयोग कर सके तो ये क्षेत्र में उद्यान की रमीनों कल सौ मोरा किसान भाई कूदिया है और वो कितनी ये रमीनों सफलता हासिल करी है आगे संभावनाओं की।
2: उद्यानिकी में अपने जैसलमेर ज़िले में मेनली दो तीन फसलों का रुझान लोगों का है जिसमें एक मुख्य फसल आती है अनार की और दूसरी है खजूर की। इन दो फसलों की और किसानों का रुझान ज़्यादा है। अनार की जो खेती है वो पिछले 3-4 सालों में काफ़ी अच्छी ग्रोथ करी है और बड़ी भी है। 5 साल पहले की बात करें तो लगभग 150 से 200 हेक्टर में इसकी खेती होती थी, आज ये बढ़ के लगभग 700 से 800 हेक्टर तक हुई है और लोग इस साल भी बड़े स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। कुछ किसानों से हमारी बात हुई थी तो वो लगभग 10-10, 11-11 हज़ार प्लांट लगाने की तैयारी कर रहे हैं। मुख्य रूप से अपने यहाँ पे जो फतेहगढ़ का ब्लॉक है इस ब्लॉक के किसान जो है वो अनार की बागवानी की तरफ ज़्यादा आकर्षित है, जिसके कारण भी कुछ जो मेरे को लग रहे हैं एक तो बाड़मेर से लगता हुआ ये क्षेत्र है तो वहाँ पर लोग बहुत सक्सेसफुली अनार कर रहे हैं तो एक तो वो लोग वहाँ देख के आते हैं, दूसरे जो अनार के भाव हैं वो पिछले 1-2 सालों से बहुत बढ़िया मिल रहे हैं। किसानों को अपने खेत पे लगभग 125-130 रुपये किलो के भाव मिल रहे हैं, इस कारण भी लोगों का रुझान है। एक बड़ा कारण जो हमारे ध्यान में आया है कि अनार का उत्पादन होने के बाद व्यापारी खरीदने के लिए किसान के खेत तक आ रहा है, किसान को कहीं बोरियाँ भर के ले जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। बाकी जो फसलें होती हैं उसमें किसान अपनी तरफ से ले जाता है, ट्रैक्टर ले गाड़ी लेगा, किराए करेगा, बाजार तक जाएगा तो उसको काफ़ी मेहनत भी लगती है, पैसा भी लगता है, लेकिन इस अनार की फसल में हमने देखा है कि बाहर से व्यापारी महाराष्ट्र के, गुजरात के यहाँ आते हैं और यहाँ से खरीद के वो अपने स्तर से भी मार्केटिंग करते हैं और ऐसा सुनने में आया कि बाहर विदेशों तक भी यहाँ से भेज रहे हैं तो किसानों को एक अच्छा पैसा भी मिल रहा है और अनार की बागवानी मेरे हिसाब से अपने यहाँ पे क्लाइमेट के हिसाब से अभी जो लोग कर रहे हैं वो अच्छी फायदेमंद साबित हो रही है।
1: बहुत ही बढ़िया है। देखो के सबसे मोटी बात होगी कोई भी प्रकार उत्पाद हुए बाजार तक ले जाऊँ।
2: हाँ,
1: आप एक जो बात करी हो के खरीदार तो सौ में आ रहा है,
2: बिल्कुल
1: तो बहुत ही एक किसान

0: हुनर वास्ते बड़ी लाभकारी और बढ़िया बात है। जैसे राठौर साहब देखो के जो वहाँ पर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, आप पहले भी उन्होंने बात करी हो कि लोग कई तरीका नया नया अपना हुए, कृषि के साथ साथ में नवाचार होना चाहिए, तो ये में सरकार की मदद कर सके। मोहरे भाई और जो थो बात करी कि खजूर में लोग रुचि अपना रहा है, अनार में रुचि अपना रहा है, कई भाई अपना बोर भी कर रहे हैं, बड बोर जगह में कहीं कोई शेव बोर कहीं, तो सरकार की तरफ से ये में की मोहरे किसान भाइयों नो लाभकारी योजना।
1: अब आप जो बात करी कि इसमें सरकार की तरफ से क्या मदद है, तो अपने जैसे बागवानी में हैं तो अनार की यदि कोई खेती करता है तो उसको अपनी लागत का लगभग 40% अनुदान सरकार देती है। यदि वो 100 रुपये खर्च करेगा तो 40 रुपये तो उसको अनुदान के मिल जाएंगे, बाकी उसको जो 60% हिस्सा है वो खुद को लगाना पड़ेगा। उसके लिए एक प्रक्रिया है। कई बार क्या होता है कि किसान प्रक्रिया या योजना की जानकारी के अभाव में पूरा ही पैसा खुद लगाता है और उसको कोई लाभ नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए क्या है कि अपने को एक राज किसान पोर्टल हमारे यहाँ बना रखा है राजस्थान में, तो उस पर वो आवेदन कर लें। आवेदन जैसे ही हमारे पास आएगा तो हम उसका आवेदन स्वीकृत कर देंगे और स्वीकृत होने के बाद वो अपनी ये सारी प्रक्रिया शुरू करे तो सरकारी योजनाओं का लाभ मिल जाएगा। अनार की बात करें तो 1 हेक्टर में लगभग 63,000 रुपये पर हेक्टर का अनुदान मिलता है और मैक्सिमम 2 हेक्टर तक एक किसान को अपन दे सकते हैं। तो 63 1 हेक्टर के तो 2 के लगभग हो जाएंगे 1,26,000 के आसपास, तो ये अनार की फसल में अपन दे सकते हैं। दूसरी बात है खजूर की खेती की। तो खजूर की खेती जो है ये वैसे तो बाहर से आई, लेकिन इसके टिश्यू कल्चर के प्लांट आने से एक ऑफ सूट के भी प्लांट लगते हैं। ये ऑफ सूट के प्लांट अपने यहाँ पे उपलब्ध भी हैं तो कई लोग लगा रहे हैं। पिछली बार भी लगभग 20 हेक्टर में खजूर का प्लांटेशन अपने जिले में हुआ है और पूरा देखें तो लगभग 250 से 300 हेक्टर में अभी अपने यहाँ पे इसकी खेती हो रही है। खजूर की जो बागवानी करना चाहते हैं उनको अभी फिलहाल जो है 75% अनुदान पौधों पे उपलब्ध है, यानी जो भी उनकी कॉस्ट आएगी उस पे 75% का अनुदान मिलेगा और अधिकतम जो है 4 हेक्टर तक 5 हेक्टर तक किसान लगा सकते हैं। इसके 2 तरह के पौधे आते हैं, एक ऑफ सूट के, एक टिश्यू कल्चर के। ज़्यादातर अभी जो किसान पसंद कर रहे हैं वो टिश्यू कल्चर के पौधे पसंद कर रहे हैं, जिसका कारण ये है कि उसमें एक तो ग्रोथ बढ़िया आती है, एक उसकी ग्रोथ थोड़ी जल्दी होती है और कहते हैं फ्रूट वगैरह भी थोड़े अच्छे साइज के आते हैं। लेकिन इसके जो पौधे हैं वो थोड़े महंगे हैं, यानी अभी जो अभी सरकार के जो रेट अप्रूव्ड हैं वो 3,950 रुपये एक पौधे की कॉस्ट है, जिसपे आपको 75% का अनुदान मिलेगा, बाकी पैसा आपको देना पड़ेगा। लगभग माने तो 990 रुपये के आसपास एक पौधा पड़ता है। तो अभी काफ़ी लोगों ने एप्लीकेशन कर रखी है, जिसको हम अभी जैसे बारिश का सीजन शुरू होगा जून जुलाई तो उसमें सेंक्शन करेंगे और लोगों के यहाँ प्लांटेशन करवाएंगे। कई बाहर से भी लोग आते हैं पूछने, तो जिनके यहाँ मुरबे हैं या जो ट्यूबवेल हैं जिनका पानी अच्छा है वो लोग अपनी मिट्टी पानी की जाँच करा के और उसके बाद ये बागवानी कर सकते हैं। तो ये सक्सेसफुल मॉडल है अपने यहाँ पे खजूर और अनार की खेती का, जिसमें कोई अभी तक कोई बहुत बड़ी परेशानी या बहुत बड़ी दिक्कत कीड़े बीमारियों की मार्केटिंग की ऐसी अभी देखने को नहीं मिली।
0: बहुत बढ़िया राहुल साहब, लेकिन एक बात और भी है कि एक आप बात करके कई भाई है जो को गलती से आप पूरा पैसा लगा दे और उधर बाद में अगर वो आप रो राजस्थान पोर्टल माध्यम आप आवेदन कर दे और उधर स्वीकृत हो जावे और मेरा पौधा है वो फलीभूत हो जावे, तो वही स्थिति में उधर साथ की हो सके क्या वो लाभ मिल सके या नहीं मिल सके।
1: नहीं, पहले यदि प्लांटेशन कर देता है तो उसको लाभ नहीं मिलेगा, उसको पहले विभाग में आवेदन करना है, विभाग की स्वीकृति होगी, स्वीकृति होने के बाद ही उसको सारी प्रक्रिया करनी है, क्योंकि बिलिंग वगैरह सारी बाद की होती है। तो स्वीकृत होने के बाद ही वो बिल वगैरह लेके आए और विभाग में जमा करें, तो क्या उसका वेरिफिकेशन भी हो जाता है और वेरिफिकेशन के बाद जितने पौधे लाए होते हैं उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होके उसको पैसा मिल जाता है।
0: अभी देखो भी भाई आप और सुन रहे हैं वो ना ऐसे थोड़ी विशेष बात हो ध्यान रखना पड़ से कि कहीं आप रे मते कोई काम नहीं करे, क्योंकि आजकल जो को भी प्रक्रिया है वो एक कह सके कि पारदर्शी है, तो ये वास्ते ये में कोई भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करे और सरकारी जो को प्रक्रिया है वो पूर्ण करे। जी मैं आप बताइए कि मैं मिट्टी पानी की जाँच, कुछ भाई ऐसा है मिट्टी पानी की जाँच में थोड़ा कम रुचि रखे तो उम्र वास्ते कितनी हानिकारक है और जो जाँच कर उम्र वास्ते कितनी लाभदायक है।
1: बहुत बढ़िया बात आपने कही। आजकल सरकार का बहुत बड़ा ध्यान है मिट्टी, पानी, खेत बचाओ, धरती बचाओ, इस तरह के अभियान चल रहे हैं। अभी एक भारत सरकार ने अभियान शुरू कर रखा है खेत बचाओ, जिसके अंदर क्या है कि जितने भी भारत सरकार के इंस्टीट्यूट हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, काजरी केवीके के वैज्ञानिक हैं, उनकी टीमें गांव तक जा रही है, गांव के लोगों के पास बैठ के उनसे संवाद कर रही है कि अपने खेत को कैसे बचाना है, खेत की मिट्टी की सेहत के बारे में क्या क्या ध्यान रखना है, सैंपल लेके जांच करानी है, जितनी ज़रूरत है उतना ही खाद डालना है। तो ये तो बहुत ही ज़रूरी बात है और सबको कराना भी चाहिए। कई लोगों ने अपने कार्ड बना भी रखे हैं, तो उसमें जो चीज़ें लिखी है, जो फर्टिलाइज़र का रिकमेंडेशन है, उसके हिसाब से ही अपने को काम में लेना है। विशेषकर बागवानी फसलों में भी रिकमेंडेशन होती है, तो उसके अनुसार भी अपन कर सकते हैं। एक दूसरी और बात है जो भी पानी बचाने को लेकर है कि अभी एक वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान भी चला, जिसमें भी काफ़ी सारी गोष्ठियाँ हुई, कई सारे कार्यक्रम हुए, जनप्रतिनिधि भी आए, किसान भी आए, हमने भी यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में 1 तारीख को प्रोग्राम किया था। तो जो भी पानी से संबंधित स्कीम है उसमें मुख्य रूप से अपने यहाँ पे एक पर ड्रॉप मोर क्रॉप एक स्कीम चलती है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि जो खेती में पानी काम आता है उसको कैसे बचाया जाए, कैसे संरक्षित किया जाए, ताकि अपन भी अच्छी फसल ले सकें और पानी का भी सदुपयोग हो। तो अपने यहाँ पे लोग पानी का संरक्षण करने में पहले से ही बहुत आगे हैं, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें वो लोग पीछे रह जाते हैं। जैसे मैं बात करूँ अपने को ड्रिप इरीगेशन सिस्टम, एक आता है मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम। तो स्प्रिंकलर सिस्टम तो अपने यहाँ पे कामयाब हैं, लोग उसको बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, तो फेमस भी हैं, तो लोग उसको यूज भी ले रहे हैं। लेकिन मिनी स्प्रिंकलर जो एक स्प्रिंकलर का छोटा रूप है, मतलब वो एक ऐसा सिस्टम है कि अपने खेत में लगाने के बाद अपने को उसमें कुछ भी नहीं बदलना है, ना पाइप बदलने हैं, ना उसके फुहारे बदलने हैं, कुछ नहीं करना है। तो ये पूरा एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसमें वाल चालू करना है और अपना पूरा का पूरा खेत सिंचित हो जाएगा। तो जो लोग यहाँ पे कर्षे रख रहे हैं, कर्षे किस लिए रख रहे हैं, सिर्फ पाइप उठाने के लिए कि तेरी बारी आएगी पानी की, तो तेरे को 6 घंटे पाइप बदलने हैं, लाइन बदलनी है, पानी चलाना है। तो वो लोग जो कर्षे सिर्फ पाइप उठाने के लिए रख रहे हैं, वो इस मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम को लगा के और सिर्फ एक वाल खोल के अपने पूरे खेत की सिंचाई कर सकते हैं। अभी फिलहाल जो है इस पे सामान्य किसानों को 70% अनुदान है और कोई SC ST महिला किसान है तो उनको 75% का अनुदान उपलब्ध है। जो लोग भी इस सूक्ष्म सिंचाई योजना में लाभ लेना चाहते हैं वो राज किसान पोर्टल पे अपनी एप्लीकेशन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, खेत की जमाबंदी ले जाओ, नक्शा और एक अपना कोटेशन कि मैं किस एरिया में कितना लगाऊंगा, मेरी कॉस्ट क्या आएगी, ये 2-3 चीज़ें ले जाके अपन एप्लीकेशन कर सकते हैं। जैसे ही अपने पास टारगेट आएंगे हम उसकी प्रशासनिक स्वीकृतियाँ जारी करेंगे, स्वीकृतियाँ जारी होने के बाद ये इंस्टॉलेशन का काम होगा, उसके बाद वेरिफिकेशन और फिर सरकार का जो अनुदान है वो DBT के माध्यम से जो भी आपका खाता लिंक है जन आधार में उसमें ट्रांसफर होता है। तो ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया है। जो लोग अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं वो एक मिनी स्प्रिंकलर या ड्रिप की योजना से जुड़ सकते हैं।
0: तो बेटा देखो आज जो समय जो है विज्ञान युग है और वैज्ञानिक तरीके से कोई भी काम कर सकते हुए मैं सफलता रहा क्या करेंगे के 100% अपन परिणाम हासिल करने की संभावना रहा है। इसमें एक सबसे मोटी अपन ये एक समस्या है अपन बात करें उदाहरण के लिए दीमक जिसे कहना अपन देखो वो बहुत मोटी समस्या है। वो ये माथे कितनी क्षति पहुंचा सके या कॉकर हो सके, क्योंकि कई चीज़ और आजकल देखो कि कई पेड़ है खड़ा खड़ा पूरा का पूरा एकदम दिमाग की चपेट में आ रहा है। तो बागवानी में एक तो रिस्की है या कॉकर है तो वास्ते किसान भाई बहुत की कर सके।
1: दीमक तो है ही है, तो पॉलीफेगस पेस्ट है, सब फसलों को नुकसान पहुंचाता है। तो जब भी अपन कोई बागवानी करें तो ये लंबी चलती है। तो हम तो किसानों को यही कहते हैं कि जब अपन प्लांटेशन की तैयारी करें, गड्ढे वगैरह खोदें, तो पहले तो उसको गर्मी में धूप में खुला छोड़ें, उसके बाद जब अपन पौधे लगा रहे होते हैं तो एक मिट्टी के साथ एक ट्रीटमेंट कर दें, क्लोरोपाइरीफॉस दवाई आती है उसके साथ कर दें, फिप्रोनील है और भी डस्ट आता है जो इसको दीमक को कंट्रोल करता है, उसको मिला के अपन पहले ज़मीन में मिला के मिक्स करके उस खड्डों को भर दें, उसके बाद खाद वगैरह डाल दें, तो कुछ समय के लिए इससे कंट्रोल होता है। बाद में भी यदि अपने को लगता है कि हाँ दीमक है, तो अपन जो सिंचाई का पानी देते हैं ड्रिप सिस्टम के साथ, उसके साथ क्लोरोपाइरीफॉस दवाई चला दें, उससे काफ़ी हद तक इसका कंट्रोल हो जाता है। और मैनेजमेंट करना पड़ता है, नहीं तो ये दिमाग सारा कुछ चट कर जाती है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है।
0: बहुत बढ़िया राठौर साहब, हमारे भाई ने बहुत अच्छी जानकारी दी और समय समय माते चुको भी प्रधानमंत्री जी हमारे किसानों वास्ते बातचीत कर रहे हैं, लोग बात ये विभागों और माध्यम से लाभ ले से। बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम साह राम।
1: धन्यवाद।
2: तो किसान भाइयों, हाँ आप सुनी बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी, जिसके मैं सहायक निदेशक कृषि विभाग अध्यक्ष शुभ सिंह जी राठौर से बात कर रहा था, सुरेश कुमार जी हर। और हमें समय हुई है राजस्थानी लोकगीत रो, तो आओ सुनिए राजस्थानी लोकगीत।

तो हमने सुनी आप बढ़िया जड़ो राजस्थानी लोकगीत और ये गीत का समापन साथ ही कार्यक्रम का समापन रो बखत भी हो गए तो पूजा बैनर दराव सी कर राम राम।

0: समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम किसान वाणी। यह आकाशवाणी का जैसलमेर केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत।

सावरी अरे भरी रे हबोला था जरा पुरानी बावरी अरे भरी रे हबोला था हाथी घोड़ा ये पी गया हमारे पन गया।

காதலியே. अब को घूमनी हो थे तो घूमता जी जो थोड़ो सो घूमता जी जो री भारी छोटी हमारी नैनी नड़ दल भैरा पीरा माले माना ली ताजे जो रे

तो करता जी जो दतड़ियों करता तिजोरी मारी छोटी आ मारी नैनी नने दले बैरा पीरा रे रूमाल मना लेता जी जोरे

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत। यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, FM बैंड 101.8 MHz पर। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम। पद्मश्री से सम्मानित पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर नारायण व्यास से फोन आउट बातचीत। इस कार्यक्रम की भेंट करता है नेहा व्यास। इस कार्यक्रम का निर्देशन किया है रामजीलाल मीणा ने। तो आइए सुनते हैं यह अगला कार्यक्रम।
1: श्रोताओं, हम आज आपसे मिलवाने जा रहे हैं पद्मश्री से सम्मानित जाने माने पुरातत्वविद डॉक्टर नारायण व्यास जी से। आइए शुरुआत करते हैं आपसे फोन आउट बातचीत। डॉक्टर साहब, आकाशवाणी जैसलमेर की ओर से पद्मश्री सम्मान मिलने पर आपको बधाई और हार्दिक अभिनंदन।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, सुनने वालों को।
1: सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ संक्षेप में बताइए, जिससे हमारे श्रोता आपके बारे में कुछ जान सके।
2: मैं डॉक्टर नारायण व्यास, पुरातत्ववेत्ता। ऐसे मूल निवासी मैं जैसलमेर का ही हूँ, लेकिन जब हमारे पिताजी जो वहाँ से चले गए, यानी वो गए तो वही रहने के वाले, लेकिन क्या होता है, काम काज के लिए, पढ़े लिखे के लिए घर छोड़ना पड़ा, तो वो सब लोग उज्जैन आ गए।
1: अच्छा।
2: तो उज्जैन में आके ने अध्ययन वगैरह शुरू किया, वहीं हम लोग जन्म हुआ और वहीं हम लोगों ने ये बचपन से ही इसकी ड्राइंग पेंटिंग की शिक्षा हमारे गुरुदेव वाकणकर जी से प्रारंभ की, और उन्हीं के सानिध्य में रहकर हमने चित्रकला के साथ साथ पुरातत्व क्षेत्र में भी हमने काम करना शुरू किया, और उन्हीं के ही मार्गदर्शन में हमने ये पुरातत्व MA किया और डिप्लोमा आर्कियोलॉजी की, और उसके बाद हम ये पुरातत्व सर्वे करने जगह जगह जगह जाकर लगे। और चूंकि ये जो पुरातत्व का ऐसा क्षेत्र, कठिनाई वाला क्षेत्र है, इसके अंदर काम करना बड़ा मुश्किल पड़ता है, लेकिन मुश्किल कठिनाई आती है, लेकिन कठिनाइयों के बाद भी उतनी हमें प्रसन्नता होती है कि हमें बहुत बड़ी सफलता मिली। तो भारतीय पुरा सर्वेक्षण में मैं करीब 37 वर्षों तक कार्य किया, पुरातत्व सर्वेक्षण, स्मारकों का संरक्षण इत्यादि काम किया, पूरे देश भर में काम किया, जगह जगह स्थानांतर हुए और विदेशों में भी जाकर हमने पुरातत्व अध्ययन किया। उसके पश्चात भी हम लोग अपने यहाँ के जगह जगह रहे, ट्रांसफर होते रहे और अंत में हम आके भोपाल में आके बस गए, और यह हमारा सारी कहना चाहिए रिटायरमेंट यही हुआ। लेकिन 18 साल हमें रिटायरमेंट भी हो गए, लेकिन उसके बाद भी हम पुरातत्व क्षेत्र में कार्य करते रहे। तो हम लोग विशेष रूप से हम लोग जो स्कूलों कॉलेजों में जो धरोहर के प्रति जागरूक करना, ये हम कार्य करते थे। स्कूलों में कॉलेजों में जाते हैं, सुधार जो मिलते हैं, जगह जगह हम कार्यशालाएं लगाते हैं पुरातत्व क्षेत्र में, और ये हम लोग काम कर रहे हैं। और इसी काम को देखते हुए भारत सरकार ने हमें इस पुरातत्व के क्षेत्र में, पुरातत्व विज्ञान के क्षेत्र में हमें ये सम्मानित किया, जो आप सबने अब देखा ही होगा।
1: आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारी श्रोताओं को। तो डॉक्टर साहब, पुरातत्व के क्षेत्र में आपका जुड़ाव जिस प्रकार से हुआ आपने सब बताया हमें, तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि आपके पिताश्री स्वतंत्रता सेनानी रहे थे और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कार्यरत थे, तो इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को कुछ जानकारी दीजिए।
2: हमारे जो पिताजी जैसलमेर को तो रहने वाले थे, लेकिन साथ साथ क्या है कि जगह जगह जाते भी रहे, तो उनका कुछ समय बीकानेर में भी निकला। 1933-34 में वो बीकानेर भी रहे, उनके सब रिश्तेदार भी हम लोग रहते थे वहाँ, तो उन्होंने पत्रकारिता प्रारंभ की। तो 1932-33 समय में जो गंगा सिंह जी का समय था, तो वो अंग्रेजों के और इनके सभी के विरुद्ध लिखा करते थे, तो इसके कारण क्या कि स्थानीय जो शासन है परेशान होने लगा, तो उन्हें जैसे पुरानी भाषा में देश निकाला बोलते हैं,

0: वो पुराना दौलतगंज चौराहा था, अब उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अनंतलाल व्यास चौराहा कर दिया। इस प्रकार से हमारे पिताजी जगह जगह जाते रहे, लेकिन हम लोगों जो मूल स्थान है जैसलमेर वो छूटा नहीं। तो पिताजी हमेशा वहां जाया करते थे। पिताजी के नाम का एक मकान जैसलमेर किले में भी है, जो व्यासपाड़ा जिसे बोलते हैं, बिल्ले के पास में मकान है। वो हम लोग भी जाते हैं, रहते हैं, लेकिन अभी कुछ उसकी मकान ठीक नहीं होने से आना जाना कम होता है, हम दूसरी जगह ठहर जाते हैं। और वैसे निरंतर पिताजी का संपर्क वहां रहा, हम लोगों की शादियां, हम लोगों के परिवार के लोग वहां रहे, वहां शादियां हुई, मेरी भी शादियां जैसलमेर में हुई 1972-73 के अंदर। और हमारे जो पूरा परिवार कहना चाहिए, भाइयों की बहने हैं, बेटियां हैं, सब वही। हमारी जो अभी छोटी बहन है दो थी, तो एक तो वहाँ अभी है जैसलमेर किले में, और एक दूसरी अभी उनका स्वर्गवास भी हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग का जैसलमेर का जुड़ाव, और चूंकि हमारी जो कुल देवी है पास में, उदल देव माता बोलते हैं उसको, पास में ही है, तो वहाँ हम लोग हमेशा जाया करते हैं। तो हर वर्ष क्या होता है कि उदल देव का मेला लगता है, तो मोस्टली हम साल में 2-3 बार हम गृहनगर जैसलमेर जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी इतना हमने जुड़ाव है जैसलमेर से कि हमारा मन करता है बार बार जैसलमेर जाने के लिए, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती कि हम जा नहीं पाते, फिर भी हमारा जुड़ाव मन लगा भी है वहां से।
1: अच्छा, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब, आपने जो जैसलमेर के बारे में इतनी बातें की, और हमें भी ये बहुत गर्व होता है कि आप जैसलमेर से जुड़े हुए हैं और आपका परिवार भी जैसलमेर से जुड़ा हुआ है। तो डॉक्टर साहब, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, भारतीय पुरातत्व विभाग में आपने किस पद पर कार्य किया, इसकी थोड़ी सी जानकारी हमारे श्रोताओं को दीजिए।
0: जैसे मैं जब 1972 में सर्विस लगी मेरी, तो मेरी पहली पोस्टिंग भोपाल में हुई। भोपाल के बाद मेरा सांची ट्रांसफर हुआ, उसके बाद आगरा हुआ उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वो सेंट्रल हेडक्वार्टर जगह रहती है, लेकिन हमें एरिया बहुत बड़ा होता है। फिर 1981 में हमारा जो ट्रांसफर हुआ बड़ौदा हुआ गुजरात में, तो गुजरात में जो हमारा कार्य क्षेत्र था, गुजरात के अलावा दमन दीव और राजस्थान का पूरा हिस्सा था, तो उससे हम लोगों और ज्यादा जुड़ाव हो गया। और राजस्थान गुजरात उसे काम करने के बाद फिर मेरा ट्रांसफर यहाँ भोपाल हुआ, भोपाल से फिर रायपुर हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, और कहना चाहिए अपना नागपुर में हुआ, फिर वापस भोपाल में यहाँ मेरा रिटायरमेंट हुआ। तो जगह जगह जगह में जाना, लेकिन फिर भी क्या है कि रिटायरमेंट के बाद भी मैं जैसलमेर आना जाना होता ही है, और नई नई खोज भी हमने वहाँ की है, आप लोगों सभी को पता होगा।
1: अच्छा, तो हमें थोड़ी बहुत तो जानकारी है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपने जैसलमेर में जो भी काम किया है उसके बारे में पुरातात्विक अनुसंधान क्षेत्र की जानकारी हमारे श्रोताओं को दीजिए।
0: जैसे जैसलमेर ये बड़ा प्राचीन स्थान है, वैसे तो इसकी बसावट 12वीं-13वीं शताब्दी में हुई है, लेकिन उससे पहले से यहाँ आदिवासी संस्कृति या लोक संस्कृति यहाँ पर थी। हम जानते हैं जैसलमेर की स्थापना के बारे में, सभी जानते हैं, लेकिन वहाँ पे जो पहले समुद्र था ये भी सब जानते हैं, वहाँ बड़े बड़े जंगल थे ये भी हम सब जानते हैं, लेकिन आदिमानव की सभ्यताओं के बारे में जानकारी बहुत कम लोगों की है। तो 1968 में एक इंग्लैंड के विद्वान पुरातत्व के थे, उन्होंने कुछ वहाँ सर्वे किया था, लेकिन इतना नहीं हो पाया था। लेकिन बाद में जब हमें पता चला कि यहाँ पे कुछ होना चाहिए आदिमानव की संस्कृति, तो मैंने यहाँ पर जो हमारे स्थानीय हमारे जो रिश्तेदार हैं पार्थ जगानी जी करके, और उनके साथी प्रेम राधेश्याम पे मांगी, तो वो वाइल्ड लाइफ वगैरह काम करते हैं, लेकिन जो पार्थ जगानी जी है पुरातत्व शिक्षा हमारे साथ जुड़े, हमने इनके साथ तो आसपास के कई गांवों में वहाँ सर्वे किया, जिसके अंदर जो एक तेजुआ गांव है, तेजुआ गांव के पास में एक कोलरिया महादेव के राय का मंदिर है, बरमसर है, भोजका है, ओला है, मेरई है, कुंडा है, तुंगी गणेश है, काला डूंगर राय है, तेमड़े राय है, लाठी चांदन इत्यादि, ऐसे बहुत से स्थान है जहाँ हम लोगों ने हम दोनों साथ में सर्वे किया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वो लाखों वर्ष पुराने हैं, आदिमानव के पत्थर के हथियार मिले, और वो हथियार ऐसे हैं जैसे कुल्हाड़ी होती है, भाला होता है, स्क्रैपर होते हैं, तो उसमें जो कुल्हाड़ी जो होती है जिसे हम कहते हैं आदिमानव की कहना चाहिए सबसे पहली वैज्ञानिक उपलब्धि है। प्रारंभ में जो मनुष्य जीवन जो अपने इतिहास चालू होता है उसकी जो नींव है ये आदिमानव की सभ्यता है, उसके अवशेष हमें मिले। आप कभी वहां देखेंगे जैसलमेर का जो म्यूजियम है जो अभी पटू की हवेली में, उसमें हमारे बारे में रेफरेंस भी दिया है कि सबसे पहले जो ये जो डिस्कवरी हम लोगों ने की थी, इससे वहाँ पे नोटिस बोर्ड लिखा। तो इस प्रकार हम जा जाके बार बार आते हैं, लेकिन अभी भी हमारी ये उद्देश्य है। कुछ समय पहले हमें पता चला किसी ने सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष वहाँ मिले हैं, लेकिन उसे कंफर्म करने के लिए पर हम लोग जाएंगे अभी निकट भविष्य में, हम लोग जैसलमेर जाने का प्रोग्राम है, तो वहाँ पे जो आदिमानव सभ्यता है वो अभी भी उजागर होना बाकी है। क्योंकि उसे क्या है कि आज जो हम इतिहास पढ़ते हैं, हमारे बच्चे इतिहास पढ़ते हैं जिनमें सोशल साइंस विषय है, तो सबसे पहले जो चैप्टर उनका होता है

0: आदिमानव की सभ्यता होगा, आदिमानव की सभ्यताएं कैसे रहती है। तो यहाँ पे हमें वो तेतवा गांव के आसपास भी कुछ ऐसी गुफा जैसे अवशेष मिले तो हमें लगा है आदिमानव गुफाएं यहाँ होना चाहिए, लेकिन वो की जो वहां की जो प्राकृतिक चट्टानें ऐसी है धीरे धीरे नरमुख गिरती भी जाती है, खदानों से भी खराब हो जाती है। लेकिन इस प्रकार की यदि हम चीजें ढूंढेंगे तो हमने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से ऐसे रिक्वेस्ट भी की है कि एक क्षेत्र का सर्वे बहुत होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये पहली बार ऐसी संस्कृति मिली है। हमारे गुरुदेव वाकणकर साहब थे, वो उन्होंने सरस्वती नदी खोज में एक बार जैसलमेर भी आए थे और मेरी चर्चा भी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जैसलमेर का जो क्षेत्र है ये सरस्वती नदी के किनारे में आता है और अभी भी काफी किलो कई जमीन के अंदर लगभग 1000 मीटर की गहराई में अभी भी सरस्वती नदी का बहाव है। तो उस क्षेत्र के सिद्धांत से भी उसके को देखते हुए भी हमने वहाँ पुरातत्व सर्वे किया, हमारे साथ पार्क जगानी भी थे, हम लोग साथ जाके कई जगह हमने देखे और अभी भी हमारा ऐसा विचार है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यदि हम सहयोग करें तो हम लोग मिलके और भी यहाँ पे आदिमानव की सभ्यताओं को हम निकाल सकते हैं और सिंधु घाटी की सभ्यताओं को भी हम सबके सामने उजागर कर सकते हैं।
1: तो आपका जैसलमेर से तो पुराना जुड़ाव रहा ही है और आप अभी भी जैसलमेर आते जाते रहते हैं, तो डॉक्टर साहब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, भविष्य में क्या आप जैसलमेर वापस लौटना चाहोगे रहने के लिए?
0: कि जरूर, क्योंकि ऐसा है ना कि जैसलमेर एक ऐसा स्थान है वो तो हमारा दिल से जुड़ा है, मन से जुड़ा हुआ है। हम चाहते भी यदि, क्योंकि वहाँ हम चाहते हैं कि ऐसे रहने से कोई फायदा नहीं, एक वहाँ ऐसी सोसाइटी बनाई जाए, ऐसा वो एनजीओ टाइप का बनाया जाए, ग्रुप बनाया जाए, तो उसके माध्यम से हम वहाँ रहकर भी पूरे आदिमानव की सभ्यताओं की खोज कर सके, क्योंकि बहुत ही आवश्यक है। वहाँ जीवाश्म तो मिलते ही, अब जब डायनोसॉर के बारे में भी सुना और जीव जंतुओं के बारे में भी सुना, ये तो सब जगह मिलेंगे, इनके बारे में नॉन चीजें हैं जानकारी, लेकिन आदिमानव की सभ्यताओं को सामने लाना बहुत जरूरी है। यदि ऐसे हम लोग को वहाँ रहने को मिल जाता है, मकान मिल जाता है, सोसाइटी हम बना सकते हैं और इसके लिए हम बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर भी बना सकते हैं। रिसर्च सेंटर में क्या देश विदेश के लोग आएंगे भी सही और यहाँ के पूरे क्षेत्र की सभ्यताओं का वो सर्वे कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब बातचीत तो आपसे जारी रहेगी, लेकिन हमारे श्रोताओं को आप अपनी पसंद का एक प्यारा सा गीत बताइए जो वो आप वो भी सुनेंगे और आप भी सुनेंगे।
0: अब ऐसा है ना, जैसे हमारे पिताजी स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे तो स्वाभाविक देशभक्ति हम लोगों में होना चाहिए। हमारे पिताजी ने 1964-65 में फिल्म दिखाई थी सिकंदर आजम में बहुत अच्छा गीत था, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, ये गाना बड़ा अच्छा लगता है हमें भी और गुनगुनाते रहते हैं, तो यदि ये सुनवा देंगे बहुत अच्छा लगेगा।

मेले होली के कई मेले, जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश।

छाला डाले और प्रेम की बंसी जहां बजाता आए शाम सवेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश

तो श्रोताओं, हम बातचीत कर रहे थे मध्य प्रदेश के रॉक स्टार कहे जाने वाले जाने माने पुरातत्वविद पद्मश्री डॉक्टर नारायण व्यास जी से। आपने अपने जीवन अनुभव, अपने अनुसंधान कार्यों के बारे में हमें विस्तार से जानकारी दी।

0: आपका पुरातत्व सर्वेक्षण के क्षेत्र में किया गया काम हम सबको अपने ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण के लिए प्रेरित करेगा। आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, इसका आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।
1: अभी श्रोता सुन रहे थे पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर श्री नारायण व्यास जी की नेहा व्यास से बातचीत। यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम संत संगीत।

0: की जान में हसत जात हम हसत जात अरे एक चतुर नार बड़ी होशियार
1: तू क्यों सीधे
0: तू क्यों गोरी ज्ञान तेरे करे लाख लाख दुनिया चतुराई चुटकी कर दूंगा मैं उसकी अब के जो आवाज लगाई चुटकी कर दूंगा जारे जारे कारे कागा काका का क्यों शोर मचाए उस नारी का दासन बन जो राह चलत को राह भुलाए काला रे जारे जारे खारे नाले में जाके तू मुंह धो के आ काला रे गारे गारे
1: या जरा बड़ा जे
0: गारे गारे
1: या सूर बदल
0: गारे गारे
1: या हमको बटका
0: गारे गारे
1: या सूर की तरह जे ये सूर ये इन्ना आया है तू ये
0: एक चतुर नार
1: हम छोड़ेगा जे
0: एक चतुर नार
1: हम पकड़ कर रखेगा जे
0: मेरे मन के द्वार ये घुसत जात हम मरत जात अरे चतुर नार करे

0: आके लंगड़ी घोड़ी अरे देखी तेरी चतुराई
1: अरे तेरे बड़ा
0: अरे देखी तेरी चतुराई
1: अरे बटकाया
0: तुझे सुर की समझ नहीं आई तूने कोरी घास ही खाई अरे घोड़े
1: या घोड़ा बोला
0: नहीं घोड़े
1: या गाली दिया
0: अरे देखी तेरी चतुराई
2: तुझे नाज
0: घोड़े देखी तेरी चतुराई
2: तुझे नाज
0: घोड़े
3: श्रोताओं अभी आपने सुना पड़ोसन फिल्म से ये गीत। इसी के साथ हमारा फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। इस समय आकाशवाणी के स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत कार्यक्रम में आइए सुनते हैं जगजीत सिंह की गई कुछ गजलें।

कोई आया देश बदल के, कोई आया देश बदल के, सागर से

0: संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड्स के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेस मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की स्लोवाकिया की पहली यात्रा के लिए ब्रातिस्लावा में भारतीय समुदाय में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: स्लोवाकिया का भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए विशेष तैयारी कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव के अनुसार भारतीय समुदाय में उत्साह देखा जा सकता है। राजधानी ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के झंडे लगाए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में दोनों देशों के बीच यात्रा और आपसी आदान प्रदान बढ़ने से उत्साह अधिक है। मध्य यूरोप में ब्रातिस्लावा की रणनीतिक स्थिति से भी भारत के साथ पर्यटन संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को सदैव गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरे

0: सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई।
2: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया। अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप हैं। नागपुर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। गुजरात के पोरबंदर में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष के दौरान देश का केंद्रीय बजट दोगुना हुआ है और लोगों पर कर का बोझ काफी कम हुआ है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट रोजगार डैशबोर्ड विकसित किया गया है। अब तक 12,000 युवा इस पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं।

0: आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरोख अभैम शरदचंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
1: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 25 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
0: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमरीका और इसराइल के संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आईगॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य NTA परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर पर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहले जत्थे का प्रस्थान समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह जत्था 15 जून को नई दिल्ली से रवाना होगा और नाथुला मार्ग से यात्रा करेगा। मणिपुर पुलिस ने कहा है कि कुछ लोग और समूह अपुष्ट तथा भड़काऊ सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वो अफवाहों या अपुष्ट सामग्री पर भरोसा न करें और इन्हें साझा न करें तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के प्रति सावधानी बरतें। प्रशांत महासागर में अलनीनो की स्थिति बनी हुई है और दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान इसके और प्रबल होने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि जून 2026 तक मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र तल का तापमान अलनीनो के लिए जरूरी सीमा से अधिक हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिनों में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूर्वी राजस्थान में आंधी तूफान की भी संभावना है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7वें ओवर में एक विकेट पर 49 रन बना लिए हैं। रहमान उल्ला गुरबाज ने 102 रन की पारी खेली। हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट लिए। बारिश की वजह से मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है। मैनचेस्टर में महिला T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। कल शाम 7 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण

एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: आइए सुनते हैं अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम है काला बाजार।
1: इसी बात पे जी चाहता है वो जो चांद है ना, उसे नोच के आपके माथे पर लगा दूं, वही चमका करे।

श्रोताओं आइए सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का आखिरी गीत शागिर्द फिल्म से। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर ने।

लहरें झूला झूला।

0: श्रोताओं, इसी के साथ हमारा फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय रात्रि के 9:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संस्कृति भारती।
1: मैं हूं नवोदिता। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, एक तारीख जो हमें हर साल याद दिलाती है कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, उसके अंश हैं। और जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो जल की बात करना जरूरी हो जाता है। पर्यावरणविद अनुपम मिश्र का एक विचार बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें वो कहते हैं कि जिस समाज ने अपने जल को सहेजना छोड़ दिया, उसने मानो अपनी स्मृति भी खो दी। उनके ही दर्ज किए हुए कुछ विचार बिंदुओं को आज के संपादकीय में अपना स्वर दे रहे हैं अभिनय श्रीवास्तव। जल की जड़ें, संस्कृति की धाराएं।
2: मौसम विशेषज्ञ बताते हैं कि देश को हर साल मानसून का पानी निश्चित मात्रा में नहीं मिलता, उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि प्रकृति ISI मार्क का तराजू लेकर पानी बांटने निकलने वाली पनिहारिन नहीं है। तीसरी चौथी कक्षा से हम सब जल चक्र पढ़ते हैं। अरब सागर से कैसे भाप बनती है, कितनी बड़ी मात्रा में वो नौतपा के दिनों में कैसे आती है, हमारा साधारण किसान भी जानता है। ऐसी बड़ी दिव्य व्यवस्था में प्रकृति को मानक ढंग से पानी गिराने की परवाह नहीं रहती, फिर भी आप पाएंगे कि एक रूपता बनी रहती है। पानी की राजनीति ने प्रकृति के इस स्वभाव को भूलने की अक्षम्य गलती की है, इसलिए हम प्रकृति से क्षमा नहीं पा सके। बड़ी गलती हमसे ये हो रही है कि हमने पानी रोकने के समय सिद्ध और स्वयं सिद्ध तरीकों को पुराना या परंपरागत करार देकर छोड़ दिया है। यदि कुछ 1,00,000 साल से प्रकृति ने पानी गिराने का तरीका नहीं बदला है, तो हम भी उसके सेवन के तरीके नहीं बदल सकते। तालाब बावड़ी जैसे पुराने तरीकों की विकास की नई योजनाओं में बहुत उपेक्षा हुई है। न सिर्फ शहरों में बल्कि गांवों में भी तालाबों को समतल कर मकान, दुकान, मैदान, बस स्टैंड बना लिए गए। जो पानी यहाँ रुककर साल भर ठहरता था, उस इलाके के भूजल को ऊपर उठाता था, उसे हमने नष्ट कर दिया है। उसके बदले हमने आधुनिक ट्यूबवेल, नलकूप, हैंडपंप लगाकर पानी निकाला है, डालना बंद किया और निकालने की गति राक्षसी कर दी। लेकिन अब प्रकृति हमें हर साल चिट्ठी भेजकर याद दिला रही है कि हम गलती कर रहे हैं, इसकी सजा भुगतनी होगी। हमें भूलना नहीं चाहिए कि अकाल, सूखा, पानी की किल्लत, ये सब कभी अकेले नहीं आते। अच्छे विचारों और अच्छे कामों का अभाव पहले आ जाता है। हमारी धरती सचमुच मिट्टी की एक बड़ी गुल्लक है। इसमें 100 पैसा डालेंगे तो 100 पैसा निकाल सकेंगे, लेकिन डालना बंद कर देंगे और केवल निकालते रहेंगे तो प्रकृति चिट्ठी भेजना भी बंद करेगी और सीधे सीधे सजा देगी। आज ये सजा सब जगह कम या ज्यादा मात्रा में मिलने लगी है।
1: विश्व पर्यावरण दिवस पर संस्कृति भारती का ये संपादकीय स्मरण है उस चेतना का, जो हमें सिखाती है कि जल सिर्फ जीवन देता नहीं, जल ही जीवन है। प्रकृति की बात हुई, प्रकृति और मनुष्य के बीच के संतुलन का नाम ही योग है, एक ऐसी विद्या जो महज देह को नहीं चेतना को साधती है। और आज यही योग विश्व के खेल मंचों पर अपना परचम फहरा रहा है। ओलंपिक में योगासन को शामिल करने की दिशा में

0: गंभीर प्रयास चल रहे हैं। इस रोचक यात्रा के बारे में बता रहे हैं योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य, जिनसे बातचीत की है आनंद श्रीवास्तव ने। परंपरा से प्रतिस्पर्धा तक।
1: हजारों वर्ष पहले भारत की धरती पर जन्मी एक साधना जिसने मन को स्थिरता दी, शरीर को शक्ति दी और आत्मा को संतुलन। ऋषियों के आश्रमों से शुरू हुई ये यात्रा आज विश्व के खेल मंचों तक पहुंच चुकी है। एक समय था जब योग केवल स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम माना जाता था, लेकिन आज योगासन प्रतिस्पर्धा का भी विषय है। खिलाड़ी कठिन आसनों में अपनी क्षमता, संतुलन, लचीलापन और मानसिक एकाग्रता का प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ हैं योगासन भारत के महासचिव और विश्व योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आदनी भाई आनंद जी, और आकाशवाणी का भी बहुत आभार।
1: 5000 वर्ष पुरानी जो भारत की परंपरा है योग, जो ऋषियों महर्षियों के आश्रमों से शुरू हुई, वहां से लेकर यहाँ तक योगासन स्पोर्ट की जो यात्रा है, कैसे देखते हैं आप?
2: योग तो अनंत है और भारत की अध्यात्म और दर्शन का मूल तत्व है। बहुत विराट है, बहुत विशाल है और असीमित है, इसको बांधा नहीं जा सकता। परंतु योग के माध्यम से जो यात्रा समाधि तक जाती है, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंगों से होते हुए व्यक्ति मोक्ष तक पहुंचता है, उस परम तत्व तक पहुंचता है। उस 8 अंगों की यात्रा में तीसरा जो पायदान है वो उसका नाम है योग, आसन। और इन आसनों को हमने प्रतिस्पर्धा में लाने की जब बात की तो हमने देखा कि प्रयास तो कई वर्षों से हो रहे थे, अलग अलग क्षेत्रों से हो रहे थे, परंतु उनकी जो दिशा थी वो वैज्ञानिक नहीं, वो स्पोर्ट्स परक नहीं थी। इस कारण वो स्पोर्ट्स का हिस्सा नहीं बन पा रहे थे। और ये प्रयास देश में, दुनिया में कई स्थानों पर धीरे धीरे हो रहे थे और उसमें अवैज्ञानिकता भी बहुत अधिक थी। तो हमने उसको परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पावन निर्देशन में, स्वामी रामदेव जी महाराज के निर्देशन में पूरा इसका डॉक्यूमेंटेशन किया और क्या क्या होना चाहिए, इसमें क्या वैधानिकता है, क्या इसकी सावधानियां हैं और इसको किस प्रकार हम विज्ञान परक बनाते हुए खेल विज्ञान के साथ जोड़ते हुए आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इस पर बहुत काम करने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि इनों की, और वो भी निर्धारित श्रृंखला, वो निर्धारित की जाए, उसको कैटेगराइज किया जाए डिफिकल्टी के लेवल पर। ए मायने सामान्य, बी मायने उससे और कठिन, सी मायने और कठिन, डी मायने उससे भी कठिन और ई मायने परम कठिन आसन, ऐसे हमने कैटेगरी तय की। और जो अपनी क्षमता के अनुसार कर सके, उनकी आयु भी तय की, उनकी क्षमताओं का चयन वो स्वयं करें, उन आसनों में से करें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट करें। और उसमें महर्षि पतंजलि का जो सूत्र है, क्लासिकल जो सूत्र है, उसको मॉडर्न के साथ हमने जोड़ने की कोशिश की, वो था स्थिर सुखम आसनम, आप डूइंग द पोस्चर विद ईज इज कॉल्ड आसन। तो हमने इसके ऊपर काम करते हुए इसको पहले वैज्ञानिकता के साथ जोड़ने का प्रयास किया।
1: आकाशवाणी के बहुत सारे श्रोता ये समझना चाहेंगे कि जो योग है और योगासन खेल, इसमें मूलभूत अंतर क्या है?
2: योगासन योग की शुरुआत है और योग योगासन की परम सीमा है, बस यही अंतर है। तो योग शरीर को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है और योगासन अपनी क्षमताओं को विकसित करते हुए सीमा से पार जाने की एक प्रकाष्ठा है। योग आपको मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य देता है और योगासन आपको उस दिशा में ले जाने की प्रथम सीढ़ी के रूप में काम करता है। योगासन बीजारोपण है और योग परम समाधि का तत्व है।
1: जब आपने पहली बार योगासन स्पोर्ट को लेकर चर्चा की या इसके महासंघ की रूपरेखा बनाने का प्रयास किया और जब इसको खेलो इंडिया या क्षेत्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर शुरू करने की कोशिश की, किस तरह की चुनौतियां आई और उस समय क्या सोच थी, क्या लक्ष्य था?
2: ये जो मूल रूप से विषय आया, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विषय था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग श्री स्वामी रामदेव जी से चर्चा की कि इसको बच्चों तक योग को कैसे पहुंचाया जाए। तो उस वार्ता में ये निश्चित हुआ कि योगासन को खेल का रूप दिया जाए। और आज चुनौतियां बहुत अधिक ये थी कि बच्चे आज स्पोर्ट्स के मैदान में नहीं पहुंच पा रहे थे और जो खेल के मैदान थे वो संकुचित होते जा रहे हैं, वहां पर बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बिल्डिंग्स अब वो स्थान ले रही हैं। ऐसे में योगासन एक ऐसी सुविधा है, ऐसा खेल है जो आप घर बैठे 2x6 फीट का एक स्थान तय करें, इतना कॉस्ट इफेक्टिव कोई खेल हो सकता है भारतीय परंपरा के अंदर? तो मुझे लगता है वो स्वदेशी खेल योगासन ही हो सकता है।
1: 2023 के गुजरात में जो नेशनल गेम्स हुए, काफी समय के बाद हुए थे, वहां योगासन नेशनल गेम्स में पहली बार शामिल हुआ। आपसे ये समझना चाहेंगे कि योगासन स्पोर्ट को प्रमोट करने वाला भारत में जो, उसकी थोड़ी भूमिका बताएं कि वो किस तरीके से ग्रास रूट लेवल पे स्काउटिंग करता है बच्चों को और कोचेस किस तरीके से उनको आइडेंटिफाई करके उनको नर्चर करते हैं।
2: योगासन को आगे बढ़ाने में मैं समझता हूँ ग्राउंड लेवल पर हमें सबसे बड़ी कठिनाई टेक्निकल हैंड्स में, योग सिखाने वाले लोग थे, सामान्य पोस्चर करने वाले लोग थे, परंतु उस पोस्चर में उनको एक मिनट खड़ा रहना बड़ा कठिन था। स्पोर्ट्स के दृष्टिकोण से किया जाता है तो उसकी मास्टरी का लेवल अलग होता है। चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, आपका स्थायित्व जिसे कहते हैं स्टिलनेस वो बहुत महत्वपूर्ण है, स्थिरता। तो डेढ़ मिनट करने वाला बच्चा ही एक मिनट परफेक्शन से कर पाता है क्योंकि उसको माउंटिंग और डिसमाउंटिंग दोनों चीजें उसमें काउंट होती हैं। और ये जब शिकायतें हमारे पास आने लगी कि बच्चों को इंजरी बहुत हो रही है तो हमारा फोकस उस पर रहा कि पहले अच्छे कोचेस तैयार किए जाएं और उसमें हमारे बहुत से जिज्ञासु लोगों ने आगे बढ़कर हमसे ट्रेनिंग लेने का क्रम शुरू किया और वहां से शुरुआत हुई। आज 630 जिलों में ये हमारी खेल संघ है, उनका ट्रेनिंग का कार्यक्रम हुआ है। लगभग यदि मैं यूं कहूं कि 2000 से अधिक हमारे पास कोचेज हैं, ट्रेंड कोचेज हैं, लगभग 2000 से अधिक हमारे पास ट्रेंड रेफरीज हैं।
1: इससे पहले कि हम चर्चा में आगे बढ़े, आर्या जी ने दो चीजें बोली, माउंटिंग और डिसमाउंटिंग। हम अपने श्रोताओं के लिए बता दें कि किसी भी आसन को शुरू करने से पहले नमस्कार की मुद्रा बनाना वो माउंटिंग है और आसन समाप्त करने के बाद वापस से नमस्कार की मुद्रा बनाना ये डिसमाउंटिंग है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले साल आपने एशियन योगासन चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में किया, नेशनल गेम्स के बाद एक बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहली बार एशियन योगासन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। वहां कितने देशों ने हिस्सा लिया और किस तरह का रिस्पांस मिला जब आपने अलग अलग एशियाई देशों को पत्र लिखा कि योगासन की चैंपियनशिप हो रही है और आप अपना दल भेजिए?
2: एशिया में बड़ा जो सेगमेंट है वो मिडल ईस्ट एशिया का है और बड़ी भागीदारी उनके माध्यम से हुई, उसमें 21 देशों की भागीदारी उसमें रही, ईरान से लेकर बहरीन से लेकर ओमान से लेकर जॉर्डन से लेकर, बड़े अच्छे अच्छे देशों ने और बड़ी जिनको कहा जाता है कि, और सबसे बड़ी बात है कि योगासन को लोगों ने धर्म मजहब जाति कास्ट और पीढ़ी से ऊपर रखकर देखा और उसमें सहभागिता की और पूरी खेल भावना के साथ सहभागिता की।
1: गुजरात के अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किया, 78 देशों के 700 से ज्यादा एथलीट उसमें शामिल हुए। इस आयोजन के पीछे की सोच क्या थी, कब आपको लगा कि अब वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन होना चाहिए?
2: 78 कंट्रीज का पार्टिसिपेशन अपने आप में अद्भुत है साहब। तो मैं सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहूंगा और उनका योग के प्रति प्रेम को देना चाहता हूं। दूसरा, पूरे विश्व में परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज की जो पहचान है उसका एक विश्वास था लोगों में कि ये संस्था ऐसी नहीं है कि जहां जाकर हमारे साथ कोई अन्याय होगा, कोई बायसनेस होगी, जहां लेवल अच्छा नहीं होगा, जहां चैंपियनशिप का लेवल अच्छा नहीं होगा, तो एक वो संबल था।
1: कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं, आपसे ये भी समझना चाहेंगे विश्व चैंपियनशिप के बाद अब लोग जानना चाहते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल और ओलंपिक जैसे खेलों के महाकुंभ में योगासन खेल के पहुंचने की क्या संभावनाएं हैं?
2: राष्ट्रमंडल खेलों में जाने की जो संभावनाएं हैं भारत के स्तर पर अत्यंत अच्छी है, बहुत अच्छे से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं और जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि इस दृष्टिकोण से मैं ये बात कह रहा हूं, 78 कंट्रीज में से 25 से अधिक जो देश थे वो पहले से ही कॉमनवेल्थ कंट्रीज थे और जैसे ये बात हमारे माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को पता चली, उन्होंने कहा कि अरे 25 से अधिक देश तो अभी हैं, हम तो बहुत अच्छे से पिच कर सकते हैं अपनी ओर से, और उन्होंने आश्वस्त किया गुजरात के अपने कार्यक्रम में कि योगासन को आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में हम निश्चित रूप से अवसर दिलवाने का प्रयास करेंगे।
1: कार्यक्रम के अंत में आप उन युवाओं को क्या संदेश देंगे जो आकाशवाणी का ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, जो योग तो करते हैं लेकिन योगासन खेल को अभी अपना नहीं पाए?
2: मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि योग भी करें, योगासन खेल को भी ज्वाइन करें। योगासन खेल आपको संबल भी देगा, आपको नए भविष्य के साथ जोड़ेगा, नई चुनौतियों के साथ लड़ने की ताकत भी देगा और आपको अपॉर्चुनिटीज भी देगा, जॉब्स भी देगा, कैश रिवार्ड भी देगा और एक अच्छा सुनहरा भविष्य भी देगा। यदि योग और योगासन का संबल लेकर आप आगे बढ़ेंगे, भारत का यह सुनहरा खेल, स्वदेशी खेल, ये दोबारा भारत को ना केवल सोने की चिड़िया बनाएगा, सोने का शेर बनाकर आगे लेकर जाएगा और उस दहाड़ को पूरी दुनिया सुनेगी।
1: योग केवल शरीर को मोड़ने की कला नहीं है बल्कि स्वयं को गढ़ने की प्रक्रिया है। आज की चर्चा से यह स्पष्ट है कि योगासन केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत नहीं बल्कि एक उभरता हुआ वैश्विक खेल भी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से लेकर ओलंपिक्स तक के सपनों तक योगासन की यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। डॉक्टर जयदीप आर्य, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।

विश्व योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य से आनंद श्रीवास्तव की ये बातचीत बताती है, परंपरा से प्रतिस्पर्धा की ये यात्रा भारत की सांस्कृतिक शक्ति का जीवंत प्रमाण है। योग से हम अंततः आनंद और शांति की तरफ ही बढ़ते हैं, और ऐसा ही कुछ होता है जब हम संगीत से जुड़ते हैं। 21 जून विश्व संगीत दिवस, यानी वो दिन जो पूरी दुनिया को एक सुर में बांधने का प्रयास करता है। संगीत किसी एक काल का नहीं होता, वो पीढ़ियों के बीच बहती हुई एक नदी है, कभी शांत, कभी उफनती, कभी कलकल करती। और जब ये नदी परंपरा की जड़ों से पोषण लेकर आधुनिकता के विस्तार में फैलती है, तो जन्म होता है फ्यूजन का। दिल्ली के इसी सांगीतिक परिदृश्य से उभरा है एक अनोखा बैंड कुल्फी। नाम में जितनी मिठास है, संगीत में उतनी ही गहराई। विश्व संगीत दिवस के उपलक्ष्य में हमने की इन कलाकारों से एक संवादी मुलाकात।

0: आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में पांच ऐसे युवा चेहरे हैं जिनको देखकर उनके संगीत की गंभीरता का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने हमें उससे रूबरू कराया है और आज हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम संभव के पास, जो कुल्फी बैंड के लीड वोकलिस्ट हैं। संभव, आपके सभी साथियों का आकाशवाणी में स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहला सवाल तो यही कि ये जो नाम है कुल्फी, इस नाम के पीछे क्या ऐसा आइडिया था जब आपने इसका नाम कुल्फी बैंड रखा?
1: जी, हम बहुत समय तक हमारे बैंड का नाम सोच रहे थे और हम सब किरोड़ीमल कॉलेज के छात्र हैं। वहाँ पे एक संगीत समिति है म्यूजॉक नाम की, हम सब उसी से निकले हैं, कुछ अभी भी है उसमें। और ऐसे डीयू म्यूजिक सर्किट में बहुत सारे फेस्ट होते हैं, कॉम्पिटिशन होते हैं। वहाँ पे आईटी कानपुर के फेस्ट होते हैं, हर साल कॉम्पिटिशन होते हैं। हम वहाँ पे बस बैठे थे और नाम सोच रहे थे और वहाँ पे कोई एक दोस्त कोई कुल्फी खा रहा था वहाँ, तो फिर वो बोला कि यार कुल्फी रख देते हैं नाम, कि ये तो बड़ा स्वीट सा क्यूट सा नाम है। ठीक है।
0: संभव, जब आप म्यूजिक बना रहे होते हैं, कोई गाना चुन रहे होते हैं, तो लिरिक्स आप कैसे उसकी चुनते हैं, वो लिरिक्स कौन लिखता है और फिर आप उसको कैसे सेट करेंगे, कैसे आप उसको तय करते हैं?
1: जैसे हमने कहा कि हम एक फ्यूजन बैंड अगर हमें कहें तो वो गलत नहीं होगा। हम इंडियन क्लासिकल शास्त्रीय संगीत और वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस, ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस को मिक्स करके एक साउंड को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं इस बैंड में। कुछ जैसे हमारा गाना मोरे मंदिर है, वो एक ऑलरेडी ट्रेडिशनल बंदिश है राग मेघ में, जो बड़े गुलाम अली खान साहब जी ने बनाई है, उनकी बंदिश है। हमने उसको रीइंटरप्रेट करा है हमारे एक कंटेम्प्रेरी स्ट्रक्चर में और उसको एक सॉन्ग स्ट्रक्चर में बांधने की कोशिश करी है। वैसे ही गाया था रसिक बलमा, वो हमने खुद बनाया है, हमारे एक दोस्त हिमांग का गीत ने वो लिखा है, धुन हमने बनाई है, तो वो गाना हमने खुद बनाया है। वो बंदिश स्ट्रक्चर ही फॉलो करता है जो शास्त्रीय संगीत की बंदिश स्ट्रक्चर रहते हैं। हमें बनाते बनाते लगा कि इसमें एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस अगर मिल जाए उसमें और हम उसका एक कोर्स उसमें डालें तो वो अच्छा लग सकता है। और कोई एक सेट पैटर्न नहीं है, कोई एक सेट फॉर्मूला नहीं है, जहाँ पे भी लग रहा है कि इसकी गुंजाइश है और ये सुनने में अच्छा लग सकता है, वो हम वहाँ पे कर करके परख करके।
0: आपके अपने अनुभव में जितना अनुभव अभी आपको हुआ है, इन जनरल अगर हम ये म्यूजिक सीन की इस पूरे इस परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं, अगर हम क्या बेहतर होना चाहिए जिससे आप जैसे लोग जिस तरह का संगीत कर रहे हैं, बैंड बनाकर कर रहे हैं, इंडिविजुअली कर रहे हैं, किन चीजों की कमी आपको लगती है जो थोड़ा बेहतर होता तो शायद आप जैसे और लोग आगे आते संगीत और संस्कृति के क्षेत्र से जुड़ते?
1: हमें जितना समझ में आता है, एक जो दिक्कत लाइव म्यूजिक वेन्यूज की कमी आ गई है बहुत ज्यादा, एटलीस्ट दिल्ली में भी।
0: ऐसा क्यों?
1: अब वो ज्यादा फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, आई थिंक पैंडेमिक के बाद लाइव म्यूजिक वेन्यूज थोड़े से स्थिर हो गए थे और अब वही चार पांच जगहें हैं जहाँ पे हम लोग भी ढूंढते हैं चीजें, तो बेसिकली बहुत सॉलिड सैचुरेशन हो गया है। उसके साथ साथ

0: इंडिपेंडेंट म्यूजिक की आउटरीच, उसके फोरम आई डोंट बिलीव इतने एग्जिस्ट करते हैं, या अगर करते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं रहे हैं।
1: सर आप बताइए।
2: तो इंडिया में मैंने ये भी नोटिस किया है कि लोगों की मेंटालिटी होती है कि म्यूजिक इज समथिंग दैट गोज ऑन इन द बैकग्राउंड। आर्टिस्ट को जो रिस्पेक्ट नहीं मिलती फॉर द अमाउंट ऑफ एफर्ट दे हैव पुट इन टू लर्न देयर आर्ट एंड टू डू व्हाट दे आर डूइंग इज ऑफन वेरी डिफिकल्ट।
1: कुछ एग्जांपल दे सकते हैं आप जो बात आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कि उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं मिलती है बैकग्राउंड म्यूजिक जैसा लोगों को लगता है?
2: ओके, सो आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ जैसे लाइव म्यूजिक का ही सेट अबाउट लाइव म्यूजिक वेन्यूज। तो लोगों को बाहर जाके खाना खाना होता है, उनको लाइव म्यूजिक सुनना होता है, पर लोगों को उसके लिए पैसे नहीं देने होते। जैसे 500 रुपए एक फैमिली के कॉन्ट्रीब्यूशन से एक आर्टिस्ट का बहुत बिग इम्पैक्ट पड़ सकता है व्हेन इट्स डन इन लार्ज नंबर्स। तो ये मेंटालिटी इज समथिंग दैट आई सीन हैपन इन इंडिया।
0: अलोंग विद ऑल ऑफ दैट, ओरिजिनल म्यूजिक को ज्यादा आई डोंट थिंक लोग सुनना चाहते हैं। अब हमें भी जैसा शौर्य बोल रहा है, लोग खाना खाने आते हैं और उनको म्यूजिक फ्री में सुनना है। हमें बहुत बार ऐसा करना पड़ा है कि हमें अपना सेट इस ये लेकर बनाना पड़ा है कि ऐसा ना हो कि लोग उठ के फिर खाना खाने चले जाएं, क्योंकि हम चाहते हैं लोग बैठे रहें और हमें सुने। एक डेढ़ घंटा सिर्फ खड़े होकर एक बैंड को सुनना अब बहुत छोटे आर्टिस्ट के साथ नहीं होता है। आपको एक लेवल पे, आपको सर्किट में कम से कम 10-10, 15-15 साल रहना पड़ता है ताकि लोग आपको डेढ़ घंटा बस खड़े होकर सुने उनका ओरिजिनल म्यूजिक। पर कवर्स उन्हें भी करने पड़ते हैं।
1: तो अभी आप लोगों ने क्या तरीका निकाला आदित्य, जैसे आप जो बात कर रहे हैं कवर्स का जिक्र आपने किया, तो आपको लगता है कि कवर्स ज्यादा पॉपुलर हैं रादर देन योर ओन कंपोजिशन?
0: बिल्कुल है, पर हम थैंकफुली उस तरीके में इस चीज को टैकल करते हैं कि हम कवर्स अपने तरीके में अरेंज कर लेते हैं।
1: अच्छा,
0: हम बोलते भी हैं वी कुल्फी फाइल्ड इट।
1: जैसे भी आपने एग्जांपल दिया संभव जो बंदिश है बड़े गुलाम अली खान साहब की, उसको आपने थोड़ा रीअरेंज किया, उसे आपने एक नया टच दिया,
3: उसी आइडिया को लेके मेन स्ट्रीम गानों को एक अलग नजरिए से देख के उनको प्रेजेंट करना इज व्हाट वी एज अ बैंड आल्सो डू।

कुल्फी जैसे बैंड हमें याद दिलाते हैं कि परंपरा और आधुनिकता के बीच कोई दीवार नहीं है, बल्कि एक सेतु है जिसे संगीत बनाता है। विश्व संगीत दिवस पर इन कलाकारों को संस्कृति भारती की शुभकामनाएं। बीती 8 जून को ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी ने 90 वर्षों का सफर पूरा किया। वो स्वर जो 90 वर्षों से इस देश की धड़कन बना हुआ है और उसके साथ साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था कस्तूरी, जिसने बीते 5 वर्षों में एक गंभीर सृजनात्मकता और सांस्कृतिक ऊर्जा का परिचय दिया है। इन दोनों के संयुक्त प्रयास से बीती 6 जून को नई दिल्ली में साहित्य अकादमी के सभागार में राम कथा में नृत्य का स्पंदन विषय पर मनाए गए कला पर्व ने हमारी सांस्कृतिक चेतना को और समृद्ध किया। भारतीय नृत्य परंपरा में राम कथा का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। भरतनाट्यम हो या कथक, ओडिसी हो या मोहिनीअट्टम, मणिपुरी हो या कुचिपुड़ी, हर शैली में राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जीवंत होते हैं। इसी उत्सव से कुछ स्वरों, कुछ भावों, कुछ शब्दों के साथ

0: इस लय में डूबे, भक्ति की लय, नृत्य की भाषा। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कथक गुरु पद्मश्री शोभना नारायण ने राम कथा में निहित मानवता, करुणा और लोक मंगल के तत्वों पर प्रकाश डाला।
1: I would say it is a civilizational memory, just like Mahabharata. और उसमें वही राम कथा आज मॉडर्न युग में भी चल रहा है। Actually, there are more than 36 to 40 versions of the Ramayana itself. Ramayana ka jo spandan hai, jo lay, wo nirantar hai, wo shashwat hai. Aapko vyakhya milti hai, kis tarah se aapke andar wo emotions aur bhavnaye hai. Aur maine do line likhi thi, kaike ka prasang, ki kaike ke karan Ram van gaye. Aur isi karan wo Ram ban bhi gaye.
0: कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओडिसी गुरु विदुषी शरण लॉविन ने अलग अलग रामायण परंपराओं का उल्लेख करते हुए उनके सांस्कृतिक और कलात्मक महत्व को बड़े विस्तार से बताया।
1: In Odisha, there's a literary tradition, obviously older, but literary, that's at least 500 years old. And what's unique or special about or significant is that in Odisha, all of the writers in Odia have interpreted many of the locations as being in Odisha.
0: भरतनाट्यम कलाकार श्रीधर वासुदेवन ने समाज की सौंदर्य चेतना और सांस्कृतिक मूल्यों की चर्चा की, जिसके आधार में रामायण है, राम कथा है।
2: नृत्य एक भाषा है और इस नृत्य को, इस भाषा को परिभाषित करने के लिए नाट्य का रूप हमें धारण किया है और नाट्य के लिए विषय कुछ भी हो सकता है। हमारे इस विषय की खोज में इस मार्ग को बहुत ही सुलभ बनाया है महाकवियों ने, महाआचार्यों ने, उसमें से महर्षियों ने, उपनिषद के बहुत सारे स्रोत दिए, सोच के रह के उसे भाव में अभिव्यक्त करने के लिए। और ये बात को मैं बहुत ही पुष्टिकरण से विश्वास में रखता हूं, मैं अपने आप को भरोसा रखता हूं कि हम सब कहीं ना कहीं रामायण काल में
0: मोहिनीअट्टम कलाकार जयप्रभा मेनन ने रामकथा पर अपने विचार रखते हुए कंभ रामायण का विशेष उल्लेख किया।
3: There is also a very beautiful and very important play, a scene to behold, to see them come, the Shurpanakha Alarcha the
0: world. उन्होंने शूर्पणखा प्रसंग की कलात्मक और बेहद मानवीय व्याख्या प्रस्तुत की। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के प्रति प्रणय निवेदन से पहले राक्षसी रूप से ललिता रूप में शूर्पणखा का परिवर्तन एक बेहद रोचक नृत्य प्रस्तुति का आधार बनता है।
3: Going and proposing to Rama and Lakshmana from the Rakshasi Bhavam, the hand goes into a beautiful Pallava.
0: राम के ही निर्गुण रूप में अपना आराध्य तलाश करने वाले कबीर, 15वीं शताब्दी का वो जुलाहा जिसने न केवल कपड़े बुने बल्कि मनुष्यता का एक ऐसा ताना बाना बुना जो आज भी जस का तस है। गुरु हर गोविंद साहिब सिख परंपरा के छठे गुरु, उन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की, वो पवित्र स्थान जो धर्म और लौकिक न्याय दोनों का ही केंद्र बना। कुछ महान विभूतियां देह में भले हमारे साथ ना हो, वो हमारी संस्कृति में, हमारी स्मृतियों में, हमारे सुरों में और हमारे रंगों में जीते रहते हैं। असम के अस्मिता के प्रहरी और असम के पहले मुख्यमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई, सरोद के जादूगर मैहर घराने के महान संगीतज्ञ उस्ताद अली अकबर खान, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य शैली को विश्व मंच पर पहचान दिलाने वाली दिव्य कलाकार संयुक्ता पाणिग्रही, भारतीय चित्रकला के महानायक मकबूल सिदा हुसैन, इन सभी विभूतियों के सांस्कृतिक अवदान

को प्रणाम करते हुए संस्कृति भारती का आज का ये अंक यही संपन्न होता है। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है। आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन वादन। यू शिव प्रसाद, जिनका जन्म आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक संगीतकार परिवार में हुआ था, कम उम्र में ही आपको संगीत की विरासत मिली। आपने अपने चाचा से कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। सम्माननीय सैक्सोफोनिस्ट स्वर शिल्पी यू वेंकट राव जी और चिंतालापुरी वराहला राजू गारू और पी दयाकर गारू के साथ संगतकर्ता के रूप में संगीत कार्यक्रमों में प्रदर्शन करना शुरू किया। आप पश्चिमी की फ्लूट में भी प्रशिक्षित हैं, जो आपकी व्यापक संगीत बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। आपको गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा नई दिल्ली द्वारा कला निधि पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये आपके संगीत के प्रति अटूट समर्पण, अनुशासन और जुनून को दर्शाता है, जो आपको अन्य संगीतकारों के लिए एक आदर्श बनाता है। आपके साथ मृदंगम पर विघ्नेश जयरमन और वायलिन पर जी उमा संगत कर रही हैं। यू शिव प्रसाद अपने कार्यक्रम का आरंभ हंस ध्वनि से कर रहे हैं। रचना के बोल हैं वातापी, इसके रचनाकार हैं मुत्तुस्वामी दीक्षितर। ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: दिस इज आकाशवाणी टुनाइट इन रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ सैक्सोफोन रिसाइटल बाय यू शिव प्रसाद। यू शिव प्रसाद born into a family of musicians in Vishakhapatnam, inherited his musical foundation at an early age. He received his formal training in Carnatic classical music from his uncle, the respected saxophonist Swar Shilpi U. Venkat Rao Garu, Chintalapudi Varhala Raju Garu and P. Dayakar Garu, and he began performing in public concerts as an accompanist. He is also trained in Western key flute, showing broad musical versatility. Awarded Kalanidhi Award from Gandhi Hindustani Sahitya Sabha, New Delhi. It reflects his unwavering dedication, discipline and passion for music, making him a role model for musicians alike. Today, he is accompanied on mridangam by V. Jayaraman and on violin by G. Uma. U. Shiva Prasad begins his violin recital with Rag Hans Dhani. Composition Vatapi, composed by Muthuswami Dikshitar, is set to Aditalam.

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन पर बजाया राग हंसध्वनि। कार्यक्रम को जारी रखते हुए यू शिव प्रसाद अब प्रस्तुत करेंगे राग नवरस कानड़ा। रचना के बोल हैं निन्नु वीणा रामा। इसके रचनाकार हैं त्यागराजा। ये रचना रूपकम ताल में निबद्ध है।
1: That was राग हंसध्वनि। Continuing his recital, यू शिव प्रसाद now presents another composition based on राग नवरस कानड़ा। Composition निन्नु वीणा रामा, composed by त्यागराजा, is set to रूपकम ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन पर बजाया राग नवरस कानड़ा। अब आप सुनेंगे राग गौरी मनोहारी। रचना के बोल हैं जय जय पद्मनाभा। इसके रचनाकार हैं स्वाति तिरुनाल और ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: यू जस्ट हर्ड राग नवरस कानड़ा। यू शिव प्रसाद कंक्लूड्स हिज सैक्सोफोन रिसाइटल विद राग गौरी मनोहारी, कंपोजिशन जय जय पद्मनाभा, composed by Swati Tirunal, is set to Adi Talam.

0: अभी आप सुन रहे थे यूश प्रसाद का सैक्सोफोन वादन, आपके साथ मृदंगम पर विग्नेश जयरमन और वायलिन पर जी उमा संगत कर रही थी। इसी के साथ संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल। इस समय रात्रि के 11 बजे हैं। आइए सुनते हैं पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। वहां फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इनमें शिक्षा मंत्री एडवर्ड ग्रेफे, उच्च शिक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट, आल्प्स मैरिटाइम्स प्रीफेक्चर के सेक्रेटरी जनरल पैट्रिक अमोसू एडबले, भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, नीस के मेयर एरिक सियोटी और स्टेट प्रोटोकॉल के डिप्टी डायरेक्टर बेनोइट श्नाइडर शामिल थे। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
2: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि अगले सप्ताह फ्रांस में प्रस्तावित G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, यांत्रिक मेधा, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। असम के जोहराट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। अमरीका और ईरान ने संकेत दिया है कि वे पश्चिम एशिया में महीनों से चल रहे टकराव को खत्म करने के लिए एक फ्रेमवर्क समझौते के बहुत करीब हैं। हालांकि अभी भी कुछ अहम मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। दोनों देशों के अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित समझौते के मसौदे पर मोटे तौर पर सहमति बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में कल आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हेबिल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। ये आयोजन सुबह 6:15 बजे से पूर्वाहन 7:35 तक होगा। इसमें 130 देशों से सहभागिता की संभावना है। कार्यक्रम में आयुष मंत्री प्रदाप राव जाधव भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के इच्छुक लोग मिस्ड कॉल देकर पंजीकरण करा सकते हैं। नंबर है 1800-315-7008। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिन में उड़ीसा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूरी राजस्थान में आंधी तूफान की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमिर चैनल है।
5: Prime Minister Narendra Modi has arrived in the French city of Nice, marking the beginning of his 6-day visit to France and Slovakia. Mr. Modi was accorded a warm welcome by senior French dignitaries. The visit to the two European countries aims to further deepen bilateral